0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्षयान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल

0: कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार रिले करी सुनाइलो राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दिल्ली रो आकाशवाणी बारीपदा निवेदन करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। वंदनार प्रथम अक्षर शिल्पी नमिता अग्रवाल, कंठरे अलेख विश्वाल रचना।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को 2 गुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi, from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
5: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
6: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल CBI को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोप नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना समाचार मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच

0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी वीमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बालियापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लोकप्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़िया की संख्या 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा 6वीं और 9वीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global practices. Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart, Bart De Wever, in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite.
7: Hindi Samachar. रिले करि सुनाइलु आकाशवाणी दिल्ली रु आकाशवाणी बारिपदा कार्यक्रम सुनछन्ते FM बियान रे 102.9 मेगाहर्ज चके समय सकल 8:15 आरंभ करुछु गीतांजलि। हाँ श्रोता बंधु, चिठी चिठी तो एमितिका फुलटिए जेउंथिरे सबुबेले खाली मधु छरु थाए। से मधु को पान करि किए नीति छुरी मरे आउ किए मतुआला हुए। चिठी तो एमितिका फुलटिए से चिठी पठाइली साधरे घेनिब आड़े देवनी साथी कागज टुकुड़ा भाविबनी ताको ए मो हृदयर आत्मलिपि चिरी फिंगिबनी साहित्य रखिब जतने रखिब पाखरे नीति पढ़ुथिब आउ भावुथिब दूर रे थाइबी अछि मु तुम साथी रे।

0: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो।
1: ओहो माने कथा ना के फिटे के कह
0: माने सिनी आ उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक आ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा यंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिन पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट सबु रकम सुविधा मिलुची
1: केठे मिलुची हो एते सुविधा
0: जानि न किहो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
2: ठिकना होची मेसर्स बाबूलाल अग्रवाल मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीन कुणिया छक बारीपदा
1: ताला जीवा ना की कहू
0: चलो

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए डेढ़ इश्किया फिल्म का गाना। इसे गाया है रेखा भारद्वाज ने, नृत्य के बोल हैं पंडित बिरजू महाराज के स्वर में, गुलजार ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है विशाल भारद्वाज ने।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए ऋत्विक तलाशिलकर की आवाज में मलाल फिल्म का गाना। गीतकार हैं प्रशांत इंगोले और संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
5: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
5: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
5: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेल बालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
6: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में भूल भुलैया 2 फिल्म का गाना। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए अल्तमश फरीदी की आवाज में कौसर मुनीर का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज़ में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम थे गीतकार और संगीतकार थे देवी श्री प्रसाद। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मनोज तिवारी की आवाज़ में गैंग्स ऑफ वासेपुर, यह है फिल्म का नाम। वरुण ग्रोवर हैं गीतकार और संगीतकार हैं स्नेहा खनवलकर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए।

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। जब

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निकल

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत रेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथोनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

अल्ले बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पिटारा में पेश है आज के मेहमान।
1: अर्थ स्वागतम,
2: शुभ स्वागतम,
1: अर्थ स्वागतम।
3: शंकर भी भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। उच्च न्यायालय ने CBI को प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन यह भी साफ किया कि जांच के दौरान किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा, कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इन नियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को अधिसूचित किया था और 29 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में भारतीय मानक समय के निर्धारण, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 180 दिन बाद लागू होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा, किसी सच्ची प्रतिभा को जब सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण में विकसित किया जाए तो वो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल तिब्बत में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रनों से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: शरद जी ने मुझे प्रपोज किया, उस समय दरअसल कैसेट्स का जमाना था, है ना, तो कैसेट में बड़े गाने भर भर के दिए जाते
6: थे और ऑर्डर देके भरवाते थे।
5: लिस्ट होती थी एक छोटे से, हाँ।

0: शरद जी ने जो मुझे पहले कैसेट दी थी
1: हाँ
0: और उसमें जो पहला गाना था वो था हंसते जख्म का, तुम जो मिल गए हो तो लगता है, तो
1: जहां मिल
0: वो
1: गए
0: गाना सुनवा दीजिए
1: जी।

आप सुना है कि सिंथेसाइजर भी बजाया करती थी, और श्रोताओं को बता दें कि ज्योति जी के पास गुणों का खजाना है, उनके

0: गुणों की चर्चा हम करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में, तो सिंथेसाइजर वाली बात बताइए, कब कहाँ से सीखा और कहाँ से विचार आया?
1: नहीं, दरअसल जब भी मेरी बेटियां छोटी थी, शिखा जानी, दोनों जब बच्ची छोटी थी, तो पहले एक छोटा सा सिंथेसाइजर हुआ करता था, कुछ 1 फुट का होता था, वो बहुत
0: जी
1: बड़ा नहीं होता था, तो वो हमने बच्चों को ला करके दिया और बच्चे बजाते थे।
0: जी
1: मेरी जो बड़ी बेटी है वो बड़ी अच्छी धुनें निकाल लेती थी मन से, कहीं विधिवत सीखा नहीं,
0: जी
1: तो मैं भी थोड़ा बहुत उस पर अपना ऐसे हाथ आजमा लिया करती थी।
0: जी
1: बाद में बच्चियां बड़ी हुई, मैं भी थोड़ा सा फुर्सत पाई, तो बच्चों ने मदर्स डे पर एक बड़ा सारा सिंथेसाइजर ला के दिया। मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और मुझे ये भी महसूस होता है कि जब तक जीवन है तब तक आप सीखना चाहें तो सीखते रह सकते हैं। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। तो मुझे चूंकि संगीत का शौक है, तो मैंने उस सिंथेसाइजर पर धुनें निकालना शुरू की, और बगैर सीखे जो पसंदीदा गीत होते हैं तो वो मैंने उस पे अपने आप से निकालना शुरू किया,
0: जी
1: और इस तरह से दो दो चार चार लाइनें बजा लेती हूँ शौकिया।
0: जी तो ज्योति जी, सिंथेसाइजर की बातें हुई और अब आपके लेखन की दुनिया में हम छलांग लगाना चाहते हैं, फिर बीच
1: जी
0: बीच में यादों के गलियारों में भी सैर करवाते रहेंगे।
1: जी
0: बताइए
1: बिल्कुल।
0: कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली?
1: जी, लेखन की शुरुआत मैं कहूँगी कि जब मैं चौथी, पांचवी या छठी क्लास में थी। हम लोग मंदसौर से हैं मूलतः, मेरा जन्म स्थान जो है वो मंदसौर है, मालवा का एक छोटा सा कस्बा है,
0: जी
1: इंदौर से करीब 4 घंटे का रास्ता होगा।
0: जी जी
1: तो चूंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे,
0: जी
1: और जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर मेरी जो माँ है वो सबसे पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा महिला थी।
0: क्या बात है,
1: हाँ जी, तो
0: क्या काम करती
1: हमारे
0: थी?
1: और मैं यहाँ आपको एक लगे हाथों तो एक बात और बता दूं कि मेरी माँ नर्स रहीं, और उन्हें अपनी नर्सिंग सेवाओं के लिए आदरणीय APJ अब्दुल कलाम साहब के हाथों वो सम्मानित भी हुई
0: क्या
1: है।
0: बात है भाई,
1: हाँ जी,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो चूंकि घर में वातावरण ऐसा था, बाऊजी भी साहित्य प्रेमी थे, तो हमारे घर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका और अखंड ज्योति, ये 4 पत्रिकाएं मुझे ध्यान है नियमित आती थी।
0: जी
1: और उसके थोड़े समय बाद बाऊजी को लगा कि ये पढ़ने की शौकीन है, तो हमारे यहाँ बाऊजी खरीद कर चंदा मामा, चंपक, नंदन, पराग, ये 4, देवकी नंदन जी उस समय शायद पराग देखते थे,
0: जी
1: तो ये पत्रिका हमारे यहाँ आई। तो मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट रही, लेकिन घर में साहित्यिक पत्रिका आती थी तो मैं वो ज़रूर पढ़ती थी।
0: जी
1: मुझे याद है कि मालती जोशी की धारावाहिक कहानियां इस तरह से धर्मयुग में लगातार आती थी, और हम
0: साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपी
1: साप्ताहिक
0: थी।
1: हिंदुस्तान
0: जी
1: में, तो
0: बिल्कुल,
1: हम मतलब मैं पढ़ती और फिर वो वहाँ क्रमशः में आती तो उत्सुकता रहती थी कि आगे
0: आगे
1: क्या
0: क्या
1: हुआ।
0: होगा, क्या बात
1: तो
0: है।
1: मुझे लगता है लेखन का बीज वहाँ पढ़ने से शुरू हुआ, वहाँ ये बीज पड़ा, और फिर धीरे धीरे और अधिक, जहाँ जिन घरों में मैंने देखा है वाचन संस्कृति होती, वाचिक परंपरा जहाँ है वहाँ पर लेखन का बीज पढ़ने की संभावनाएं रहती हैं।
0: जी
1: तो बस इस तरह से वो पुस्तकें पढ़ने के बाद, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अखंड ज्योति जो पत्रिका थी, और उन दिनों सारिका भी लघु कथाएं छापने लगी थी, तो अखंड ज्योति में छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग आया करते थे, तो शायद उन प्रेरक प्रसंगों को पढ़ पढ़ करके मेरे अंदर कहीं लघु कथा का बीज पनपा,
0: जी
1: छोटा छोटा लिखना शुरू किया। फिर जब मैं हायर सेकेंडरी में आई तो हमारे गुरु थे श्री राम ताम्रकर सर,
0: जी
1: तो जब उन्होंने मुझे एंकरिंग दिया कि उनको लगा कि इसके अंदर कुछ लेखन क्षमता है, तो उन्होंने कहा ज्योति एंकरिंग करोगे? मैंने कहा जी सर बिल्कुल करूँगी। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया, तो प्रोग्राम आपको प्रस्तुत करना है तो लिखना पड़ेगा,
0: जी
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, दो दो लाइनें ऐसे तुकबंदी की, तो सर ने मुझे कविराज कहना शुरू कर दिया कि अरे, तो बस वो एक कच्चा कच्ची, एक्चुअली बोलते कि वो एक पगडंडी थी कच्ची, सड़क पे आने में देर थी, लेकिन वो पगडंडी पे वहाँ चलना शुरू कर दिया था, यात्रा वहाँ से शुरू हो गई थी।
0: जी तो
1: जी
0: या वो जो यात्रा शुरू हुई और यात्रा का पड़ाव जो सड़क पर पहुंची पगडंडी से, तो सड़क वाली यात्रा को याद कीजिए और कोई कविता सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: मुझे लगता है कि शादी के बाद मैंने फिर, मुझे लगता है कि विधिवत वापस से लिखना शुरू किया।

0: एक संग्रह हमें याद आ रहा है, दुनिया काट की।
1: हाँ जी, हाँ
0: तो
1: जी।
0: क्या इस संग्रह से कोई कविता सुनाएंगे?
1: हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आपने दुनिया काट की का जिक्र किया है।
0: हाँ हाँ
1: तो दुनिया काट की का विचार ऐसे मन में आया कि एक बुजुर्ग को मैंने देखा कि उनको चौखट से ठोकर लग गई और वो लड़खड़ा के गिरने को हुए, लेकिन तत्काल उन्होंने हाथ में पकड़ी लकड़ी से, छड़ी से संभाल लिया अपने आप को।
0: अच्छा,
1: तो बस एक बिजली की तरह एक विचार कौन था कि जिससे ठोकर लगी वो भी लकड़ी,
0: जी,
1: और
0: जी
1: जिसने सहारा दिया संभाला वो भी लकड़ी।
0: क्या बात है।
1: तो बस ऐसा लगा कि लकड़ी पर क्यों ना कुछ लिखा जाए।
0: जी।
1: तो जब यादों को टटोलने लगी अपने शब्दों के संग्रह को, तो जब अभिव्यक्ति वो डायरी में आई पन्नों पर, तो मुझे लगा कि बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक लकड़ी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहती है।
0: सही बात है, बिल्कुल।
1: तो इस तरह से ये दुनिया काट की का अस्तित्व आया सबके सामने।
0: वो तो अंतिम संस्कार में भी
1: जी
0: लकड़ी का
1: जी
0: प्रयोग
1: जी
0: होता
1: बिल्कुल।
0: है, तो जन्म से मृत्यु
1: हाँ
0: तक।
1: जी, मैं इसकी पहली कविता सुनाती हूँ पहले आपको,
0: जी।
1: जिसका शीर्षक है पलना। गर्भ में मुलायम तरल में बहता शिशु बाहर आते ही माँ की हथेलियों में आ जाता है।
0: क्या बात है।
1: जो तरल तो नहीं लेकिन ममत्व उसे मुलायम ही बनाता है।
0: वाह।
1: देखिए, क्योंकि गर्भ में एकदम तरल है और फिर वहां से हथेलियों में आता है, लेकिन हथेलियां भी मुलायम है। लेकिन चंद पलों बाद ही लकड़ी का पलना उस शिशु का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है अगले चंद माहों के लिए।
0: वाह।
1: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है कि आने वाले जीवन की कठोरता से।
0: क्या बात है।
1: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है आने वाले जीवन की कठोरता से लड़ने की ताकत देने का।
0: वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: लकड़ी का पलना ऐसा होता है।
0: जी, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बातें करते हैं। बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
1: गीत तो देखिए मुझे बहुत सारे पसंद है, क्योंकि मुझे संगीत पसंद है, गीत पसंद है, गुनगुनाना अच्छा लगता है।
0: जी
1: मैं आपको बता दूं कि एक बार ताम्रकर सर ने मुझे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया था जब मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वो किचन में रख के विविध भारती सुनना मेरा प्रिय शगल रहा
0: क्या
1: है।
0: बात है।
1: तो यहाँ पर मुझे दरअसल जिंदगी में मुझे लगता है सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी मैं ब्लड ग्रुप से भी बी पॉजिटिव हूँ। तो मुझे हमराज का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनील दत्त साहब की मूवी थी, और गीत के बोल है, नमु छुपा के जियो और न सर झुका के जियो,
0: क्या बात है।
1: गमों का दौर भी आए तो
0: मुस्कुरा के
1: मुस्कुरा
0: जियो।
1: जी
0: हमराज
1: जी
0: फिल्म का ये गाना
1: हाँ जी
0: सुनते हैं
1: जी
0: यही।

0: हमराज फिल्म के गाने के बाद हमें बताइए कि ये नजर बट्टू क्या है। वैसे हमें पता है कि कहानी संग्रह नजर बट्टू, भोरवेला और सेतु,
1: जी
0: और नजर बट्टू पर शोध भी किया गया ऐसा कहीं हमने सुना और पढ़ा है,
1: जी
0: तो इसके बारे में बताइए। क्या फिलाडेल्फिया में इसी के लिए यही
1: नहीं
0: शामिल हुआ था?
1: नहीं नहीं नहीं देखिए, फिलाडेल्फिया में जो मुझे सम्मान मिला था, मतलब मैं तो फिलाडेल्फिया नहीं गई, वहाँ की जो संस्था है वो वर्ष में एक बार भारत आती है और
0: अच्छा
1: विभिन्न शहरों में ये साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न काम करने वालों को, उनके समग्र साहित्य पर ये सम्मान प्रदान किया जाता है हिंदी में काम करने वालों के लिए। तो वो फिलाडेल्फिया वाला सम्मान अलग है, लेकिन नज़र बट्टू की जहाँ तक बात है, तो ये मॉरिशस की एक शिक्षिका है, वो इंदौर आई थी एक कार्यक्रम में, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो अपने साथ मेरी कुछ 3-4 किताबें ले गई। जब वे मॉरिशस गई तो वहाँ पर महात्मा गांधी हिंदी शोध संस्थान है, वहाँ पर वो पढ़ाती हैं। तो वहाँ की एक विद्यार्थी है श्रावणी बिहारी करके, उसने शोध प्रबंध लिखने के लिए उनसे कुछ विषय चाहे।
0: जी
1: तो जो मैम थी उन्होंने उन्हें मेरी नज़र बट्टू किताब दी और कहा कि तुम इसे पढ़कर देखो और फिर बात करते हैं। जब उस विद्यार्थी ने वो नज़र बट्टू किताब पढ़ी तो उसे मेरी जो कहानियाँ उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, अपना पूरा परिचय दिया और फिर ये जानना चाहा कि मैडम नज़र बट्टू किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन नज़र बट्टू का मतलब क्या है। तो मैंने उसे बताया कि नज़र बट्टू यानी कि जो नज़र से बचा है वो, तो जो नज़र बट्टू होता है वो नींबू मिर्ची भी होते हैं जो कि कई बार बड़े बड़े ट्रकों पर लगे रहते हैं, है
0: बिल्कुल,
1: ना,
0: गाड़ियों में
1: तो
0: लगे रहते
1: गाड़ियों
0: हैं,
1: में।
0: स्कूटर
1: ये
0: बाइक
1: बात
0: पे।
1: अलग है कि उनसे ब्रेक नहीं लगता लेकिन एक
0: बिल्कुल,
1: आस्था होती है, इसलिए वो
0: हाँ
1: नज़र बट्टू गाड़ी पर
0: हाँ
1: टंगाया
0: और
1: जाता है
0: खेतों में
1: और
0: किसान,
1: खेतों में
0: कृषक भाई भी
1: किसान।
0: लगाते हैं।
1: और जो एक और नज़र बट्टू है वो है काले धागे। तो जो मेरी जो नज़र बट्टू कहानी है, उस कहानी संग्रह की जो शीर्षक कहानी है नज़र बट्टू, वो काले धागे और नींबू मिर्च की थीम को लेकर ही वो कहानी है
0: जी
1: और कुछ मार्मिक कहानी है और लोगों को, पाठकों को वो बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने नज़र बट्टू की सारी कहानियों पर शोध प्रबंध किया। इस तरह मॉरिशस की जो विद्यार्थी है उसका शोध प्रबंध मेरी

0: ये कहानी संग्रह नजरबट्टू पर संपन्न हुआ है।
1: और फिलाडेल्फिया में जो आपका संग्रह गया था जो शोध के लिए, वो क्या कहानी है उसके बारे में बताइए।
0: वो समस्त समग्र साहित्य पर मिला है वो सम्मान मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ हिंदी में कार्य करने वालों को ही वो दिया जाता है वो सम्मान।
1: तो
0: जी,
1: कैसे वहां जुड़ी आप?
0: मुझे ना ममता जी एक चीज़ लगती है कि कोई अगर मेरी किताब चाहता है तो मैं हमेशा अपनी किताबें देना पसंद करती
1: और
0: हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है,
0: जी
1: किताबें तोहफे में देना,
0: हाँ
1: और सबको ये सीखना चाहिए
0: जी
1: कि बड़े बड़े गिफ्ट की बजाय किताब तोहफे में
0: हाँ
1: दें।
0: मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब किताबों की भेंट की बात चली है तो मेरी एक कविता संग्रह है माँ बेटी, वो मैंने इंदौर के कई प्रतिष्ठित परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी में वो पुस्तक बारातियों को तोहफे में दी।
1: क्या बात है।
0: हाँ जी, मतलब 100-100 किताबें बल्क में खरीद कर और ये किताबें भेंट दिए। तो किताबें भेंट देना मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह जब मैंने किसी को भेंट की और मुझे पता नहीं चला कि वो उनके किन रिश्तेदारों के माध्यम से वो किताब फिलाडेल्फिया पहुंच गई, और जब फिलाडेल्फिया पहुंची, 2 या 3 पुस्तकें थी कुल,
1: जी
0: फिर उनका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। आजकल ये सुविधा बहुत हो गई, पहले तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मेरा पूरा परिचय मांगा, मेरी बाकी किताबों की जानकारी ली, कुछ गूगल से प्रोफाइल लिया उन्होंने, और फिर इस तरह उन्होंने समग्र साहित्य का अध्ययन करके और फिर वो पुरस्कार मुझे प्रदान किया।
1: क्या बात है,
0: जी
1: बहुत बधाई हो इस बात के लिए और
0: जी
1: बहुत बढ़िया।
0: धन्यवाद।
1: और बात कविता की चली है, माँ बेटी कविता संग्रह, तो उस संग्रह से कुछ लाइनें सुनाएंगी हमारे श्रोताओं को?
0: हाँ जी, वो जो काव्य संग्रह है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है।
1: कहानी है।
0: जिस समय मैंने अपने उम्र के 50 वर्ष पूरे किए, बच्चों ने मेरे को, मुझे दोनों बेटियों ने बड़े सरप्राइजेस दिए कि 7 दिन तक मम्मा का बर्थडे मनाएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, खूब सरप्राइज दिए। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो मैंने माँ बेटी, चूंकि मेरी माँ भी हैं, माँ का आशीर्वाद भी है अभी, तो माँ और बेटी को लेकर के एक एक मैंने कविताएं रच दी। इस तरह से वो, चूंकि 50 साल की हुई थी तो 50 कविताएं आ गई माँ बेटी में। उसकी कुछ कविताएं हमारे परिचित हैं, उन्होंने अपनी बेटी की पत्रिका में वो कविताएं छपवाई हैं।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: जी।
0: और एक डॉक्टर साहब है वहाँ, डॉक्टर मोड़, उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में उन कविताओं के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के रिसेप्शन हॉल में लगवाए।
1: क्या बात है भाई,
0: हाँ जी,
1: वाह।
0: माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी,
1: माँ कभी मंदिर नहीं
0: माँ
1: जाती
0: कभी
1: थी।
0: मंदिर नहीं जाती थी। बाद में समझ में आया कि उन्होंने घर को ही मंदिर बना रखा था, वो मंदिर जाती किसके लिए?
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: क्योंकि उनके लिए उनका कर्म ही उनकी पूजा थी। नजर से बचाने को माँ ने बांध दिए हाथ पैरों में काले धागे, मगर माँ नहीं जानती थी कि ताकत काले धागों में नहीं, माँ के हाथों में है।
1: वाह क्या बात है।
0: जी
1: मेरे हिस्से का आकाश, जिसका जिक्र भी किया, जेब में भरकर सपने सारे और चुस्कियां, तो ये सारी कविता संग्रह
0: जी जी
1: हैं। इनकी इनका भी जिक्र कीजिए, क्या इनके पीछे भी कोई प्रेरणा है, कोई
0: नहीं,
1: कहानी है, और कितने
0: दरअसल
1: कविता संग्रह आए ये भी बताइए।
0: हाँ, मेरे 5 कविता संग्रह आए हैं। लोगों के लेखन की अलग अलग शैली होती है।
1: जी।
0: तो पहले तो मेरे हिस्से का आकाश कविता संग्रह की बात करूं, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि हर स्त्री को अपना अस्तित्व, अपना आत्मबल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, बेशक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन स्त्रियों का अपना अस्तित्व है। स्त्रियों ने अपनी बेटियों को उनके बेटी होने के गर्व के साथ परवरिश देना चाहिए।
1: जी।
0: मुझे हमेशा अपने स्त्री होने पर गर्व रहा, और मुझे लगता है कि अपने हिस्से का आकाश तो हमें ले ही लेना चाहिए। कोई कहता है एक मुट्ठी आसमान, भाई एक मुट्ठी आसमान क्यों, हमारे हिस्से का जितना आकाश है
1: सारा
0: पूरा
1: आकाश,
0: दीजिए
1: क्या
0: ना,
1: बात
0: है
1: है।
0: ना, सारा आकाश। तो मेरे हिस्से का आकाश ये कविता संग्रह था। मुझे लगता है कि अमूमन जो स्त्रियों की स्थिति है
1: जी।
0: वो कैसी है, तो उसकी एक कविता है जाल,
1: जी।
0: शीर्षक है जाल। मैं चहचहाती थी, मैं मुखर थी,
1: क्या बात है।
0: उसने कहा तुम वाचाल हो। मैं चुप रही, कुछ ना बोली, उसने कहा गुन्नी हो।
1: ओ

0: मैंने तिनका तिनका जोड़कर घर सजाना चाहा, उसने कहा खर्ची ली हो। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा निकम्मी हो।
1: ओहो,
0: मैंने धरती चाही, उसने पिंजरा बना दिया। मैंने आकाश चाहा, उसने जाल बुन दिया।
1: क्या बात है,
0: तो क्या मेरा कुछ नहीं, तो क्या
1: मेरा
0: कुछ
1: कुछ
0: नहीं
1: जी।
0: उसने उदारता दिखाई और मुझे क्षितिज दे दिया, कहा जा पूरा क्षितिज तेरा। जो दिखाई तो दिया मगर हाथ नहीं आया।
1: क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। तो हम जरा विराम देते हैं
0: जी,
1: बातचीत को और एक गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
0: सोनू निगम का जो अग्निपथ वाला गाना है,
1: हाँ?
0: अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी
1: बाकी
0: है
1: है
0: जिंदगी,
1: जी,
0: वो वाला सुनवा दीजिए।
1: तो चलिए सुनते हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: तो शरद जी की आपके लेखन की दुनिया में क्या भूमिका रही है?
1: शरद जी से भी जब कोई ये सवाल करते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई मेरी भूमिका कुछ नहीं रही है, और इतनी भी नहीं है कि मैं उसका लिखा हुआ पढ़ता हूँ, वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं, टीका टिप्पणी भी नहीं, लेकिन जब भी समाचार पत्रों में कुछ आता है तो वो जरूर

0: पढ़ते हैं और कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है और ऐसा सब। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ करने के लिए उनकी इजाज़त लेना पड़ती है। मैं अपने कार्य करती हूँ, है ना, उनका अपना फील्ड अलग है, मेरा अलग है। लेकिन कभी उन्होंने किसी प्रकार की रोक ऐसी नहीं लगाई कि नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो
1: जी।
0: और लेखन चूंकि मैं मुझे प्रिय रहा है और लेखन के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार पाती हूँ, उनकी भूमिका इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। मेरा जो लेखन का वक्त है वो दोपहर का है।
1: अच्छा जी।
0: कभी कभी सुबह भी होता है। ये कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे लेखन के लिए मुझे एकांत चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज आई कि मुझे ये लिखना है, तो अपने किचन में मैंने एक डायरी और पेन रखा हुआ है, वो फिक्स है। कभी कभी काम करते करते कोई विचार आया
1: तो नोट कर,
0: तो आटा गूंद रहे और फटाक से हाथ धोए और पहले उसके चार बिंदु लिख लिए।
1: वाह क्या बात है
0: जी। और फिर उसको विस्तार दे देती हूँ, क्योंकि कई बार कोई बिंदु आपके दिमाग में आता है वो छिटक जाता है कई बार, तो वो लिख लेती हूँ। तो मुझे ये शिकायत कभी नहीं रही कि अरे मुझे एकांत नहीं मिला या लिखने का वक्त नहीं मिला। वक्त तो चुराना पड़ता है किसी भी काम के लिए, और वो वक्त चुराने में मुझे लगता है कि मैं माहिर हूँ, चुरा लेती हूँ
1: जी। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये आपकी जो प्रेम कहानी है कैसे शुरू हुई और कहाँ मुलाकात हुई, वो एक दृश्य भी बताती चलिए।
0: मुलाकात हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, वो डॉक्टर थी। अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो हम उनके यहाँ हम मिले। उस वक्त मैं पढ़ रही थी, बीए कर रही थी, और शरद जी भी वहाँ आए अपने मित्र के साथ। तो बाद में उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे तो ना इस लड़की से शादी करनी है, ये जो येलो फ्रॉक वाली लड़की से। फिर उसके बाद हम काफ़ी समय तक नहीं मिले, लेकिन फिर इनकी एक और मित्र हैं, उनकी पत्नी के पड़ोस में हम रहने चले गए किराए से। तो जैसे उसने मुझे देखा तो उसने जाके पीसीओ से, वो एसटीडी पीसीओ होते थे उस समय, वहां से इनको फोन किया कि अरे आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो हमारे घर के बाजू में रहने आई है। तो शरद जी वहां आ गए और हमारी दो चार मुलाकातें हुई। तब तक मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ इनके मन में है। फिर लेकिन इन्होंने होली वाले दिन जो है वो प्रपोज कर दिया।
1: होली के दिन
0: प्रपोज किया। रंगे पूते थे बिल्कुल, और पहले उस समय ग्रीन और पिंक कलर चला करता था, उसमें रंगे हुए थे। लेकिन तो मैं थोड़ा सा चौंक गई कि अरे एकदम अप्रत्याशित था वो। तो उस समय तो मैंने, और मेरी चूंकि एग्जाम चल रही थी तो मुझे पूरा ध्यान उधर देना था, लेकिन पता नहीं फिर कुछ मेरे मन में भी कुछ तो अंकुरित हुआ होगा। तो फिर फाइनली हम लगभग एक महीने के बाद में मेरी रजामंदी रही।
1: ज्योति जी एक बार फिर हम आपके लेखन की दुनिया में लौटते हैं। आपकी जहाँ तक मुझे जानकारी है 17 किताबें हैं और बहुत सारी किताबों को पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, शब्द साधिका सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। किस कृति के लिए मिला और वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका?
0: ये जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मुझे मिला है, ये मेरी पुस्तक यात्राओं का इंद्रधनुष के लिए मिला। इसमें मेरे सारे यात्राओं के वर्णन हैं
1: जी।
0: और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी, गौरव की बात थी। यात्राओं के वृतांत का चलन अंग्रेजी में बहुत है, हिंदी में बहुत कम है
1: जी।
0: वो किताब जब चयनित हुई तो मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। हमको जब भी मैं यात्राएं करती हूँ तो आने के बाद में सब थक्के सो जाते हैं, लेकिन मेरी आदत चूंकि सुबह जल्दी उठने की है तो 5 बजे नींद खुलती है और मैं डायरी लेके पिछले दिन की तमाम बातें नोट कर लेती हूँ।
1: बढ़िया।
0: तो जब हम यात्रा वृतांत लिखने लगते हैं तो वो सारी चीजें काम आती हैं। तो मैं जब भी बाहर से आती हूँ सारे यात्राओं के वृतांत लिखती हूँ। तो जब बात पहाड़ों की हो रही थी तो जितने भी कठिन यात्राएं हम कर चुके
1: जी जी,
0: जिसमें सिक्किम के, लेह लद्दाख के, ये सब तो थे। इसके अलावा जो हमारी एक प्रमुख यात्रा है वो है कैलाश मानसरोवर की। वो अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर तो है ही, कैलाश पर्वत में एक चुंबकीय आकर्षण है। मुझे लगता है वो हमको अपनी ओर

0: खींचता है। जब हम 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जब कैलाश के चरण स्पर्श को जाते हैं
1: जी,
0: तो मेरा अनुभव तो ये था कि मैं वहां से लौटना ही नहीं चाहती थी।
1: वाह क्या बात है।
0: और मुझे मालूम नहीं ये आस्था है क्या है, कुछ तो स्पिरिचुअल है। और वहां मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये भाव वहां पर आते हैं। और कठिन यात्राओं में 2 बार मैंने स्कूबा डाइविंग किया है, क्योंकि मुझे मछलियों की तरह तैरना अच्छा लगता है।
1: कहाँ पर की है स्कूबा डाइविंग?
0: स्कूबा डाइविंग मैंने एक तो मालवण में की है और दूसरा स्कूबा डाइविंग मैंने किया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वाला थोड़ा गहरे पानी में किया है, पर वो भी अद्भुत अनुभव रहा
1: जी।
0: और इसी तरह मैंने हवाई जहाज से कूदी मारी, स्काई डाइविंग हमने की दुबई में। और उसमें भी जो चिड़ियाओं की तरह उड़ने वाला था वो पैरासेलिंग और स्काई डाइविंग से पूरा हो गया सपना।
1: तो चलिए इस खुशी के नाम एक गाना सुनते हैं।
0: शान की आवाज में हम एक गाना सुन लेते हैं, चांद सिफारिश जो करता हमारी।

0: भी आप माहिर हैं, तो ये कहाँ से सीखा, कहाँ से इसका बीज पड़ा आपके मन में?
1: तो दरअसल मेरा बचपन जहाँ बीता वहाँ
0: हाँ
1: पर बाड़ा होता था, एक गुआड़ी बोलते थे उसको मालवा में।
0: जी।
1: तो 16-17 घर थे और हर घर के आगे एक कच्चा ओटला हुआ करता था। वो ओटले का बनावट ऐसी होती थी, चौकोर होता था वो। हर घर के आगे एक ओटला, तो ओटला कैसा होता था कि

0: रंग से डिजाइन बनाई जाती थी,
1: जी
0: वो जो पुरानी परंपराएं हैं वही डिजाइन होती थी। तो ये हमने हमारी दादी से, बुआ से, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से, चाची भाभी, पहले तो ये रिश्ते होते थे ना, आंटी अंकल तो होते नहीं थे, तो कोई भाभी, चाची, काकी, मामी, बुआ जी, मामी जी, ऐसे होता था। तो वो लोग, चूंकि माँ नौकरी करती थी तो जब सब महिलाएं मांडने बनाती थी, तो चूंकि माँ नहीं है तो चलो भाई माँ की बेटी को पकड़ो, है ना। तो मुझे कहते चलो गुड्डी, गुड्डी मेरा बचपन का नाम था, गुड्डी चलो आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, मांडनो बनाई ले, मालवी बोली में बोलते थे हमारे, आजा तू भी। तो मैं अपना खेरू गड़िया एक कटोरी में लेके बैठ जाती थी खड़िया, और उनके देखा देखी कुछ कुछ टिपकी लगा के गोला बनाया, ऐसे करके मैंने शुरू किया। तो बीज जो था वो वहां पड़ गया, फिर वो बनाती रही, फिर शादी होकर आए तो रंगोली बनाना घर में, घर के आगे ऐसा सब। उन दिनों हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा था, तो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे, चूंकि मांडना प्रेम था, और मेरा कॉलेज में बीए में मेरा एक सब्जेक्ट पेंटिंग था,
1: जी जी,
0: तो हाथ चलते थे, ब्रश चलता था, तो मैंने उसको टेराकोटा से पेंट करके और उस पर रेड व्हाइट कलर से अपना बना दिया, मरून कलर से उसको पोत लिया और व्हाइट कलर से उस पर डिज़ाइन बना ली, कुछ मिरर चिपका दिए छोटे छोटे ऐसे करके। तो मेरी जो छोटी बेटी है चानी, उससे बोला मम्मी बहुत सुंदर बना है, आप थोड़े ज़्यादा बनाओ ना, अपन एग्जीबिशन करते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी। तो वो क्या, थोड़ा बिजनेस फैमिली वाली है ना, तो चूंकि शरद जी बिजनेस में, तो उसके भी दिमाग में बिजनेस के आइडियाज आते रहते हैं, तो उसने बोला मम्मी एग्जीबिशन करते हैं। तो मैंने जो पहले जो मांडने बनाए वो करीब 300 के करीब मांडने बनाए मैंने।
1: वाह क्या बात है। वो
0: फिर लकड़ियाँ प्लाई लिया ऐसे करके, और आप यकीन मानिए कि मेरी जो पहली एग्जीबिशन थी उसमें सिर्फ 8 मांडने वापस घर आए, बाकी सारे बिक गए।
1: वाह क्या बात है।
0: तो इस तरह से अलग अलग होटल्स में वहां पर एग्जीबिशन होती थी, तो वो की। और उस वक्त तो सबको बना बना के गिफ्ट में भी यही दे दिया, कभी किताब कभी मांडना, ऐसा हस्तलिखित या हाथ की चीज का की वैल्यू अलग होती है, उसकी वो अनमोल होती है दरअसल।
1: अब लघु कथाओं की बात करते हैं, लघु कथाएं भी आपने लिखी हैं और संग्रह आए, कुल कितने लघु कथाओं के संग्रह आए और किसी लघु कथा का जिक्र कीजिए यहाँ पर।
0: जी, मेरे पहला लघु कथा संग्रह था मेरा जलतरंग, दूसरा था बीजू का, तीसरा था 99 का फेर, और जो चौथा लघु कथा संग्रह है मेरा वो है गोद भराई, और वो मैंने मालवी में लिखा है। मतलब मालवी हमारे यहाँ की बोली है।
1: जी जी।
0: मैं चूंकि हिंदी लिखती हूँ, हिंदी ही मेरा विषय रहा है, लेकिन जिस परिवेश में आप रहते हैं, जहाँ बोलियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि बोलियाँ बचाना भी बोलियों वालों का दायित्व है।
1: जी जी।
0: तो चूंकि मैं मालवा से हूँ, तो मैंने एक पुस्तक मेरी मालवी बोली में मैंने निकाली है, तो एक लघु कथा संग्रह वो है, और मेरा जो पांचवा लघु कथा संग्रह है वो मेरे ख्याल से अगले महीने मेरे हाथ में आ जाएगा।
1: अच्छा।
0: जो षष्ठी पूर्ति के नाम से आ रहा है, क्योंकि जब मैं, मुझे लगा 60 बरस हुए तो 60 बरस में 60 लघु कथाएं तो होनी चाहिए,
1: क्या
0: तो काफी समय से लिख रही थी और इस तरह से वो, तो मेरे कुल जमा भी 5 लघु कथा संग्रह है।
1: बढ़िया।
0: तो मैं, आप कहें तो एक लघु कथा यहाँ पर सुनाऊं मैं।
1: जी।
0: दरअसल लघु कथा का शीर्षक है ढक्कन।
1: जी।
0: ढक्कन। विष्णु जी और सरला जी दोनों ही उस सुबह अपने दैनंदिनी कार्यों में व्यस्त थे। जीवन की सांध्य बेला में भी उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। विष्णु जी दिन भर में 5-10 दफा कोस लेते थे। उस दिन सुबह भी शहद की बरनी का ढक्कन खोलने का निरर्थक प्रयास करते हुए बड़बड़ा रहे थे। इस उम्र में आकर भी अकेलापन।
1: जी।
0: अकेलापन कहाँ, उनसे 2 ही बरस छोटी सरला जी ने उनके हाथ से बरनी लेते हुए हंसकर कहा, मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती आपको, अनजान मत बनो, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी क्या इसी दिन के लिए, उनके स्वर में नाराजगी थी। सरला जी ने मन ही मन सोचा, क्या सारी गलती बच्चों की ही है, क्योंकि वे अपने पति का स्वभाव भी जानती थी, लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, यह लीजिए, पतले कपड़े की सहायता से ढक्कन खुल गया है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगली बार थोड़ा ढीला छोड़ना होगा, ढक्कन को भी और रिश्तों को भी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक मुकम्मल लघु कथा आपने
0: हाँ,
1: सुनाई।
0: लघु
1: और
0: कथा की विशेषता ही यह है
1: हाँ
0: कि उसके अंत में एक पंच होता है,
1: जी जी जी बहुत
0: और वो
1: बढ़िया
0: पंच जो है वो पूरी लघु कथा का सार होता है।
1: जी
0: जी
1: ज्योति जी।

0: लेखन की दुनिया में
1: जी
0: बहुत तरह के बदलाव आए हैं,
1: जी
0: लेकिन स्त्री लेखन आज कहाँ पर है? स्त्री लेखन में किस तरह के बदलाव आप महसूस करती हैं? किस तरह की चुनौतियाँ आज अभी भी कायम है?
1: चुनौतियां तो हैं।
0: जी
1: जब हम पुरुष प्रधान समाज में हैं तो चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन स्त्री लेखन में एक जो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है वो है खुलापन अधिक हो गया है। मैं उससे सहमत नहीं होती हूँ,
0: जी
1: क्योंकि मैं मालती जोशी की कहानियों को पढ़कर बड़ी हुई हूँ।
0: जी जी
1: उनकी कहानियों की नायिका स्वाभिमानी होती थी, लेकिन उनके लेखन में खुलापन कभी नहीं रहा। उनकी नायिकाएं दबी कुचली नहीं होती थी,
0: जी
1: उनकी नायिकाएं षड्यंत्रकारी भी नहीं होती थी, लेकिन अब खुलापन भी आ गया है और महिलाओं को षड्यंत्रकारी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कई जगह।
0: जी
1: मुझे लगता है वो आवश्यक नहीं है। कई बार मुझे कुछ लेखिकाएं कहती भी हैं कि तुम्हारे लेखन में इतनी सात्विकता की क्या जरूरत है, मेरा पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ
0: जी
1: और उससे मुझे सुख मिलता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप लेखन कर रहे हैं, उससे आप सुख मिलता है और संतुष्ट हैं, तब तो आपका लेखन सार्थक है।
0: जी
1: तो बदलाव आया है। दूसरा ये कि कई बार ऐसा सुनने में आता है और देखने में भी कि महिला लेखिकाओं को मतलब संघर्ष अधिक करना पड़ता है,
0: जी
1: एक मुकम्मल स्थान उनको कई बार वो नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम अपना लेखन ईमानदारी पूर्वक करते रहें
0: जी बिल्कुल सही कह रही हूँ।
1: और अपने प्रयासों को जारी रखें तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना स्थान बनाने से कोई रोक सकेगा।
0: बिल्कुल। हमें ये बताइए कि इतनी सारी किताबें हैं, तकरीबन 17 किताबें आपकी आ गई हैं,
1: जी
0: तो आपके मुख्य मूल रूप से विषय कहाँ से उठाती हैं, कौन से विषय होते हैं?
1: विषय आसमान से नहीं आते, है ना? विषय हमारे चारों तरफ होते हैं। मैं यहाँ इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि देखते तो सभी हैं लेकिन उन्हें पकड़ने की और फिर अभिव्यक्ति की जो ताकत है वो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे लोग गॉड गिफ्ट कहते हैं। एक अखबार में खबर आई थी, एक बच्चे को, कोई शिशु था, वो झाड़ी में फेंक के कोई चला गया, नवजात शिशु।
0: जी
1: अब नवजात शिशु झाड़ी में फेंक के गया तो पता चला कि वो तो लड़का है। तो एक कोई अम्मा ने बोला, अरे लड़क छोरो फेंक गई, छोरी होती तो बात थी।
0: ओ
1: मतलब देखिए
0: हाँ
1: समाज की मानसिकता कैसी है कि अगर लड़की को फेंक दिया होता तो बात समझ में आती, लड़के को क्यों
0: क्यों
1: फेंका।
0: फीका?
1: तो ये बीज हो गया, अब इसको विस्तार दे करके कथा का रूप हो गया। एक बार मैं अपने एक्टिवा पे जा रही थी और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, तो मैंने बोला कि भाई रेड लाइट है, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ऊपर से निकल जा। हाँ ऊपर
0: अच्छा
1: से निकल जा भाई, तेरे को
0: हाँ
1: जल्दी।
0: जल्दी है तो
1: लेकिन वहां उस उन 39 सेकंड में खड़े खड़े दिमाग में आया, तो मैंने जाकर के एक व्यंग लिखा कि हवाई जहाज में चढ़कर हम जाएंगे दफ्तर,
0: क्या बात
1: है ना?
0: है
1: तो इस तरह से विषय कब आ जाते हैं। और इन सब विषयों के साथ साथ जनरली सामान्यतः लोग बोलते हैं कि राजनीति महिलाओं का विषय नहीं है, राजनीति पर महिलाएं नहीं लिखती। मन्नू भंडारी जी की महाभोज की हम बात करें तो बहुत कम है जिन्होंने, महिलाओं ने राजनीति पर लिखा है। तो मेरा एक उपन्यास है पार्थ तुम्हें जीना होगा, वो पूरा राजनीति पर है उपन्यास, और उसकी नींव ही पड़ी कि मुझे, मैं उन दिनों राजनीतिक परिदृश्य से बहुत विचलित थी और मुझे लगता था कि ऐसा कोई युवा और ईमानदार नेता होना चाहिए जिस पर जनता भरोसा करे, जो ईमानदार है, युवा है और अपने कार्य के प्रति समर्पित है।
0: जी जी
1: तो वो अर्जुन के रूप में मेरे सम्मुख आकर के खड़ा हो गया। तो मैंने बस उसके बिंदु लिखे कि ये उपन्यास मुझे लिखना है और वो मैंने लिखा। और हमारे आसपास जो सामाजिक विसंगतियां होती हैं
0: जी
1: वो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
0: जी जी
1: और माँ के लिए ही बस दो लाइनें कहूंगी कि गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी।

0: वाह,
1: गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी, संस्कारों का धागा जो था माँ के पास।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। अब चलते चलते कोई एक कविता और सुनाना चाहेंगी?
1: मैं अंतिम, इसकी अंतिम तो नहीं, अंतिम से एक पहले वाली
0: कविता
1: कविता
0: सुना
1: सुनाती
0: चाहते
1: हूँ।
0: हैं।
1: उसका शीर्षक है अर्थी। पूर्ण हुआ है जीवन, अब तो विदा की बेला आई है। बांसों का ताना बाना बुन अर्थी आज सजाई है। जीते जी जो मिल ना पाए, कांधे सारे आज मिले हैं। चला चली की इस बेला में किसी से भी ना शिकवे गिले हैं। जीवन भर जो इर्द गिर्द रही, उसी काष्ठ की अर्थी सजी है। नया जन्म पाने को ही तो आत्मा ने यह देह तजी है। इसका शीर्षक है खिड़की। यह भी कविता है दुनिया काठ की किताब से ली है।
0: जी
1: वह लकड़ी की खिड़की, शीशा भी नहीं है जिसमें, जब खुलती है तो भीतर आ जाते हैं सपने, हवा के साथ कभी कभी ले आती है मोगरे की सुगंध भी। और जब रहती है बंद, तब भी रात में निकला चांद, महसूस कर लेते हैं सपने सारे।
0: क्या बात है, बढ़िया कविता, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने साझा की ज्योति जी।
1: जी
0: आपका
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: मुझे
0: नमस्कार।
1: भी आपसे मिलकर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग मिला योगिता जाधव से, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के मेहमान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: रंग तरंग
1: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में सलमा की ओर से नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाई से तर के मुलाकात बताते भी नहीं। उस्ताद शायर दाग दहलवी का कलाम समाप्त कीजिए बेगम अख्तर की आवाज में। मौसिकी है खयाम की।

मांग कर तुमसे खुशी लूं मुझे मंजूर नहीं, किसी का मांगी हुई दौलत से भला होता है। तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। आइए सुने मुनीर का कलाम, गायक और संगीतकार अनूप जलोटा की आवाज में।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका, उषा मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार।

0: संगीतकार उत्तम सिंह एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
1: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
3: चिट्ठी न कोई संदेश
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीत संगीत है ललित का। एल्बम का नाम है मैंने पायल है छनकाई।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सुनिधि चौहान को सुनिए अगले पॉप गीत में। गीतकार है विशाल ददलानी, म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए एक गैर फिल्मी रचना लक्की अली की आवाज में। असलम का लिखा गीत, एल्बम का नाम है सिफर।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए अलीशा चिनोई की आवाज में। गीतकार हैं श्याम अनुरागी, म्यूजिक है बिद्दू का, एल्बम का नाम है मेड इन इंडिया।

0: साथियों, कार्यक्रम रंग तरंग अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: ଶିଳ୍ପୀ ସଜ୍ଜନ କୁମାର ବଳ ଓ ସାଥୀଙ୍କ ପରିବେଷିତ ଝୁମର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବିବିଧ ଭାରତୀ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରଣ ସେବା ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आग और शोला।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वाले के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अलका याग्निक और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजें हैं अगले गीत में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है अग्निपथ।
3: मेरे हीरो,
4: ये क्या करती?
3: मेरे जानो,
4: मुझे डर लगती है।
3: मेरे बालम,
4: तेरा भाई हमको मारती।
3: तुझे सलाम। मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
4: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
3: तूने क्यों मुझे बचाया?
4: बस अपना फर्ज निभाया।
3: क्या तू कुछ भी कर जाता?
4: कर जाती।
3: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
4: अच्छा अच्छा, कर जाता।
3: मेरे लिए मर जाता?
4: हाँ मर जाता।
3: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेन इलवालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, फिल्म का नाम है अकेला।

थोड़ा संभल संभल के आया मैं सीधा चल के, पर लड़खड़ा गया मैं, मेरी चोरी पकड़ी गई ना, मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना।

शादी तो है झमेला, दिन रात की सलामी, बीवी की है गुलामी, बीवी की है गुलामी, बीवी की है गुलामी। फिर उसके बाद बच्चे रोते हैं अच्छे अच्छे मुझको

0: जश्न शादी बाकी है रात आधी, नाचूंगा गाऊंगा रे मैं आज सारी रैना, नाचूंगा गाऊंगा रे मैं आज सारी रैना, मुझे आज कुछ न कहना मेरा दिल ठिकाने है ना, मुर्गे से बोली मुर्गी तोते से बोली मैना, मुझे आज कुछ न कहना मेरा दिल ठिकाने है ना, मुझे आज कुछ न कहना मेरा दिल ठिकाने है ना, मुझे आज कुछ न कहना मेरा दिल ठिकाने है ना, मुझे आज कुछ न कहना मेरा दिल ठिकाने है ना।
1: आइए अब सुने अलका याग्निक को। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है खलनायक।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

कार्यक्रम यादों की महफिल में आज हमने सुने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे कुछ यादगार गीत। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनिए बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में बनके हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता दें आज की इबारत।

एग्रीमेंट परमानेंट हो गया, फिर कैसे एक्सीडेंट हो गया? पतरी की है मोटर का, जानवर सी नहीं वफादार, मरते दम तक चले टमटम तो रुत रंगीन हो जाती है, डोर से पतंग जब टूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। सबकी जुबां पर मेरी कहानी, मुश्किल है यूं मुझको फंसाना, अरे पगला है कोई उसको बताना, वो क्या है मैं कौन हूं ये जान चुकी हूं मैं, उसको अपने साथ ही लाना कि दिल ही नहीं लगता। वो रोए तो राजेंद्र, हंसे तो जितेंद्र, हर हीरो की खूबी उसके अंदर। मुझको ये इशारा मिला है कि तूफान में जैसे किनारा मिला है, तेरी नजर पे ही ये मेरी नजर है कि तूने बिठाया है मुझ पे पहरा, आया है जोगी बनके लुटेरा। प्यार की कीमत किसने अदा की, जब कभी होंगी बातें वफा की, सबकी जुबा पर होंगी अपनी कहानियां, अब याद में तेरी कट जाएंगे जीवन के दिन चार, खुश रहना मेरे यार। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश। सुरीला सफर का इवेंट है ये, इबारत नहीं अरेंजमेंट है, श्रोता गण भी प्रेजेंट है, अनोखा कंटेंट है, गाने सभी इबारत में ही साइलेंट है, संगीत में सफर में उपस्थित रहने का हमारा भी कमिटमेंट है। आज की कहानी इंसानियत की पहचान कराती है, जो ईमानदार होता है, जो ईमानदार होता है वो वफादार होता है और वही परेशान होता है। घोड़ा हाथी की हालत कैसी होती है, जब ज़रूरत होती है तब तक रखते हैं, उसके बाद मोटर ट्रैक्टर जैसे वाहन काम आते हैं। किसी ने ये मैसेज लिखा है कि वैसे तो मुझे सभी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, पर कुली का एक्सीडेंट हो गया वाला गीत मुझे पसंद है। एक्टर अमिताभ बच्चन इस गीत में बुरी तरह से घायल हो गए थे। और ये अगला कमेंट है कि आज की इबारत में वो गीत जो फिल्मों में पक्षियों, जानवरों, सांपों पे फिल्माए गए गीत हैं, जानवरों का फिल्मों में काम देखकर दर्शक बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। फिल्म नागिन, निगाहें, सूरज और चंदा में सांप पे फिल्माए गए दृश्य बहुत पसंद किए गए। सफ़ेद हाथी, हाथी मेरे साथी, माँ जैसे फिल्मों में हाथी का काम देखने लायक था, और तो और फिल्मों में तेरी मेहरबानियाँ में तो डॉगी ने कमाल का काम किया था, ऐसे लगा कि फिल्म का असली हीरो तो वही है। ये अगला मैसेज है कि आज की इबारत का सबसे खूबसूरत पहलू उसका भावनात्मक मोड़ है, चंचलता और ठिठोली से शुरू हुआ ये सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसमें गंभीर रुमानी करार और वफा, दर्द और विदाई का संजीदा रंग भी घुलने लगता है। प्यार की कीमत किसने अदा की से लेकर खुश रहना मेरे यार तक पहुँचते पहुँचते ये अल्लाह दास्तान एक क्लासिक ट्रेजिक रोमांस का रूप ले लेती है, जहां जुदाई का दर्द तो है मगर शिकवे के बजाय महबूब के लिए सिर्फ एक दुआ बची रह जाती है। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में, जिसमें आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना की ये फिल्म हिंदी फिल्मों के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है, जिसमें हाथी अपने मालिक का सबसे पक्का और वफादार दोस्त होता है। हाथी और उसके साथी नायक के परिवार की जान बचाने के लिए खुद की जान दे देते हैं। इस फिल्म में हाथी का नाम क्या था और राजेश खन्ना के साथ में अभिनेत्री कौन थी? अपने विचार, अपने जवाब, अपनी बातें हमें लिख दीजिए।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म में नायिका थी तनुजा, हाथी का नाम था रामू और शीला। ये एक कमेंट पढ़ते हैं कि पहिए बदलते रहे, कभी टमटम तो कभी रिक्शा और मोटर कार हो गई, बदला जमाना ऐसा कि हर पुरानी याद अब बस एक दीवार हो गई। वो जवानी के दिन और वो रुत मस्तानी अब कहाँ मिलती है साहब। तब टूटी साइकिल में भी वफादारी थी, आज बड़ी गाड़ियों में भी बेजारी हो गई। बस यही दुआ है कि यादों के सहारे जीवन के कुछ दिन कट जाएं और बिछड़ते हुए भी दिल से कहा जा सके कि खुश रहना मेरे यार। अगला ये कमेंट हमारे एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी कुछ ना जानने में ही शांति है, क्योंकि जीवन

जीवन कोई पहेली नहीं, जिंदगी के पास आपके सारे सवालों के जवाब नहीं होते, फिर भी हमें शांति के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये एक कमेंट है कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है। साथियों, हिंदी फिल्मों में जानवरों ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। कभी वो नायक के वफादार दोस्त बने, तो कभी कहानी का मुख्य हिस्सा बनकर दर्शकों को हंसाया रुलाया। हिंदी फिल्मों में जानवरों के कुछ सबसे यादगार और अहम रोल्स के बारे में हमें बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप कभी किसी जंगल सफारी में गए तो क्या कैसा अनुभव रहा, किसी नेशनल पार्क में जाकर क्या क्या देखा आपने, और ये भी बताएं कि बचपन में सर्कस देखी थी क्या कभी। और सबसे अहम बात, जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप? अब हम बात करेंगे फिल्म तेरी मेहरबानी, अपने मालिक की हत्या का बदला लिया था और ये रोल आज भी मील का पत्थर माना जाता है। तो इस फिल्म के हीरो हीरोइन और खलनायक के नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। और मैं साथियों आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, पढ़ती हूँ और आगे भी पढ़ती रहूंगी।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लन, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरापुरकर, असरानी राजकिरण थे और आवाज थी शब्बीर कुमार। गीतकार थे SH बिहारी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियां। आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दिए जो हमें मिल गए और हमने पढ़ भी लिए। अरे ये क्या लिख दिया आपने, ये एक कमेंट मिला है कि मैं अपनी चादर सिलने को बैठ गई हूं। तेरी मेहरबानियां फिल्म कुछ दिन पहले ही तो देखी थी, सच में आंखों में आंसू आ गए।

0: तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
1: गुग्लियमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
2: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
3: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है, क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
2: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
3: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है,
2: ना जाने क्या होगा इसका।
3: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
2: अरे वो सब तो ठीक है, पर
3: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
0: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की, और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
4: ऐसे ऐसे
5: जोर से मारना।
4: सैम है ना? अरे इधर तू आओ।
6: हाँ हाँ आते हैं।
4: सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
5: हम तो तैयार है मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
4: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
6: कैसा प्रयोग?
4: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
5: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
4: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
5: अच्छा
4: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
3: अच्छा।
4: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है। उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
6: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
4: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
6: हाँ हाँ।
4: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
6: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
5: अरे वाह, अरे वाह, क्या
6: बात है! वाह मार्कोनी, क्या क्या बात है!
5: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह क्या बात है! अरे वाह,
4: सिग्नल मिला?
5: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
0: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेज

0: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
1: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था।

0: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
1: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: सुन सुन, ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह!
0: रॉबर्ट, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
0: अरे ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो डैक की ओर, भागो।
6: क्या हो गया?
7: अरे ये क्या हो रहा है? यार पूरी तरह हिल रहा है। शांत हो जाइए, शांत हो
8: जाइए। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
9: हेड पर कितनी बड़ी खराब पड़ती है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर
0: जहाज की स्पीड कम करो। ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
8: यस

0: कैप्टन स्मिथ यस
1: ऑपरेटर जैक एमरजेंसी मैसेज भेजो सेव टाइटैनिक शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ आई रिपीट 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ और हेल्प लाइफ सेवर भेजो सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस
2: जल्दी जल्दी करो
1: जीवन रक्षक नावों के नीचे उतारो लाइफ बोट उतारो लाइफ बोट को नीचे उतारो
3: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
4: क्या आपको पता है टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
5: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग हेल्प हेल्प,
4: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: पीटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो विश्वास ही नहीं होता। विश्वास
3: नहीं होता। मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए,
6: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
7: धन्यवाद।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଶିଳ୍ପୀ ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ, ସଙ୍ଗୀତ ସରୋଜ ନନ୍ଦ।

পরবর্তী শিল্পী বিষ্ণু, গীতরচনা নিজাম।

0: let's just go there and execute ourselves in the positive way, and let's see how what do we achieve end of the day.
1: So Maria Tapatu picked up a 7-wicket haul, including a hat-trick last night on pitch number 3. What's your reading of this pitch?
0: Well, it's a very tricky wicket, and I think as a batting unit, we have to, just keep looking at the board and execute ourselves in the positive way. And I think there is a lot for bowlers, but I think there is, if you keep batting, keep giving yourself some time, you can also get scores.
1: What's your playing combination looking like for today?
0: We're going with the same 11.
1: And finally, facing Hong Kong, China, your expectations?
0: Well, I think they have been, playing really good cricket. We have seen they've been very, very positive in this competition, and we just want to, keep doing what we have been doing. And I think it's a great opportunity for us to, play another positive game.
1: All the very best.
0: Thank you.
1: Well, the toss is done and dusted, and the news from the centre is Hong Kong, China have won the toss and decided to bowl first.
2: जब जमीन छोटी हो तो आसमां छूने का जुनून और बड़ा हो जाता है। एक तरफ है नीले समंदर की गर्जना, 7 बार की एशिया कप चैंपियन भारतीय टीम, जिनके हर शॉट में एक लय का एहसास है और हर गेंद पर जीत की गूंज सुनाई देती है। दूसरी तरफ है हांगकांग का वो दस्ता, जहां कोई कोर्ट की वकालत छोड़कर मैदान में उतरी है तो कोई दिन भर की नौकरी के बाद रातों में पसीना बहाकर इतिहास रचने आई है। हांगकांग की ये खिलाड़ी नाम से अनजान सही, लेकिन इरादों में तूफान लिए खड़ी है। भारत और हांगकांग आज मुकाबला सिर्फ रन और विकेट से कहीं ज्यादा उस अनुभव का है जो एक तरफ आसमान छू रहा है, बनाम उस संघर्ष का जो आज पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाना चाहता है। फर्स्ट बॉल 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरी को होस्ट आस्था तिवारी। दो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पूर्व महिला क्रिकेटर वैशाली माथुर और वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आनंद। देखिए, जिस तरीके से अब जो ये मुकाबला होने वाला है हांगकांग के खिलाफ, भारत उतरेगी आज मैदान पर। पिछला जो मुकाबला था, कुछ खामियां रही थी, हमने देखा था। पहला सवाल मैं वैशाली माथुर से करना चाहूंगी कि आज जो हांगकांग ने हमें चुनौती दी है, दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुलाया है, तो कहीं ना कहीं कितना क्रूशियल होने वाला है ये क्लैश, क्योंकि पिछले मुकाबले में कहीं ना कहीं जो हमारा बल्लेबाजी का खेमा था थोड़ा सा डावाडोल दिखा था।
4: जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन इसमें आज के मैच में एक चीज बहुत खास है कि लास्ट हांगकांग थाईलैंड से हार कर आ रही है और वहीं इंडिया टीम थाईलैंड से जीत के आ रही है, तो ये एक बेनिफिट हमारे लिए। लेकिन जैसा हमारी हरमन ने बोला कि हमारे बैट्समैन को इस पिच के लिए यूज टू होना बहुत जरूरी है, और वो सही बोला है, क्योंकि अगर शेफाली वर्मा ही सिर्फ बैटिंग करेगी तो आने वाली आगे चुनौतियों में बहुत ही मुश्किल आने वाली है इंडियन टीम के लिए। और आज प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा के साथ साथ उनको भी चलना बहुत जरूरी है, स्मृति मंदना को भी चलना जरूरी है, और 200+ स्कोर कर जिन्होंने मैचेस खेले हैं हमारी हरमनप्रीत ने, वो लास्ट मैच में 5 पर ही आउट हो गई थी, और उस तरीके से मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग का बल्ला चलना चाहिए, वो बल्ला चलना बहुत जरूरी है आज। उतना ही इम्पोर्टेंट उनके नेक्स्ट मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्रूशियल मैच होने वाला है।

0: वाला. एंड उसके साथ अगर मैं बात करूं कि हांगकांग के अगर बॉलर्स की, तो दोनों टीमों में एक जो कॉमन चीज है वो ये है कि दोनों टीमों में जो अभी तक विकेट मिली है वो स्पिनर्स को मिली है. 11-11 विकेट दोनों टीम्स को स्पिनर्स के फायदा उनको मिला है. लेकिन आज टक्कर ये है कि क्या हांगकांग के जो स्पिनर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या उन स्पिनर्स के सामने हमारे बैटर खेल पाएंगे.
1: साल 2026 के आंकड़ों की बात करें तो भारत ने इस साल 17 मुकाबले खेले हैं. टीम ने 8 में जीत दर्ज की है जबकि 9 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. दूसरी तरफ हांगकांग ने इस साल 26 मैच खेले हैं, 16 में जीते हैं और 10 में उसे हार मिली है. मनोज जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इस बार का जो एशिया कप है बहुत ज्यादा टोटल हमने किसी भी मैच में नहीं देखा. पिछली बार और लगा कि भारत 200 के आसपास जाएगा, लेकिन फिर वो बैटिंग कोलैप्स जिस पर हमने चर्चा की, क्या अप्रोच होगा पावर प्ले में? चूंकि हरमन ने टॉस टाइम पे कहा है कि ट्रिकी विकेट है और जल्दी से जल्दी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे वो.
2: एक अच्छा सवाल है क्योंकि हर कोई चाहता है कि यहाँ पावर प्ले में रन बने. पावर प्ले में रन बन भी रहे हैं ऐसा नहीं है. हाँ, इस एशिया कप में जरूर रनों का थोड़ा सूखा है और गेंद थोड़ी सी रुक कर आ रही है. यहाँ बल्लेबाजों का बड़ा इम्तिहान है. अब आप ये देखिए कि अब तक 150 के आसपास ही हम रन बना पाए, जो कि हाईएस्ट स्कोर है हमारा पिछले मैच में, और उसमें भी एक कोलैप्स देखने को मिला. बाकी मैचों में आप देखेंगे तो 125 से ऊपर रन ही नहीं बने हैं, उससे नीचे ही रन बने हैं. तो ये बात कुल मिलाकर ये है कि आपको पिच की परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा. जिस तरीके से आपने जो कोलैप्स हुआ था अब उससे सीखना होगा, ग्रे एरियाज पर काम करना होगा. हरमनप्रीत को देखें आप, जो स्वीप खेलने जिस तरह से गई थी वो पिछले मैच में, और बड़ा आसान सा कैच, एक एज लगा था. शैफाली को देखें, एक फ्लाइट पर वो गच्चा खा गई थी. इसी तरीके से अगर आप अन्य खिलाड़ियों को देखें तो वो भी, प्रेमा रावत हो, भारती हो, ये सब जो है फ्लाइट या कहीं ना कहीं उस पर सामंजस्य नहीं बिठा पाई थी परिस्थितियों के हिसाब से. तो मुझे लगता है यहाँ पर इनको यहाँ ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है, अपनी गलतियों पर काम करना होगा. और यहाँ पर जीत हार कोई बहुत मायने नहीं रखती क्योंकि हर कोई जानता है मैच का परिणाम क्या होने जा रहा है. वैसे ठीक है, आप कितना भी कहते रहें क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है. मैं तो कहूंगा कि जो हमारे ग्रे एरियाज हैं उस पर आप काम कीजिए. जो हमारे ओपनर्स पर बहुत ज्यादा हमारी निर्भरता है उस पर उसको थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि मिडिल ओवर्स जो हैं वो हमारे परेशानी का सबब बने हैं. 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक जो हम रन नहीं बना पाए उतने ज्यादा ओवरसीज कंडीशन में, खासकर ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, क्योंकि यहाँ हमें हार मिली है इस साल. जैसे आपने शुरू में एक आंकड़ा दिया, वो इंटरेस्टिंग आंकड़ा है और मैं समझता हूँ भारतीय क्रिकेट की पूरी स्थिति को बताने के लिए वो काफी है. क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, श्रीलंका को अपने यहाँ हराया, उसके बाद हमारा पतन शुरू हो गया और T20 क्रिकेट में हम हारते चले गए लगातार सीरीज.
3: जिस तरीके से मनोज जी अभी आपने बोला कि कोलैप्स देखने को मिला, कहीं ना कहीं जो दारो मदार है बहुत ज्यादा स्मृति मानदना, और हमें देखा है शफाली वर्मा पे, तो थोड़ा सा हम इसमें जाना चाहेंगे वैशाली कि कहीं ना कहीं जो ये पिच है वो ज्यादा से ज्यादा बॉलर्स पे डिपेंडेंट है, बैट्समैन के लिए बहुत कम चीजें रह गई क्योंकि बहुत मैसिव टोटल नहीं आ पा रहा है. बहुत मैसिव टोटल सिर्फ हमने ही दिया और जो बाकी टीम्स हैं वो इतना नहीं कर पा रही है. तो इस बार जो पिचेस की डिपेंडेंसी है कंप्लीटली ऑन बॉलर्स है कि वो जितने पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, बहुत ज्यादा बैट्समैन के लिए नहीं है यहाँ पर.
0: जी बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी अभी लास्ट मैच में इंडिया की टीम की शेफाली वर्मा ने बहुत अच्छा स्कोर किया है. लेकिन चीज़ ये है कि आप बॉल के ऊपर कितना चढ़ के बॉल खेलते हैं, उस शॉट को खेलते हैं, और बॉलर को कितना जल्दी आप समझते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द मैच. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जब आप एक कोई शॉट खेल रहे तो उसको अकॉर्डिंग टू बॉल खेले. जब आप नए नए आए हैं तो आप क्रॉस द बॉल खेलेंगे तो चीज होंगे, जैसे हमने हरमनप्रीत कौर का लास्ट टाइम देखा था, वो फ्लिक कर रही थी और फ्लिक करने की वजह से उन्होंने पॉइंट पे कैच दे दिया था. तो उस तरह की गलतियां हम एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि हांगकांग और इंडिया टीम अगर आमने सामने खड़ी है तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स इंडिया भारत टीम के सामने हैं. और उसके साथ साथ हम अगर बात करें उनके हांगकांग के प्लेयर्स के बारे में, तो वो प्लेयर्स इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है क्योंकि जितने मैचेस हमारे बैटर्स ने खेले हैं वो बहुत ज़रूरी है. उनको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है और वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अगर आज के मैच में वो नहीं खेलेंगे तो आने वाले मैच में उनका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा और वो कॉन्फिडेंस इसी मैच से बिल्ड हो सकता है आज.
1: जी हाँ बिल्कुल, जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे

0: आकाशवाणी पर हम उनको बता दें कि अगर फर्स्ट बॉल 20 पर आप भी जुड़ना चाहते हैं और हमारे विशेषज्ञों से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। दिल्ली से बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो 0112342108 3। एक और नंबर है 2342108 5 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। जैसा कि वैशाली बता रही कि शेफाली ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, तो इस साल 17 पारियों में 150.14 की स्ट्राइक रेट से 503 रन उन्होंने बनाए हैं, जिनमें 5 अर्धशतक भी शामिल हैं। गेंदबाजी की बात करें तो श्री चरणी भारत की सबसे सफल बॉलर रही हैं। 16 मुकाबलों में 29 विकेट चटकाए हैं उन्होंने, 6.71 की इकोनॉमी से रन दिए हैं और 19 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट है इस साल। मनोज, दो खिलाड़ियों पर थोड़ी चर्चा करते हैं, प्रतिका रावल हैं और एक भारती फूलमाली हैं। भारती फूलमाली बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2019 में ही उन्होंने डेब्यू किया था भारत के लिए, उसके बाद ज्यादा मौके नहीं मिले। इस साल जमीमा चोटिल हो गई तब मौके उनको दिए जा रहे हैं और टीम प्रबंधन चाहता है कि लंबा खेलें। पहला मैच उनका भी बढ़िया नहीं रहा। प्रतिका रावल, हम सब ने देखा ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत प्रॉमिस दिखाया, चोट लगी, अब T20I डेब्यू किया है, इन दोनों के पास कितना बड़ा अवसर है।
1: देखिए, भारती ने जिस तरह से WPL में परफॉर्मेंस किया, बहुत उम्मीदें उनसे जगी, लेकिन उसके बाद वो अपना ख्याति के अनुकूल या अपना जो है नेचुरल परफॉर्मेंस दे नहीं पाई। अगर आप 7 पारियां देखेंगे, आप उनका एक बार, जहां तक मुझे ध्यान है, अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए, कि मेरे का 20 प्लस का स्कोर उनका या 22. एक ही बार है, बाकी जो 5-6 पारियां उनकी बहुत खराब पारियां गई हैं। और जिस तरीके से आउट होने का जो तरीका है अगर आप देखें तो उस पर भी उनको काम करने की जरूरत है। रही बात प्रतिका, आपने प्रतिका का जिक्र किया, उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मुझे लगता है ये फेज आता है और वो निकल जाता है और आपको जो है बहुत ही अपनी गलतियों पर काम करके आप उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हम ये दो खिलाड़ी आपने नाम लिए हैं, इनका चुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाकी अगर आप देखेंगे स्मृति शेफाली या फिर दीप्ति को आप लें या श्री चरणी का आपने जिक्र किया, ये हमारे स्टार प्लेयर हैं और ये मैं समझता हूँ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस अन्य भारतीय खिलाड़ी करती हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम की बल्ले बल्ले होगी। फिर ये तो खैर एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ आपके सामने एसोसिएट टीमें हैं और हमें अच्छा लगेगा कि हम तैयार हों और जो हमारी कमियां रही हैं, जो चैलेंजेस हैं, नंबर 3 की पोजीशन है, जैसे कि जेमिमा को नीचे खिलाना चाहते थे, जेमिमा अब यहाँ नहीं है, जसिका आई, कई प्लेयर इंजर्ड हो गई, फिर उसके बाद जो है फिनिशर कौन होगा हमारा, क्योंकि ऋचा घोष पर आप अति निर्भरता ठीक नहीं है, आपके पास कम से कम 2 या 3 अच्छे फिनिशर होने चाहिए, तो फिर बीच के ओवर्स, ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है ये टूर्नामेंट उसके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा और अपनी कमियों पर, गलतियों पर काम करने का एक अवसर प्रदान करेगा।
0: जी हाँ, फर्स्ट बॉल 20 में पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका।
2: आपको गुड इवनिंग, मैं वाई वेंकट रेड्डी, गांव लकोरम, जिला सूर्यापेट, तेलंगाना से बोल रहा हूँ।
0: जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप।
2: भारती फूलमाली को पिछले 1.5 साल से लगातार खिला रहे हैं लेकिन वो पूरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं, इनके बजाय अनुष्का शर्मा जैसे खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए, आप क्या कहते हैं इसके बारे में?
0: वैशाली,
3: क्वेश्चन बहुत अच्छा है उनका और उन्होंने सही क्वेश्चन भी किया है। मैं यही कहूंगी कि क्योंकि भारती के पास वो एक्सपीरियंस है एंड अनुष्का के पास वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर उन दोनों का रिकॉर्ड अगर उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड हमारी भारती फुरमानी का है, क्योंकि भारती एक ओपन बैटर रही है, नॉर्थ जोन में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इवन इंडिया ए में भी उन्होंने 50+ स्कोर किए हैं और वो अपना शो किया है। बट कहीं ना कहीं उनके जो इंडिया टीम के जो कोचेज हैं उनको ये समझाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी कि आप इंडियन टीम के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको हिटिंग शॉट्स के लिए रखा गया है और वो काम करना तभी जरूरी है जब उस पर वर्क करा जाएगा। वो अगर हम देखें लास्ट मैच में तो भारती फुलवानी को शॉर्ट पिच बॉल मिली थी और वहां पे उन्होंने पुल शॉट खेला, लेकिन वहां पे उन्होंने हाथ जो उनकी एल्बो थी वो एक्सटेंड नहीं हुई, उन्होंने बंद एल्बो से वो शॉट खेला, अगर वो एक्सटेंड होती तो वो 6 भी जा सकता था। तो ये छोटी छोटी कमियां हैं लेकिन बहुत कहने के लिए बहुत छोटी है, करने के लिए और देखने के लिए बहुत बड़ी हैं और इन पे काम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और वही प्रतिका रावल की अगर मैं बात करूं तो प्रतिका रावल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो T20 में उनका उतना हाई स्कोर नहीं है, एज कम्पेयर टू ओडीआई एंड वनडे क्रिकेट और

0: ओडीआई में उनका स्ट्राइक रेट सबसे बेस्ट है, बट टी20 में उनका स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है, और उस हिसाब से उनको 3 बैटर की जगह पे उनको 5 पे आना चाहिए, और हरमनप्रीत को अपने आप को थर्ड बैटिंग लाइनअप पे लाना चाहिए। मेरा ये एक मैंने जो देखा है अभी तक सिनेरियो, ये मुझे बैटिंग लाइनअप सबसे बेस्ट लगा है।
1: एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फर्स्ट बॉल 20 में, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार सर।
1: नमस्ते, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप?
2: सर मैं जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा एलओसी से फारूक अहमद बात कर रहा हूं सर।
1: बहुत स्वागत है आपका।
2: सर मुझे बता दीजिए कि इंडियन बैटर्स की ये जो प्रॉब्लम है स्पिन बॉलर्स के खिलाफ, ये कब तक जारी रहेगी? इसमें कोई सलूशन है तो वो बता दीजिए। और सर एक और बात है सर, ये आज विनीत गर्ग सर कमेंट्री के लिए होना चाहिए।
1: मनोज जी आपको स्पोर्ट्स एक्सपर्ट की जगह एस्ट्रोलॉजर की कुर्सी पर भी बिठाना चाहते हैं, बताएं।
3: अरे आपने धर्म संकट में डाल दिया मुझे। बाकी आपका सवाल?
1: सवाल उन्होंने ये जानना चाहे कि स्पिनर्स को खेलने में भारतीय बैटर्स लगातार फ्लॉप क्यों हो रहे हैं।
3: देखिए ये जो है कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि आपको गेंद को मेरिट पर, खैर देखिए ये सारी चीजें हम रटी रटाई चीजें बोलेंगे, मैं तो समझता हूँ कमिटमेंट के साथ आप खेलें, ग्रे एरियाज पर काम करें, और ज्यादा ज्यादा सोचें नहीं, बस आपको रन बनाने हैं, आपको जो लक्ष्य दिया गया है उसको पूरा करना है। क्योंकि अब आप ये देखें ना, जिस तरह से आप अपने देश में जितना क्रिकेट खेलते हैं, आपने ज्यादातर क्रिकेट अब बाहर खेला है पिछले कुछ समय से, अगर आप देखें तो इंडिया में आपको वैसा परफॉर्मेंस करने के लिए स्पिनर्स की कमी नहीं है, स्पिनर्स बहुत हैं आपके पास। आपके पास दीप्ति शर्मा से लेकर आपके श्री चरणी हैं, और भी कई ऐसे स्पिनर्स हैं। मुझे लगता है एक ऐसा पूल होना चाहिए जो आपको लगातार, जैसे स्पिन बॉलिंग एकेडमी होती है ना, आप वहां पर प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा खेलें, क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है अगर वही हमारी कमजोरी बन जाएगी तो फिर वही हश्र होगा जो टी20 क्रिकेट में हमारा महिला क्रिकेट में हुआ, जो हमारा पुरुष क्रिकेट में भी यही समस्या से रूबरू होना पड़ा है भारतीय टीम को। तो इस पर वाकई युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है, और मैं इनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल भारतीय क्रिकेट की दुखती रग पर उंगली रखी है।
4: मैं जानना चाहूंगी वैशाली कि उन्होंने बात करी कि हम स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, बट थोड़ा सा कैप्टन्स प्रस्पेक्टिव भी हम यहाँ पर लेंगे। हरमनप्रीत कौर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन है हमारे, और अभी जितनी डिफिकल्टीज में टीम खेल रही है, या फिर मैं थोड़ा सा ये कहूँ थोड़ा सा जो कोलैप्स हो रहा है यहाँ पर, कितना ज्यादा प्रेशर आ जाता है एज अ कैप्टन, क्योंकि वो आउट भी हो गई वहां से, स्मृति मंदना जो है उनका रन आउट हो गया, प्रतिका के रन नहीं आए। मे बी जब आप डेब्यू करते हो तो थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर होता है, तो एज अ कैप्टन जब आप इन सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए मिडिल ऑर्डर में ऊपर आ रहे हो, एक बहुत ज्यादा कंपेटिटिव टीम नहीं है आपके अगेंस्ट, बट एज अ कैप्टन उस समय कोई प्रेशर का रोल रहता है कि जो उन्होंने शॉट मारा और उसके बाद वो आउट हो गई?
0: वैसे कोई, जैसे हमारी हरमनप्रीत कौर खेलती हैं और उन्होंने जैसे मैंने अभी बताया कि 200 प्लस स्कोर भी किया है, तो इस टाइम पे उनका वो प्रेशर हैंडलिंग उनको बहुत अच्छे से आता है। एंड अगर ऐसा है कि कहीं किसी के बैट से अगर बल्ले से रन नहीं आ रहे, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेयर की भी गलती है, क्योंकि हम कहते हैं देखने में वो टीम गेम है जब आप फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जब बैटिंग कर रहे हैं वो इंडिविजुअल गेम भी बन जाता है, क्योंकि आपके जगह पे वो 10 जो बाहर बैठे हैं वो बैटिंग नहीं करने आएंगे, आप सिर्फ अपनी बैटिंग करोगे, आपको ही ड्राइव वो सिक्स मारना है वहां खड़े होके। तो ये एक इंडिविजुअल के साथ टीम गेम दोनों साथ में चल रहा है, तो आपको यहाँ पे एक तो आपको अपनी टीम को भी लेके चलना है, आपको बॉलर्स को भी लेके चलना है, उसके साथ आपका प्रेशर है कि आपके रन भी नहीं बन रहे, ये एक सबसे दुख वाला कारण भी हो सकता है, और वो कहीं ना हमारी फील्डिंग और हमारे एटीट्यूड में कहीं ना कहीं हमारे फेस पे वो शो भी होता है, और वो हमारे हरमनप्रीत कौर के मेरे को अभी तक वो लगा नहीं, सिर्फ हमारा वो वर्ल्ड कप में लगा था जब हम वो जीते थे, उन्होंने कैच पकड़ा था वहां पे, वो खुशी बाद में नजर आई थी, लेकिन इस ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आज का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है और बताना है कि अपने बैटर्स को कि आप सिर्फ यहाँ पे इस पिच के ऊपर आपको सिर्फ खड़े होना है, पिच पे आपको रन स्कोर करना है, अगर आप बैटिंग पे अगर वहां पे खड़े नहीं होगे तो आप स्कोर कैसे करोगे। और ये बहुत रूट लेवल की बात मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये सभी प्लेयर्स को बहुत अच्छे से पता भी है।
1: फर्स्ट बॉल 20 में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार स्वागत है आपका।
5: नमस्कार सर
1: जी, बताइए।
5: जिला पंजाब जिला फाजिलका से बोल रहा हूँ, कुलदीप जी।
1: जी कुलदीप जी बताएं
5: सर। मैं

0: मेरा सवाल ये है, अभी सिर्फ स्मृति मंदना और वैशाली के ऊपर टोल डिपेंड है अपनी टीम, जो मिडिल ऑर्डर है उसको भी चाहिए ना कुछ करना। पिछले मैच में हमारे 10 ओवर में 101 रन और 10 ओवर में 58 रन।
1: जी बिल्कुल, मध्यक्रम की बात कर रहे हैं और हमने इस पर चर्चा भी की है कि भारतीय फुलमाली को स्टेप अप करना पड़ेगा, प्रतिका रावल की तरफ से रन नहीं आ रहे हैं और खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर भी संघर्ष

0: मनप्रीत कौर भी संघर्ष करती नजर आ रही हैं, लेकिन मनोज थोड़ी चर्चा हांगकांग की भी कर लेनी चाहिए। हांगकांग के लिए जो बैटर नताशा माइल्स हैं और जो बॉलर कैरी चैन हैं, इस साल की बेस्ट परफॉर्मर रही हैं। नताशा ने इस साल खेली 25 पारियों में 39.28 की औसत से 784 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 97.14 का है, इसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100 रन रहा था, जबकि चैन ने 26 मुकाबलों में 4.81 की बेहतरीन इकोनॉमी से 39 विकेट चटकाए हैं और 15 रन देकर 5 विकेट उनका बेहतरीन प्रदर्शन है। और किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी हांगकांग की तरफ से?
1: देखिए, मरियम बेबी हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती हैं, नाम ही उनका इतना आकर्षक है कि हर कोई देखना चाहता है कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगी, गेंदबाजी भी करती हैं। कैरी चैन, अब देखिए आप उनके पास दो दो ऐसे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, जैसे आप पुरुषों के क्रिकेट में चाइना मैन क्रिकेट बोलते हैं, उस तरह से उनके पास कैरी चैन भी है, कैचिंग चैन, और ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको खेलने के लिए आपको पूरी तैयारी करने की जरूरत होती है, और आप जब तक अभ्यस्त नहीं होते, क्योंकि उनकी गेंद कौन सी ऑफ से टिप्पा बढ़कर अचानक अंदर आ जाए, आपको उसका पूर्वानुमान लगाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, समय बहुत कम मिलता है। इनके स्पिनर्स में मैंने एक और चीज़ देखी है कि कईयों के पास गति बहुत ज़्यादा है, आपको बिल्कुल समय नहीं देती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि 2017 में जिस तरह से इन्होंने ईस्ट एशिया कप जीता, और उसके अलावा 2024 में भी इन्होंने, इनकी एक प्लेयर थी मारिको हिल, जिन्होंने सेंचुरी बनाने वाली वो पहली खिलाड़ी साबित हुई थी, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि इस टीम को अगर एक्सपोजर मिलता है, लगातार मौके मिलते हैं, तो ये अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराएंगी आने वाले वर्षों में।
0: 108 मुकाबले खेले हैं हांगकांग ने, 65 में जीत, 40 में हार, 2 टाई और 1 में परिणाम नहीं आया है, और 222 रन पर 1 विकेट इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। मालदीव के साथ 11 फरवरी 2024 को ये प्रदर्शन आया था।
2: वैशाली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मारिना लैम्पलो जो है, जो इनकी ऑलराउंडर है, कहीं ना कहीं आज थोड़ा टफ कंपटीशन देंगी शफाली और स्मृति मानधना को, क्योंकि एशिया कप के ही पिछले मुकाबले में 4 विकेट चटका चुकी हैं, 22 रन इन्होंने मारे थे, स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था, तो आपको लगता है कि आज जो हमारा ओपनिंग पेयर है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये लेके आने वाली है?
3: मारिना के साथ साथ मुझे लगता है कि कैरी चैन भी लेके आएंगे, क्योंकि वो रिस्ट बॉलर हैं और हमारे इंडियन टीम में रिस्ट बॉलर बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, और रिस्ट बॉलर में सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो जब एयर में बॉल जाती है ना, तो जब वो टप्पा खाती है तो बहुत जल्दी अपनी दिशा बदल देती है, और इस तरीके के जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं बैटिंग और जो स्पिनर्स पे वर्क नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला आज का। एंड उसके साथ साथ मरियम की अगर बात करें तो वो सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है मिडिल ऑर्डर पे, जो हम लैक कर रहे हैं इंडियन टीम के, हमारी जो इंडियन टीम है वो लैक कर रही है, वहीं हांगकांग की टीम में मरीना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और उसके साथ हमारे पास एक और रुचि था, बहुत अच्छी स्पिनर है, लेग ऑफ स्पिन ब्रेक करती है, और इन ये सबसे मेन है, कैरी और मरीना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं इंडियन टीम के बैटर के लिए, और उन पे खास और उसके साथ साथ उनको अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना बहुत जरूरी है। आज के सबसे मेन है प्रतिका रावल एंड स्मृति मंदना, जो स्पिनर पे ही लास्ट टाइम आउट हुए थे, और हमारी हरमनप्रीत कौर भी हुई थी।
0: मनोज, इनमें से बहुत सारी ऐसी प्लेयर्स होंगी हांगकांग की जिन्होंने भारतीय स्टार्स खिलाड़ियों को देखकर क्रिकेट की तरफ अपना मन बनाया होगा, चाहे हरमन को देखा होगा, स्मृति को, शेफाली को, इनके सामने खेलना एक तो उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं दबाव में भी आते हैं कि इतने बड़े स्टार्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, दुनिया भर की लीग में खेलते हैं, इस क्या कुछ चल रहा होगा हांगकांग के खिलाड़ियों के मन में?
1: देखिए, जिनके साथ आप तस्वीर खिंचवाने में अपने आप को आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपके लिए वो अद्भुत लम्हे होते हैं, उनके साथ खेलने का मौका मिले तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ना, तो बस कुल मिलाकर यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम में खासकर जो विमेन स्पिनर्स हैं वो हमारी बहुत बड़ी ताकत हैं। आपने ओपनर्स का जिक्र किया, बस मैं कहूँगा कांति गौड़ और नंदिनी शर्मा, उनको मैं देखना चाहूंगा कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बने थे ये दोनों खिलाड़ी, खासकर इंग्लैंड के टूर पर जहां कंडीशंस हमारे फेवरेबल थी, और ये वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए थे जितना इनमें मादा था।
0: जी हाँ, परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन कहते हैं कि संघर्ष से संकल्प कब हारा है, और आज चाहेगी भारतीय टीम की एक बेहतरीन प्रदर्शन करें

0: खास करके एक बढ़िया टोटल बनाएं। वक्त हो चला है फर्स्ट बॉल 20 के समापन का। वैशाली जी आपका, मनोज जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: महिलाओं का एशिया कप 2026 गतिमान है और आज की शाम एक तरफ भारतीय खेमा जो थाईलैंड के विरुद्ध झुका नहीं है और वैसे भी एशिया कप के इतिहास में देखें तो ये खेमा ज्यादा रुका नहीं है और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो अभी पनप रही है जो बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार है, व्याकुल है, तत्पर है। हांगकांग का ये खेमा एक बड़ी चुनौती के लिए तैयार है। मजे की बात ये कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे खेला जाने वाला ये मुकाबला जो दो टीमों के मध्य है उनके बीच में तुलनात्मक तौर पे एक ही दृष्टिकोण रहेगा, वो ये कि दोनों का आमना सामना पिछली बार थाईलैंड के विरुद्ध हुआ था जहां भारतीय खेमे ने थाईलैंड के विरुद्ध एक कमाल की शुरुआत के साथ एक बहुत बड़ी जीत 94 रन की जीत हासिल की थी। तो वहीं हांगकांग का खेमा थाईलैंड से बहुत करीबी मार्जिन से सिर्फ 6 रनों के आंकड़े से शिकस्त का सामना कर कर आया। नमस्कार, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए, इस कड़े मुकाबले के लिए। बता दें आपको कि ये 10वां संस्करण है एशिया कप का और महिलाओं के इस एशिया कप में भारतीय टीम ने 7 दफे चैंपियन बनने का दारमदार अपने नाम किया। तो वहीं एक दफे श्रीलंका, एक दफे बांग्लादेश ने ये गर्वांगित करने वाला अवसर जिया भी है और उस लम्हे को, उस पल को अपने दृष्टि से देखा भी है। आज इस मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम सबसे पहले आपका तारुक कराते हैं हमारी टीम के साथ। हमारे साथ शमा सने रहेगी जो स्कोरर की भूमिका में है, हमारे स्टैटिस्टिशियन के तौर पे मनोज कुमार। इस मुकाबले का आंखों देखा हाल हिंदी में आपको सुनाने के लिए मैं आयुष शर्मा, और अंग्रेजी में कहानी को बयां करने के लिए मेरे मित्र, मेरे गुरु भाई, और आज अपने पदार्पण के लिए तैयार, स्वागत रोहित गांगुली।
2: Thank you so much, Ayush. And of course, it's a great match that's going to happen definitely for India. It's going to be a challenge that will be worth noting because obviously the talk of the town is that despite a convincing victory against Thailand, what happened in the middle order? And of course, at the other end for Hong Kong as well, it's a tough challenge. They came close against Thailand, but at the same time, they'll be hoping to finally cross the line and create a massive upset. But then keeping aside the story of ifs and buts, we'll move straight to the game.
1: चलिए तो आपको बता दें कि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और उसका कारण ये कि हांगकांग के खेमे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इकरा सहार गेंदबाजी की शुरुआत करेगी। 82 मुकाबले कुल मिला के खेले हैं, 53 विकेट उनके नाम है। सर्वाधिक यदि आप इनका सुनना चाहें तो हम आपको बता दें कि 4 विकेट चटके थे महज 4 रनों को खर्च करते हुए। इससे पता चलता है कि कितनी बेहतरीन ये गेंदबाज है। लेकिन उम्मीदों का पहाड़ आज भारतीय खेमे पे होगा। पिछले मुकाबले की जो बड़ी जीत प्राप्त की थी थाईलैंड के विरुद्ध, क्या उसी तरीके का सफर यहाँ जारी होगा? एक और चीज़ जो देखने लायक है हमारे लिए, सुनने लायक हमारे दर्शकों के लिए, कि क्या भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर आज कार्य करेगा। बहरहाल शुरुआत भारतीय ओपनर्स के साथ रहने वाली है। भारत की एक तरफ स्मृति, जिनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते रहते हैं, शेफाली वर्मा का पिछले मुकाबले में जो अर्शद के पारी को खेलना था उसने सभी को प्रभावित किया था। उसी बीच इकरा पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। लो फुल टॉस के साथ गेंदबाजी की शुरुआत, बहुत ज़्यादा गति नहीं थी, पैड्स की तरफ गेंद थी जिसे सीधे बल्ले से खेल दिया गया था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे मुकाबला खेला जा रहा है और स्मृति मंधाना ने पहली गेंद को बहुत सम्मान दिया है और अच्छी सूझबूझ वाली बल्लेबाजी आज करनी पड़ेगी। जो ट्रैक है, जो पिच है, उसमें समांतर घास हमें यहाँ पर नज़र आती है। भारतीय टीम के स्पिनर्स की वैसे ही हमेशा तारीफ रहती है, चर्चा रहती है, लेकिन यहाँ इस पिच को देख के ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाजों के लिए मदद है। दूसरी गेंद ड्राइव कर दिया गया है कवर्स की तरफ, दो फील्डर्स को भेजती हुई गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। क्या फील्डर जीतेंगे? बिल्कुल जीते हैं। आखिरी क्षणों पे जब कम से कम 2 या 3 फीट का फासला बचा था गेंद और बाउंड्री के बीच, एक अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया और कवर्स की दिशा में एक अच्छी फील्डिंग के चलते यहाँ 2 रन बचाए गए हैं। रोहित, शुरुआत में आपको चाहिए ऐसे फील्डिंग एफर्ट्स, और बीबी जो पिछले मुकाबले में कप्तानी कर रही थी उन्होंने ये फील्डिंग एफर्ट दिखाए हैं।
2: एब्सोल्युटली, आई थिंक मरियम बीबी कम्स इन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाई यू वुड एक्सपेक्ट सच स्पेक्टेकल्स फ्रॉम हर।
1: पहले ओवर की तीसरी गेंद, स्मृति ने 2 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। बाएं हाथ की बल्लेबाज है, फील्डिंग आपको बता दें एक खिलाड़ी पॉइंट की दिशा में है, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन पे मौजूद। अगली गेंद सीधी जड़ों में, एक यॉर्कर गेंद

0: to that solitary run. Kari Chan will be pretty happy keeping the ball. Of course, the idea is clear so far. Most of the ball that she's done, she's taken it away from Shruti Mandana. The idea is to try and make her stretch and play the ball, make Shruti lose her balance, because once you start bowling close enough to Shruti's batting range of motion, she's going to come after you. She's got an excellent reach, she's got an excellent range, and that is why it's very important that you try and take the ball away from her. Round the wicket, however, for Shafali Verma. This time bowls it shorter. Shafali does cut it away, however, finds the point fielder for another dot ball. Kari Chan will be pretty happy after conceding a boundary in the very first ball of the over, the first legal ball of the over, basically. I think after that, she's just gone for 7 runs, and that includes a couple of wides as well. Last ball of the over, dances down the track, goes inside out, over extra cover, and that is exactly how Shafali Verma plays. She gets a first boundary. And with this, we come to the end of the second over. 16 for none right now, India. Looks like they, both of them, Shafali and Shruti, are going to command, or at least have a commanding start to this innings.
1: वो कहते हैं कि पहाड़ के बीच जाके यदि आप ध्वनि करेंगे तो आपको उसकी प्रतिध्वनि अवश्य सुनाई देगी, क्योंकि पहाड़ किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करते. और वैसा ही खेल शेफाली वर्मा का है. पहली गेंद सिर्फ एक डॉट ली, सिंगल लिया और अपने आप को थोड़ा सा हौसला दिया. उसके बाद जैसे ही सामने स्पिनर आई, इनसाइड आउट का एक बेहतरीन शॉट, अपने तर्कश से निकाला एक ऐसा तीर जिसने जाहिर तौर पर गेंदबाजों के दिलों में और साथ ही साथ पूरे हांगकांग के खेमे में घाव किए होंगे गंभीर. भारत एक अच्छी शुरुआत के साथ आ चुका है. स्मृति ने 9 गेंदों में 9 रन बनाए हैं. शेफाली ने 3 गेंदों में 5 रन बना लिए हैं. कृतिका अगली आने वाली बल्लेबाज है. उसके बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत बल्लेबाजी करने के लिए आएंगी. इकरा, जिन्होंने पहला ओवर किया था, वो इस पारी का 3rd ओवर लेकर आई है. विकेटकीपर को थोड़ा आगे बुलाया गया है. एक फुल टॉस गेंद ऑफ साइड के बाहर थी, जिसे कट करने की कोशिश में गेंद को पॉइंट की दिशा में एक टप्पे के साथ खेल दिया. कोई रन आएगा नहीं तो दूसरे छोर पे शेफाली वर्मा मुस्कुराहट के साथ नजर आई थी. पिछली गेंद जब शेफाली ने खेली थी, पिछला ओवर गतिमान था. पहचान लिया कि गेंद में गति इतनी नहीं है. कदमों का इस्तेमाल किया, इनसाइड आउट, कवर्स की दिशा के ऊपर से कुछ टप्पों के बाद गेंद बाउंड्री रोप्स के पार चली गई. यकीन मानिए, एक ऐसी खिलाड़ी जो हमेशा आपके लिए रन बनाए, तो उससे ज़्यादा हौसला टीम को नहीं चाहिए. अराउंड द विकेट अगली गेंद, एक और फुल टॉस गेंद. ना जाने क्या हुआ है, लेकिन गेंद शायद टप्पा खाने का नाम नहीं ले रही. दूसरी बात यह है कि गति भी इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रही है इकरा की गेंदबाजी में. 30 रन अगर और बनाती है शेफाली वर्मा तो रिकॉर्ड उनके नाम होंगे. तीसरी बल्लेबाज बनेगी 3000 से ऊपर रन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. ओवर की तीसरी गेंद, 3rd ओवर गतिमान है. तीसरी गेंद स्ट्राइक पे आ चुकी है शेफाली वर्मा. 3 गेंदों में 5 रन उनके बल्ले से आए. भारत का स्कोर 17 बिना नुकसान. और छोर में परिवर्तन करते हुए अब अराउंड द विकेट आई गेंद. टप्पा तो खाई लेकिन उछलने का नाम नहीं था. धरातल की बिल्कुल परत पे छूती हुई सी ऐसा लगा कि गेंद जा रही हो. विकेट कीपर के दस्तानों पे गेंद जब गई, उससे पहले भी 2 टप्पे खा चुकी थी. इससे साफ पता चल रहा है कि पिच से तेज गेंदबाजों को अभी तो वो मदद नहीं मिल रही जिसकी उम्मीद और अपेक्षा थी. हल्की सी हरकत थी विद द सीम, जैसे कि कहा जाता है. गेंद थोड़ी सी घूमी और बहुत ही नीचे, विकेट कीपर ने उसे जाके अपने दस्तानों में पकड़ा. ओवर की 4th गेंद, हांगकांग की टीम का ये फैसला कि वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी कर रहे हैं. कितना सही कितना गलत, ये संभवतः अभी पावर प्ले की परिस्थिति में बताना थोड़ा सा मुश्किल. एक मिसफील्ड हुई है और उस वजह से सर्कल के भीतर ऑफ साइड में एक सिंगल भारतीय खेमे को दोबारा मिल गया है. स्मृति स्ट्राइक पे आ चुकी हैं. 10 गेंदों में 10 रन माफ कीजिए, उन्होंने बनाए हैं 11 गेंदों का सामना करते हुए. भारत 18 पे पहुंच चुका है और इस ओवर में यानी कि 3rd ओवर में 2 और गेंदें शेष. शुरुआत इकरा ने की थी डॉट के साथ, फिर 2 सिंगल आए थे, उसके बीच एक डॉट भी थी. और भारत को जो 2 रनों का इजाफा हुआ है इस ओवर में, उसमें क्या और तब्दीली करनी पड़ेगी. पैड्स पे की थी गेंद, उसे कलाइयों का इस्तेमाल करके 30 यार्ड के घेरे के भीतर ही रखा है. कोई रन नहीं मिलेगा. ये डॉट इस प्रकार का दबाव बनाती है जो संभवतः कोई भी बल्लेबाज चाहता नहीं होगा. अभी शुरुआती लम्हे हैं, पावर प्ले गतिमान है, और ऐसी परिस्थिति में जितनी ज़्यादा डॉट होगी भारतीय टीम के लिए, परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं. संध्या काल का समय, फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी है दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की. 3rd ओवर की आखिरी गेंद, अराउंड द विकेट, एक और फुल टॉस, ड्राइव कर दिया गया है. कवर्स मौजूद है, डीप कवर पे एक खिलाड़ी जो जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहां से थोड़े से लेट नजर आए थे. बहरहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अच्छी चीज यही है कि अब तक भारत ने कोई भी विकेट नहीं गंवाया है.
0: I think India is well aware of the fact that Shruti Mandhana and Shafali Verma, both of them will have to play a long, long innings, because these two, they can very well be the spine of the Indian batting unit. We are aware of the fact that if Shruti Mandhana keeps on going, she's got what it takes to build this Indian innings. And at the other end, Shafali Verma, she needs a little bit of time, a little bit of mileage to just get going. Once she gets going, once she gets that backlift into play, we've all seen the kind of explosive batting that Shafali Verma is capable of. Right now in the points table, India right at the top, one match, one win. The net run rate of 4.70, that's like a massive leap. Of course, Pakistan had a bit of a scare going on into that game, but they'd eventually managed to win this game as well. Marina Lamplaugh, she's the one who's going to come back into the coming into the attack, in fact. 45 matches, 16 wickets. Best of 4 for 11, economy of 5.47. Can be one of those bowlers. Will be going round the wicket to Shruti Mandhana, and that completely beat Shruti Mandhana. Wonderfully collected by Dasmani behind the stumps. There was a fairly straighter delivery. Not much pace on the ball, into the surface basically. And Shruti Mandhana once again beaten by the lack of bounce on that ball. She was expecting the ball to go slightly higher, but it didn't really go in. And her best figures, Marina Lamplaugh, she registered that in the last game. 4 for 11 against Thailand. And that's indeed why Hong Kong, they played an excellent game. And Hong Kong in their recent times, it's not that they have got too many victories going their way. It looks like there's a bit of a challenge right now. And the two umpires will have a little chat between themselves. And whatsoever the problem was has been sorted. Definitely for Hong Kong, they have beaten Tanzania in recent times. Last couple of matches that they won, it came against Tanzania. And of course, Natasha Miles was absolutely instrumental in both those games. And that is why coming back to the side against a side like India, that's going to be a massive boost for Hong Kong as well, especially considering their batting has been in ruins. Shruti Mandhana goes aerial over mid-wicket, and that will run away to the boundary. Once again, getting that lock sweep into play, gets that aerial factor, and that's the 112th boundary of the tournament. With the power play going on, the mid-wicket was inside the circle, and the ball was a lot fuller. Shruti goes down on her knee, and wonderfully just clears out that front foot of hers, and hammers it straight through that mid-wicket boundary for another four run. And now she's just cruising at this point in time. 624s in a T20I career. This time slightly shorter. Shruti places it. She had a short third in play, and definitely she comes into the act and keeps it down to a dot ball. Marina, once again, she's not going to full. She learned a lesson the last time around, tossed it up, and she knows that Shruti Mandhana, the moment you toss the ball up, you are inviting trouble for yourself, because Shruti, the way, again, as we said before, that range that she has, that's kind of massive. She's a tall player as well this time. Pretty late into the shot, but once again, it was the timing that looked good, but the outfield looks really slow, and the short third fielder will eventually keep it down. But a couple of runs for Shruti Mandhana. Now, she won't mind how the runs are coming in. Of course, she would have wanted a bit of better connection on the ball. But then, given the fact that the surface isn't really helping, isn't really conducive for the batters, she'll take the shots like the way it's coming. And at this point in time, India, they have moved on to 25 for none. I think this is possibly because of that cautionary tale that India had in the last game. They want to build something. They want their main batters to play as long as possible. And that is why they're well aware of the fact that if these two can hang in there, they're capable of making up for the lost time. That's another wonderful lofted drive, however long off, is in play. And will keep it down to just a single. Once again, tossed up by Marina Lamplaugh and Shruti Mandhana. She was looking for the power, but possibly once again, she was being wary of trying to get that aerial factor into play. Eventually did cross the 25-yard sphere that you're looking forward to, and then eventually played it all the way to that long off field. And now with Shafali coming in, there's a change in field. Short third will be back in the act. Midon comes inside the circle, and long off will be stationed. And that is because Shafali Verma, she's very strong in the V. She can go down the ground, she can go through the covers. These are her top spots, and she loves to play in those areas. That range which she tries and use, especially with the good use of bottom hand, that's kind of dangerous. However, this time sweeps it away and goes straight to mid-wicket. Won't get a run for that. Four overs done. India are 26 for none. And with this kind of start, you would expect these two to try and build close to maybe around 150 or 160.
1: ताबड़तोड बल्लेबाजी करनी पड़ेगी भारतीय खिलाड़ियों को निसंकोच, और जिस तरीके की शुरुआत भारत को थाईलैंड के विरुद्ध पहले मुकाबले में मिली थी, जिस तरीके की ओपनिंग साझेदारी हमें नजर आनी चाहिए थी, वैसी आज के इस मुकाबले में आ चुकी है। सवाल सिर्फ ये उठता है कि क्या मध्य क्रम तक जाते जाते आप एक ऐसा टारगेट बना सकते हैं, एक ऐसे आंकड़े पे भारतीय खेमे को पहुंचा सकते हैं जहां से फिर दिक्कतें जो है वो अपने प्रतिद्वंद्वी हांगकांग के लिए आप खड़ी कर देंगे। थाईलैंड हांगकांग के बीच में जो मुकाबला खेला गया था, थाईलैंड ने महज 6 रनों से उस मुकाबले को अपनी गिरफ्त में किया। फिर तीसरे मुकाबले के तौर पर भारत थाईलैंड के सामने आई थी, भारत ने 94 रन के एक बहुत बड़े आंकड़े के साथ उस मुकाबले को जीता था। पाकिस्तान और थाईलैंड के बीच की टकरार पाकिस्तान 35 रनों से जीता था और आज भारत हांगकांग आमने सामने है। ये मुकाबला गतिमान है, याद रखिए 5 सितंबर को एक और मुलाकात होगी जहां भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला हम यहीं आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो से आपके लिए लेके आएंगे। उसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, मरियम बीबी नई गेंदबाज के तौर पर आई है, 109 मुकाबला 76 विकेट अपने नाम है। सर्वश्रेष्ठ जो है वो 8 रन देके 4 विकेट निकालना है और इकोनॉमिकल गेंदबाज है, दूसरी ऐसी गेंदबाज आज की शाम की जो तेज गति से गेंदबाजी करती है। गेंदबाजी की शुरुआत कर रही है अराउंड द विकेट, पहली गेंद पे स्मृति मंदाना ने ड्राइव कर दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं और स्वागत किया है मरियम का एक चौके के साथ। चेहरे पे स्मृति की मुस्कुराहट है। अमूमन कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, क्या स्मृति की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख के शैफाली वर्मा का बल्ला भी आग उछलेगा। अपेशली खेला गया था एक हाफ वॉली जिसे क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है, ड्राइव करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, टाइमिंग इतनी बेहतरीन कि इसके अतिरिक्त कुछ और चाहिए ही नहीं था। पहली गेंद पे किसी भी गेंदबाज को यदि चौका पड़ जाए तो बल्लेबाज का हौसला न सिर्फ चरम पे होता है बल्कि मरियम गेंदबाज के तौर पे किस तरीके की वापसी करेंगी ये भी देखना पड़ेगा। अगली गेंद ओवर की ये दूसरी गेंद है, अभी भी अराउंड द विकेट गेंदबाजी की गई है, फुलिश डिलीवरी थी जिसको सीधे बल्ले से खेला स्मृति ने, कोई रन उसे मिलेगा नहीं और क्रीज से ज्यादा दूर गेंद जाके समाप्त नहीं हुई थी। एक और चीज जो यहाँ समझी जा रही है वो ये कि एक छोर से तेज गति के गेंदबाज को गेंदबाजी कराई जा रही है तो दूसरे छोर से निरंतर तौर पे हांगकांग का खेमा धीमे गति के गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर भारत के पास दाएं और बाएं हाथ का एक कॉम्बिनेशन है, एक संतुलन है, तो दूसरी तरफ हांगकांग की टीम बिल्कुल नहीं चाहती, ये कतई नहीं चाहती कि भारतीय बल्लेबाज गति से रूबरू हो जाए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, एक और फुल टॉस जिसको अपने रीच को थोड़ा बढ़ाया स्मृति ने, फिर बल्ले का एक संपर्क जरूर हुआ लेकिन पॉइंट की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद थे, एक अच्छा क्षेत्र रक्षण, रन कोई मिलेगा नहीं। दो लगातार डॉट गेंदे आ चुकी है, भारत का स्कोर 30 रन पहुंच चुका है, 5वां ओवर गतिमान है, स्मृति के बल्ले से 22 रन आ चुके हैं, कुल मिला के 21 गेंदों का सामना उन्होंने किया है और उसी के चलते 6.5 से ऊपर भारत का रन रेट फिलहाल गतिमान। ओवर की चौथी गेंद के साथ आ रही है, अभी भी अराउंड विकेट है, एक फुल लेंथ डिलीवरी जिसमें स्मृति ने पहले ही कदमों का इस्तेमाल कर लिया था और पॉइंट की दिशा में सीयू ने गेंद को फील्ड किया, रन कोई आएगा नहीं। लगातार 3 डॉट गेंदे इस वर्ष 2026 में यदि हम देखें तो 65 कुल मिला के ऐसे मौके आए हैं जब मंदाना ने उस स्कोर को पार किया, गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है, यानी कि चौके लगाए हैं 65। ये सत्र काफी अच्छा रहा है उनके लिए 2026 का। ओवर की 5वीं गेंद, विकेट कीपर थोड़ी सी आगे आई है, स्लॉग स्वीप कर दिया, फील्डर की मौजूदगी यहां से कहीं नजर नहीं आ रही, कुछ टप्पों के बाद ही सही लेकिन गेंद मिड विकेट की दिशा को पार करेगी, एक और चौका आएगा और स्मृति के बल्ले से अब रनों की संख्या को बढ़ा के 26 कर लीजिएगा, भारत का स्कोर 34 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर में सिर्फ एक ही गेंद बची है, इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ की थी लेकिन वो कवर ड्राइव की थी, उसे ऑफ साइड में खेला था, यहां ऑन साइड में जो मौका मिला उसे पूरी तरीके से भुनाते हुए एक और चौके की प्राप्ति कर ली है। पूरी तरीके से हताश हो चुकी है ऐसा लग रहा है गेंदबाज मरियम बीबी। स्मृति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि T20 में देखें तो 173 मुकाबले खेले हैं और ऐसा लग रहा है कि सफर जल्दी 200 से ऊपर का हो जाएगा। उसी बीच 5वें ओवर की आखिरी गेंद धीमी गति की गेंद थी, फिर स्लॉग हिट लगाई है, फील्डर के लिए मशक्कत होगी, लॉन्ग ऑन पहुंच नहीं पाएगी, गेंद पहुंच जाएगी बाउंड्री के पार, एक कमाल का ओवर जिसमें 3 बाउंड्री आई है, 3 चौके लगे हैं, भारत ने 12 रन का इजाफा किया है। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 38 बिना नुकसान भारत का स्कोर।
0: Exactly the acceleration that India was looking forward to and right Smriti Mandhana has given them that and you're talking about this that in the last over that by seeing Smriti Mandhana will Shafali Verma eventually decide that this is her time as well to try and open up, but again Smriti Mandhana, this is the kind of batting you can expect from her and that is why it's all right if she's taking a bit of time because the kind of danger that Smriti Mandhana can try and pose the moment she gets into rhythm that'll look very very deadly. It's the last over of the power play and Marina Lamplough will be coming back, went for 7 runs in the first over and India slowly and steadily now growing in stature. That was the last boundary once again just kind of getting for the half volley and Smriti Mandhana the way she's striking the ball once again gets down on her knee, opens that front foot and gets that lovely slog sweep into play. The Indian fans are absolutely exhilarated. Marina Lamplough, she'll be going over the wicket. Rishafali Verma, the last six balls with the field restrictions on. This time bowls it shorter. And Shafali Verma happy enough to push it towards that mid-wicket area. Eventually the fielder will come around and keep it down to just that solitary run. Shafali Verma, in fact, they have gone for two runs. That's very good running between the wickets as well. Now that is good thinking by Shafali Verma. She's understood one thing, that if you're not getting the boundaries, that's all right. The way Shruti is striking the ball, maybe if you can just turn the singles into doubles and doubles into triples, that is where you start applying that additional bit of pressure on the fielders as well. A little change in the field now for Shafali Verma. They have got the deep mid wicket in play. And it goes shorter. Shafali Verma goes over short fine and finds another boundary. That ball will race away to the fence. It's a slow outfield. But the way Shafali is timing the ball as well. In fact, not just Shafali Verma, both Shruti and Shafali are timing. It's looking great. That shorter ball. And that is exactly why deep mid wicket was dropped back. But then Shafali, figuring that out quickly, gets deep in the crease and eventually goes for the shot over fine leg. That is excellent maximization of resources. That is excellent maximization of the gaps that you have in play. India now moving on to 44 for none. This partnership is looking in great control. Two of the best batters and two of the batters in control and command. This time loops up and Shafali Verma gets beaten. There was a bit of an inside edge. Goes straight to that short fine leg fielder. Another dot ball out there. Marina Lamplough. She's been slightly expensive once again. Of course, it did light up Shafali Verma's eyes. She wanted to get the bat into play. She's got a big backlift, but then eventually ended up yorking herself. Back for the fourth ball of the over. 23 runs and she'll become the third Indian woman. Shafali goes aerial. And looks like she sent it into the orbit. This is exquisite cricket. Sends it in over the cow corner. And sends it screaming for the first maximum of the evening. She moves on to 18 now of just 10 balls. And with that, India bring up their 50. This is incredible cricket from the two openers. Once again, a lot fuller. Exactly where Shafali loves to play those. Very good rhythm as well. Good bit of bat swing that eventually, or the kind of momentum that she was looking forward to. Last, in fact, two more balls remaining. Cut away by Shafali. There'll be another boundary. In the last over, it was Shruti. Now it's Shafali Verma. Looks like the energy is very, very contagious. And Shafali is absolutely thriving off it. This time slightly shorter from Marina. And Shafali loves to just got herself into position. Kind of took her front foot away. Got into position and knew that the point fielder was inside the circle. So all she had to do was just place the ball and time it to perfection. She timed it to perfection and the ball hurtled away to fence now. Shafali Verma 13 away from 3,000 runs. Slightly shorter. Goes aerial again. Over deep mid-wicket. And despite the deep mid-wicket fielder being there, she won't stop it. That's another maximum. And 22 runs off this over from Marina Lamplough. And India completes their power play with 60 for none. What a great start for the women in blue.
1: Kamal ki ballebazi rahi hai. Ek taraf Smriti Mandhana, dusri taraf Shefali Verma. Aur aapko bata dein ki Shefali Verma aaj ke is mukable ki shuruaat se pehle एक निजी लक्ष्य लेकर आई थी. वो ये था कि 30 रन यदि वो बना लेती हैं तो भारत के लिहाज से वो तीसरी ऐसी खिलाड़ी होगी जिनके नाम 3000 से ज्यादा रन हो जाएंगे T20 के इतिहास में. और ये आंकड़ा हमें बताया हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार ने. उससे पहले यदि बात की जाए तो स्मृति मंदाना कुल मिला के 4700 से ऊपर रन उनके बल्ले से हैं. हरमनप्रीत कौर ने 4000 से ऊपर रन बनाए हैं. मौका तो है आज पूरी तरीके से शैफाली वर्मा के पास कि वो ये आंकड़ा अपने नाम कर ले. पापले की कहानी कुछ इस प्रकार की रही है. शुरुआती 6 ओवर्स में भारत 60 रन बनाने में कामयाब रहा है. एलिसन स्यू नई गेंदबाज अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलने के लिए तैयार है और गेंदबाजी कर रही है 7वें ओवर की. ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आई लेकिन गई है 4 रन के लिए. पहली गेंद पे स्वागत किया है स्मृति मंदाना ने उस अंदाज में जब कोई भी पदार्पण करने वाला खिलाड़ी एक 100वें मुकाबले तक पहुंच जाए तो चीजों को इस तरीके से घटते हुए देखना पसंद नहीं करेगा. 100 मुकाबले अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक साधारण सी गेंद थी. डाउन द लेग साइड जा रही थी. सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया. दिशा दिखा के दशा पूरी तरीके से गेंद की बदल दी. और अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ही छोरों पे जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाज कर रहे हैं. ओपनर्स ने जिस स्तर की शुरुआत दे दी है ज्यादा आश्चर्यचकित मत होइएगा अगर भारत का स्कोर 150 से पार चला जाता है तो. स्मृति मंदाना 25 गेंदों का सामना किया. 34 रन इनके बल्ले से आ चुके हैं. यकीन मानिए शुरुआती 12 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए थे लेकिन जिस तीव्रता के साथ अपनी बल्लेबाजी की पारी को आगे बढ़ाया उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम. 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से पावर प्ले में भारत ने रन बनाए थे। कुल मिला के 15 डॉट गेंदे होने के बावजूद भी भारत 60 तक पहुंच गया था, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के भी थे। ये आंकड़े शमा सने हमारी स्कोरर हैं, उन्होंने हमारे से साझा किए हैं। और हम आपको बताए देते हैं कि पावर प्ले की समाप्ति तो हो चुकी है, फील्डर्स बाहर हैं, लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव भारतीय बल्लेबाजों पर नजर नहीं आ रहा। ओवर की तीसरी गेंद जिसे खेल दिया गया था, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर

0: मौजूद सिर्फ एक सिंगल। दाएं बाएं हाथ की ये जो बल्लेबाजी है, ऐसा लग रहा है कि हांगकांग के खेमे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कभी आप ऑन साइड में फील्ड में बदलाव करते हैं, जैसे ही शेफाली बल्लेबाजी करने के लिए आती है फिर ऑफ साइड की फील्ड को आपको अंदर लाना पड़ता है, क्योंकि स्मृति मंधाना जब बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती है, शेफाली वर्मा दाएं हाथ से बल्लेबाजी करती है और गजब की स्ट्राइक रेट रही है। 12 गेंदों में 28 रन शेफाली के बल्ले से आ चुके हैं। एलिसन के इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई थी, दूसरी गेंद डॉट थी, तीसरी गेंद पे सिंगल आया। हालिया रन रेट भारत की बराबर 10.00 की चल रही है और भारत के विकेट के लिहाज से अगर देखें तो आर्यभट्ट का तोहफा मिला है 0/0। उसके अतिरिक्त हांगकांग के पास कोई और विकल्प नहीं। शेफाली वर्मा 7 रन दूर, तीसरी भारतीय बल्लेबाज बन जाएगी अगर 3000 रन पूरे करती है तो। चौथी गेंदबारी किनारा लगते लगते रहा था, आश्चर्यचकित बहुत हैरानी से उस गेंद को लिया था शेफाली वर्मा ने, क्योंकि ये एकमात्र गेंद इस पारी में नजर आई जो अच्छे खासे उछाल के साथ विकेटकीपर के दस्तानों में गई थी। पापले की कहानी बहुत रोचक रही, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया गया था एक तरफ स्मृति मंधाना की तरफ से तो दूसरी तरफ क्रीज को बहुत अच्छी तरीके से भापा। क्रीज के अंदर जितना रह के खेला जा सकता था वो खेलने की कोशिश शेफाली की थी। ओवर की पांचवी गेंद, हल्की सी हरकत, बाहरी किनारा एक बार फिर बचा है। कोचेस हमेशा आपको बताते हैं कि चौथे या पांचवें स्टंप के ऊपर गेंदबाजी रखिए, हमेशा आपका संतुलन बढ़िया रहेगा। दो लगातार डॉट गेंदे, क्या शेफाली को किसी भी प्रकार का कोई दबाव होगा? जिस तरीके का इनका तजुर्बा रहा है, जैसे पिछले मुकाबले की पारी और अभी का सिलसिला रहा है, ये कहना पूरी तरीके से गलत हो सकता है। सातवें ओवर की आखिरी गेंद, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट रखा, कदमों का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव किया है, कवर सर्कल के भीतर मौजूद भी है और डॉट। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, ओवर समाप्त हो जाएगा। 7 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर 65 रन बिना किसी नुकसान के, और 7 ओवर्स के बाद भी अगर भारत का स्कोर इतना कमाल का है, विकेट कोई गया नहीं है, रन रेट 125 के आसपास की है, तो रोहित ये कहना ज़्यादा गलत नहीं होगा कि आज चुनौती बहुत बड़ी है, हांगकांग को शायद 170 भी चेस करने पड़ जाएं।
1: The captain Natasha Myers, she was making it very, very clear that they are ready to chase 140 or 150 looking at the surface. But the kind of start that now India has, now of course, now people might point out that they've had a middle order collapse in the last game. But make no mistake, it's a one-off. It's cricket. It can happen. But then India has got immense depth. They've got Richa Ghosh, they've got Pratika Rawal, they've got Harmanpreet Kaur to come, they've got Bharti Fulmali as well. So a lot of batting to come in. And if all of them start striking, they might be targeting something close to 160 or 170. Ruchita Venkatesh comes into the attack, 75 matches, 37 wickets, best of 3/8, economy of 5.01. And you would expect someone like Ruchita to try and bowl it as slowly as possible, because the moment you start giving these two a bit of pace, they'll start expressing themselves. And that is why you want to keep it slow, you want to keep it low. Ruchita, replacing Marina Lumpthong, will be going round the wicket to Shriti Mandana, bowls it fuller. And this is where Shriti thrives, plays it wonderfully through long off for another boundary. What a welcome there for Ruchita. It felt like that Shriti's almost caressed that one. And she's cruising right now at jet speed. A lot fuller. That was that moon ball coming into play. And Shriti, despite the mid-off being inside the circle, she had no hesitation of playing it adjacent to her. That is an incredible shot. That's the confidence that Shriti Mandana has. 39 of 28 and she is looking in great, great nick, exactly like people would expect Mandana to go. Comes down the track, takes it on the full, and once again it's through the long off area that she'll find another boundary. Back to back fours, and Ruchita Venkatesh is being clobbered left, right and centre. Couldn't land the ball. Shriti once again coming down the track, was in total control and ensured the fact that she's sending it all the way to the boundary line. No problems whatsoever. It's all about reaching to the pitch of the ball. And you can see the frown now intensifying on the face of Natasha Myers. And that's because these two, they have turned this game on its head. They expected a bit of a good start. And they did get a controlled start, slightly shorter. And Mandana plays it straight to the point fielder. Won't get anything for that. Ruchita Venkatesh will be really happy to get a dot ball after you get struck for two back-to-back fours. Of course, your confidence, it kind of nosedives into a spiral, which you will not like. And especially when you're against one of the top batters in the international women's circuit. Shriti drives it and will go all the way to the deep cover fielder. And Shriti Mandana will, by that time, get a single. Now she moves on to 44 of 31. Shafali Verma batting on 28 of 15. 7 more runs and she'll become the fastest Indian to get 3,000 WT2I runs. This is 112th fifth innings. And she's been absolutely incredible. The kind of strike rate with which Verma has batted, that's been absolutely menacing in women's T20I. She's got her eyes set on her prey. This time, bowls it a lot fuller, and Shafali Verma, making no mistake, just pushes it away to the short mid-wicket fielder. Another ball to go. India now 74 for none from 7.5. One more ball in this over, run rate of 9.45. India is absolutely enjoying themselves, and that's because the Sisters of Destruction are in great rhythm. Dances down the track, takes it on the full, doesn't really get the connection that she was hoping for. And Shafali Verma's innings will have to come to an end. And this is a massive one. The fact that Shafali, trying to dance down the track, wanted to take it as a half volley. The full toss completely derailed her calculations. And unable to give that full extension of the arms, eventually ended up skying the ball. The fielder at long on, coming straight forward and taking a very good catch, and eventually had great control in the follow-through as well. It is Marina Lamplow with the take. And Ruchita Venkatesh, despite being smacked with two fours, the first two balls came back very strongly. And with this, we come to the end of the 8th over. Shafali Verma goes for 28 of 17. India 74 for 1 at the end of 8.
0: बहुत ज्यादा विशेष नहीं था उस गेंद में, एक फुल टॉस गेंद, और विल्ला ही हमें कोई ऐसा नजारा नजर आता हो जब बाउंड्री रोप्स के पास शेफाली वर्मा इस प्रकार की गेंदों को ना पहुंचा पाए। एक कमाल का कैच मरीना ने किया था जो कि लॉन्ग ऑन की दिशा में मौजूद थी। कम से कम 10 से 15 कदम उन्हें दौड़ लगानी पड़ी, फिर अपने बाईं तरफ छलांग लगाते हुए उन्होंने ना सिर्फ कैच को पकड़ा बल्कि ये सुनिश्चित किया कि जब उनका शरीर जमीन से जाके टकरा रहा हो तब भी गेंद उनकी गिरफ्त में रहे। 8 ओवर्स की समाप्ति, भारत का स्कोर 74 रन एक विकेट के नुकसान पे। स्मृति मंदाना 44 रन पे बल्लेबाजी कर रही है, 31 गेंदों का सामना किया है, उनके बल्ले से अब तक 8 चौके आ चुके हैं, छक्का अब तक उन्होंने कोई लगाया नहीं, कोई 6 रन उनके बल्ले से आए नहीं है, और 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट जो किसी भी बल्लेबाज के लिए लाजवाब माना जाता है। ग्रुप ए का ये मुकाबला है, भारत हांगकॉन्ग आमने सामने, और अभी तो कहानी बहुत बची है। प्रतिकर रावल अपना दूसरा मुकाबला पदार्पण किया था थाईलैंड के विरुद्ध, 22 उस मुकाबले में बनाए थे, हालांकि थोड़ी सी धीमी शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन जब कोई खिलाड़ी अपना पहला मुकाबला खेल रहा हो तो अमूमन उम्मीद करता है कि बस बल्ले से रन आते रहें। जिस तरीके से विकेट गिरा था शेफाली वर्मा का, निश्चित सी बात है कि अपने आप से थोड़ी सी नाखुश होगी। एक फुल टॉस गेंद को सीधे फील्डर के हाथ में थमा देना, अपने विकेट को इतने सस्ते में दे देना, ये बहुत समझदारी का विषय नहीं है। लेकिन T20 फॉर्मेट की कहानी कुछ इस तरीके की रहती है, आपको मजबूरन कुछ बड़े शॉट खेलने पड़ते हैं, और अगर आपकी टीम का लय बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको इस प्रकार की शॉट्स की उम्मीद और आकांक्षा हमेशा रखनी पड़ेगी, अपने साथी खिलाड़ियों के साथ भी और बतौर ओपनर भी। आप चाहते हैं कि एक पुख्ता शुरुआत आपके खेमे को मिले। 9 ओवर की पहली गेंद को लेकर आ रही है इकरा, जो कि एक दाएं हाथ की गेंदबाज है, अराउंड द विकेट पहली गेंद की थी, उसे सिंगल के लिए खेल दिया है स्मृति ने, और अब प्रतिका को स्ट्राइक मिलेगी जो आज की शाम इस मुकाबले में पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहेंगी। उनके लिए फील्डिंग में परिवर्तन किया गया, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे है। अभी तक देखा जाए तो 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, इकरा ने 2 ओवर्स कर लिए हैं जिसमें 9 रन उन्होंने खर्च किए थे, 3रा ओवर उनका गतिमान है, इसकी एक गेंद भी हो चुकी है। उनसे उनके अतिरिक्त कैरी, मरीना, मरियम, एलिसन और रुचिता कुछ वो खिलाड़ी जिन्होंने गेंदबाजी में अब तक अपने हाथ को आजमाया है। प्रतिका के लिए छोर में परिवर्तन किया है, ओवर द विकेट आते हुए अपनी पहली गेंद को प्लेस किया था और कट करते हुए पॉइंट की दिशा में खेला, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। प्रतिका अभी भी खाता खोलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, हालांकि सिर्फ एक गेंद का सामना किया है और उस गेंद में हल्की सी हरकत नजर आई थी। वैसे भी स्कोर आगे बढ़ के 77 रन एक विकेट के नुकसान पे पहुंच जाएगा। इकरा ने इस ओवर में 3 गेंदों में अब तक 3 रन खर्च किए हैं। एक विकेट के नुकसान पे भारत ने पावर प्ले की समाप्ति के बाद अपना पहला विकेट खोया था। प्रतिका अभी भी बल्लेबाजी कर रही है, एक फुल टॉस गेंद है, तीसरी गेंद का सामना किया है, ड्राइव कर दिया गया कवर्स और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, अच्छा खासा प्रोटेक्शन है। और अमूमन वो जो 6 ओवर्स की कहानी होती है उसकी समाप्ति के बाद आपको फील्डर्स घेरे के बाहर नजर आते हैं और इस वजह से ज्यादा दिक्कतें होती नहीं है फील्डर्स को गेंद को रोकने में, और विकल्प ढूंढने पड़ते हैं बल्लेबाजों को, या तो गैप ढूंढने पड़ते हैं या फिर बाउंड्री रोप्स के सीधे बाहर गेंद को धकेल दीजिए 6 रन के लिए। स्मृति बातों ही बातों में 32 गेंद, आखिरी गेंद के लिए इकरा तैयार है, और क्योंकि स्मृति बल्लेबाजी कर रही है तो इनके लिए अराउंड द विकेट आएंगी। ओवर की आखिरी गेंद, एक और फुल एंड डिलीवरी जिसे विद द एंगल एक सिंगल के लिए खेल दिया ऑन साइड में।

फील्डर को मिला था और उसे उन्होंने लपक लिया, वो था शेफाली वर्मा का विकेट, जहां शेफाली वर्मा के सामने उनके 3000 अंतर्राष्ट्रीय T20 रन पूरे करने का अवसर था, वहां वो बहुत करीब तो पहुंच गई, लेकिन वो कहावत है कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, बिल्कुल उतना ही फासला उनके और 3000 अंतर्राष्ट्रीय T20 रन के मध्य रहा था। अब भारत को 10 ओवर्स यानी कि 60 और गेंदें बल्लेबाजी करनी है, सिर्फ एक विकेट गया है। सवाल ये उठता है कि भारतीय टीम यहां से कितना लंबा स्कोर को ले जा सकती है, कितना दूर आप स्कोर को ले जा सकते हैं। वैसे भी हांगकांग का खेमा मानसिक तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार है कि उनके सामने चुनौती कम से कम 150-155 की आ सकती है, लेकिन इस तरीके की शुरुआत भारतीय ओपनर्स ने दी थी, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित मत होइएगा अगर ये स्कोर लाइन 170 के पार भी चली जाए तो। चलिए 10 ओवर का खेल, 60 गेंदों का खेल भारतीय पारी में अभी बचा है। कृतिका जो नई बल्लेबाज के तौर पे आई थी, उन्होंने पिछले ही मुकाबले में अपना पदार्पण किया है, डेब्यू किया है, और वो मुकाबला 22 रन उनके बल्ले से उन्हें देखे गया था। अमूमन ये भी कहा जाता है कि अपना थोड़ा सा वक्त अपने सीनियर्स के साथ बिताइए, क्योंकि तजुर्बा इंटरनेट पे नहीं मिलता। पिछले ओवर में हमने देखा था जैसे कदमों का इस्तेमाल किया था, क्रीज से बाहर चली गई थी लेकिन गेंद के साथ कोई संपर्क नहीं, भाग्यशाली थी कि उन्हें नॉट आउट करार दिया गया, और उस स्टंपिंग में विकेटकीपर ने थोड़ा सा वक्त लिया और भारतीय टीम दूसरा विकेट गंवाने से क्षमा प्रार्थी वंचित रह गई। प्रतिका रावल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखें तो T20 का दूसरा मुकाबला यानी कि तजुर्बा धीरे धीरे बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ स्मृति मंधाना जिन्होंने 173 मुकाबले खेले हैं और महज 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से, 36वां अर्धशतक स्मृति मंधाना का, यदि 2 और रन वो इस पारी में बना लेती हैं। लेकिन दिक्कतें भारतीय बल्लेबाजों के साथ कई दफे हमने देखी है, जब अपने उस निजी माइंडस्टोन के बहुत करीब पहुंचते हैं तो संयम कई बार गंवाते हैं और कई बार उनके बल्ले से वो रन आते हैं जो स्कोर कार्ड में नजर सबको आते हैं, नजर आएगी भारतीय टीम भी पाकिस्तान के विरुद्ध 5 सितंबर को, जब भारत का सामना पाकिस्तान के साथ होगा। ग्रुप ए का ये मुकाबला चल रहा है, भारत बनाम हांगकांग, एक विकेट भारत ने गंवाया है। प्रतिका स्ट्राइक पे रहेंगी, इकरा जिन्होंने इस पारी की शुरुआत की थी वो गेंदबाजी करने के लिए आई है।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान प्रशिक्षण अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
4: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
5: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
4: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: ये समाचार

0: है बहुत पसंद आई होगी, आए भी क्यों ना। आप जितने बड़े फासले से अपने मुकाबले को जीतते हैं वो अंक तालिका में आपको मदद देता है। इस मुकाबले की शुरुआत से पहले मेरे साथी रोहित गांगुली ने आपको बताया था कि भारत ने नेट रन रेट के लिहाज से 4 से भी ऊपर का फासला बनाए रखा था और वो पूल ए में सबसे बढ़िया है। तीसरा ओवर पारी का शुरू होगा। क्रांति जिन्होंने पहला ओवर डाला था, भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत की थी, वही पुनः गेंदबाजी पे हैं। पिछले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया, स्लिप अभी भी मौजूद है। यास्मीन जो नई बल्लेबाज है वो अपनी तीसरी गेंद का सामना करेगी 1 रन, हालांकि उनके बल्ले से आया। तीसरे ओवर की शुरुआत में पूर्वानुमान लगाया था और लैम्प शॉट खेलने के लिए वो तैयार थी। विचित्र है क्योंकि गेंद वैसे भी उछाल नहीं ले रही, संपर्क बल्ले के साथ हुआ नहीं, पैड्स पे जाके गेंद टकराती है, लेकिन ऑफ स्टंप से क्योंकि यास्मीन बहुत बार आ चुकी थी इसीलिए वो सेफ है, उन्हें आउट नहीं करार दिया जाएगा। पर पूर्वानुमान एक चीज होती है और गेंदबाज के हाथ से गेंद निकलने से पहले आप उस परिस्थिति में आ खड़े हो जैसा शॉट आपको खेलना, ये दूसरी बात है। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद के साथ क्रांति ऑफ स्टंप के बाहर रखा, गुड लेंथ की गेंद थी, उसे एक टप्पे के साथ रावत के पास खेल दिया जो पॉइंट की दिशा में खड़ी है, रन कोई नहीं बनेगा। कुल मिला के अभी देखा जाए तो 14 गेंदों में से सिर्फ 3 रन बने हैं, यानी कि 11 डॉट गेंदों का सामना कराया भारतीय गेंदबाजों ने। और जो लक्ष्य हांगकांग के सामने है वो बाहर सा है, कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं, या कह लीजिए जो कप्तान नताशा उम्मीद कर रही थी कि 150 के आसपास का हो वैसा भी नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर की फिर गेंद है, कवर, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट, ये 3 खिलाड़ी ऑफ स्टंप के सर्कल को पूरी तरीके से घेर के खड़े हैं, 25 यार्ड के घेरे के भीतर खड़े हैं और उसे गेंद पार नहीं कर पाए। एक और डॉट, ये डॉट का सिलसिला मानिए कि एक ऐसी परीक्षा है जिसके किसी भी प्रश्न का कोई जवाब हमें नजर नहीं आ रहा हांगकांग के बल्लेबाजों के द्वारा। बहरहाल 3 और गेंदें क्रांति के इस ओवर में बची हैं, सिर्फ 1 रन खर्च किया है, कुल मिला के 9 गेंदें जो अपने दूसरे ओवर में अब तक इन्होंने की है। भारत वुमेन्स एशिया कप में 26वां मुकाबला खेल रही है जिसमें से 22 मुकाबले कुल मिला के इतिहास में जीते हैं, 4 मुकाबले गंवाए हैं और 84.6 ये वो प्रतिशत है जो संभवत है अपने पूरे विद्यालय के काल में रोहित मैंने नहीं देखा।
1: I'll have to figure out when I last saw it. I think I have, but then it was possibly in the primary classes, Ayush.
0: वो यादें धुंधली सी हो चुकी है, बचपन वो रवा हो चुका है, उम्र अपना तकाजा कभी नहीं छोड़ती। बातों ही बातों में ओवर की 5वीं गेंद क्रांति ने बिल्कुल सीधे बल्ले पे खिलाया था, ऑफ स्टंप के आसपास रखा था। लाइन के साथ साथ जो लेंथ बनाए रखी है क्रांति ने उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, उसकी सराहना करनी होगी। यास्मीन ने 7 गेंदें खेल ली है, उनके बल्ले से सिर्फ 1 ही रन आया है, कहीं ऐसा नहीं कि ये डॉट का दबाव एक और विकेट दिलाने पे मजबूर कर दे। हांगकांग की टीम कोई बुनियादी गलती कर दे जो अमूमन युवा टीमें करती नजर आती है किसी परिपक्व टीम के सामने, स्लिप को हटा दिया गया है। ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बाहरी किनारा लेते लेते बची, डॉट के साथ ओवर समाप्त हुआ होगा और जान हलक में हांगकांग के बल्लेबाजों की। 3 ओवर्स के बाद हांगकांग का स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
1: ग्रेट स्टार्ट बाय क्रांति गौर एंड नंदिनी शर्मा, बोथ ऑफ देम, वन हैव टू फिगर आउट दैट दे आर starting ahead of a bowler who's got 70 wickets in WT20Is already, and that is Renuka Singh. So the onus on them is a lot higher, and so far they have already proven themselves, both Kranti Gaur and Nandini. What they are doing is, like the way you pointed out, Ayush, I think it's about the discipline, especially when you're bowling with the new ball, with that upright seam. It moves around like a snake. It moves inside, it goes outside. You as a fast bowler need to show that mastery. And once again, Nandini coming back into the attack, bowls it fuller. And Natasha Miles plays it all the way to Prema Rawat at short third. Nandini once again possibly will be hoping to set up exactly the same trap. This time just getting a little wobble seam in play. And driven away by Natasha to Prema Rawat. Richa Ghosh always having a smile on her face. One of the senior contenders now has been one of the mainstays of the Indian side for a while. Once again, Nandini over the wicket. She has got a slip in place for Natasha. But that is very good bowling. She's keeping it close to the off pole, not giving any width whatsoever for Natasha to free her arms. And if Natasha doesn't get to free her arms, the early shots in power play kind of dries up.
0: जितने भी श्रोता हमारे इस मुकाबले को सुन रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि पावर प्ले गतिमान है, 3 ओवर से ज्यादा का खेल हो चुका है और सिर्फ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये वो आंकड़े नहीं है जो अमूमन हम T20I में देखते हुए नजर आते हैं या सुनते हुए हमेशा हमारे कान खुले रह जाते हैं, लेकिन आज हांगकांग के सामने यही चुनौती।
1: Another dot ball there from Nandini this time. Oh, this can be trouble. Was it a bit too feckless there from Natasha? She just came down the ground. Of course, she was trying to gain her balance. Nandini picked it up. Now Natasha was beaten. The ball went.

0: on to clip her pads. It went back straight to Nandini. She picked it up, gunned it back in, and Natasha was kind of struggling to get back to the crease. The question, of course, we are going upstairs. What do you think, Ayush? How feckless was this of Natasha? As a professional player, you need to go back early enough.
1: और जो दृश्य हमारी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसानी से नताशा पहुंच चुकी है. लेकिन बिल्कुल सही आपने जिक्र किया है कि बतौर बल्लेबाज सबसे प्राथमिक चीज जो आपको सिखाई जाती है वो ये कि जैसे ही आप गेंद खेलें, संपर्क हो या ना, कम से कम आपका बल्ला रगड़ता हुआ क्रीज में आना चाहिए. हवा में बल्ला रहना मतलब खतरे की घंटी.
0: And with this, also now, a mini rivalry might just start between Nandini and Natasha, because ideally when a bowler, fast bowler especially, she picks it up and guns it back in as a batter, you want to respond to that. Now, this isn't just cricket in its physical form, it's also a mind game, like you said. It's more like getting under the skin of the batter, trying to throw a challenge that let's see how you survive this heat. Once again, over the wicket, slip still in place for Natasha, and Natasha drives it away. Sweeper cover in position, and it's Sri Charani who will pick it up and throw it back by the time Natasha will add another run to her tally. 4-for-1 is what Hong Kong has got from 3.4 overs. They are scoring less than 2 runs an over and they are chasing more than 9.5 runs an over. Now that is a lot of daylight. It was a good looking drive definitely from Natasha Miles. Got down on her knees and a wonderful bit of use of that bottom hand once again. And she is of course a very experienced player. Already 18 dots. So far, India has bowled 22 balls, 18 dots is what they have managed. It just tells you that Hong Kong, they haven't got a single clue of how to right now retaliate. Another dot ball, once again, it was the back of the lane coming into play and pushed away by Yasmin, straight to the fielder at cover point, and will be nothing more than another dot ball. Nandini and Kranti, both of them, they've started constricting, they've started asphyxiating the run rate that Hong Kong has got. 4-for-1 from 3.5, and it feels like Hong Kong, they are looking for a release shot, and that's what India would be expecting them to do as well. They want them to take and manufacture the shot, take the pressure, and they do go for the shot, unfortunately, straight to Bharti Fulmali at short mid-wicket, another dot ball, 4 overs done, Hong Kong are 4-for-1.
1: इस पारी की शुरुआत से पहले जो रिक्वायर्ड रन रेट थी हांगकांग के सामने वो 9.5 के इर्द गिर्द थी. लेकिन जैसे जैसे ये पारी आगे बढ़ी, 4 ओवर की समाप्ति में सिर्फ 4 रन बनाए हैं, 1 विकेट भी गंवा दिया है. उसी के चलते अब आवश्यक जो रन रेट है वो 11.88 की हो चुकी है. और यकीन मानिए, अगर आने वाले 2 ओवर्स में ज़्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं हुई, कुछ बाउंड्रीज नहीं आई, तो हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ये मुकाबला फिर औपचारिक मुकाबला बन जाएगा और हांगकांग के सामने ज़्यादा कुछ होगा नहीं. जैसे तैसे वो 20 ओवर्स के इस मुकाबले को पूरा संपन्न करने के प्रयास में होंगे. और हमने थाईलैंड के विरुद्ध भी कुछ ऐसा ही खेल हांगकांग की टीम को खेलते हुए देखा. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, लेकिन वहां भी कम रह गए उनके बल्लेबाज. उसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है. शेफाली वर्मा अब गेंदबाजी करने के लिए बुलाई गई हैं. इससे पहले क्रांति गौड यहां से गेंदबाजी कर रही थी, उनकी जगह शेफाली वर्मा, यानी कि अब गति को थोड़ा सा नियंत्रित करने के लिए एक स्पिनर को बुला लिया गया है. 113 कुल मिला के मुकाबले में 16 विकेट है. आप कह सकते हैं कि एक पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पे आती है अपनी टीम के लिए, जैसे तैसे उन ओवर्स को निकालती है जहां दूसरे गेंदबाजों को आप थोड़ा सा विश्राम देना चाहते हो. आज उन्हें लाने का संभवतः यही कारण रहा है, क्योंकि बल्लेबाज वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो शायद अपने हाथों को थोड़ा और रवा कर ले. स्लिप लगाई गई थी, पहली गेंद डॉट है, गेंदबाज की तरफ ही उसे खेल लिया था. स्मृति मंधाना, क्या शाम रही है आज बल्लेबाज के नाम. एक शतकीय पारी खेलना और एक ही मुकाबले में 3 रिकॉर्ड बनाना, यह आसान नहीं होता है. जबरदस्त अपील की गई है दूसरी गेंद पे शेफाली वर्मा के द्वारा, लेकिन उसे नकार दिया. संभवत है हाइट एक मसला हो सकता है, उछाल गेंद का ज्यादा.
0: मोस्ट लाइकली बिकॉज फेयरली शी वाज ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट विकेट. Yeah, that definitely is height, because she was playing at like on very much on the popping crease. So by the time the ball would have actually went on to the wickets, it would have missed the bails.
1: Dot by dot, ये दुविधाएं बढ़ रही है Hong Kong की टीम के लिए. हालांकि 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और ऐसा लगा कि एक अंदरूनी किनारा भी लगा है, क्योंकि एक रन बल्लेबाज के खाते में ही जोड़ा गया है. 10 गेंदों का सामना करते हुए जहां एक रन था, ओवर की तीसरी गेंद को भी डॉट के तौर पे यास्मीन ने खेला है. और 5वां ओवर जब तक समाप्त होगा, बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा हमें अगर एक भी बाउंड्री ना आए तो, क्योंकि नपीतुली गेंदबाजी अब तक रही है भारतीय गेंदबाजों की. शेफाली के सामने कदमों का इस्तेमाल किया गया, जड़ों में गेंदबाजी शेफाली ने की थी. डायरेक्ट हिट होती तो कहानी बदलती, लेकिन उसी बीच एक रन मिल जाएगा

0: एक अवसर था भारती के पास एक सही परिस्थिति में मौजूद खिलाड़ी से एक सटीक थ्रो की उम्मीद या अपेक्षा कौन गेंदबाज नहीं करता, और जिस छोर पे वो मौजूद थी मिड ऑन की दिशा से क्षमा प्रार्थी, जहां उन्होंने गेंद को फेंका तीनों के तीनों विकेट्स उन्हें नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीधा निशाना नहीं साध पाई। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अपने बचपन में ज्यादा अंचे नहीं खेले हैं भारती ने।
1: Well, she's definitely one of the rising talents, one might say. Now, of course, the numbers don't really say in international games, but when it comes to domestic, she's definitely one of the best players.
0: और के आखिरी गेंद ऑन साइड में सिर्फ उसे चिप किया, फिर भारती के लिए थोड़ी सी दौड़ रहेगी, लेकिन क्रांति गौड़ ने कहा कि रुकिए, मैं गेंद को विकेट कीपर तक पहुंचाऊंगी। ओवर से चार रन आए हैं, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पांच ओवर्स के बाद हांगकांग का स्कोर 8 रन। इतनी धीमी गति से बल्लेबाजी करना शायद इतने बड़े स्तर के टूर्नामेंट में आपको बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा।
1: Absolutely, Ayush. And another thing is, 4 runs that came in this over, that's been the highest scoring over for Hong Kong so far in the first 5 overs. It just tells you a story. Not really sure. They've got batting to come. They've got Carrie Chan. They've got Mariam Bibby as well. Marina Lamplaugh can bat. So they've got some significant bit of batting to come. But then if you, like earlier in an interview ahead of this Asia Cup, their captain Natasha Miles said that they want Hong Kong players to be fighters. It's not about victories against stalwarts, but it's about how much fight they can put in. But so far, kind of batting that they have done, not too much of fight. Sri Charani brought into the attack, one of India's most successful spinners in recent times. 44 wickets in 27 matches, best figures of 4 for 12. Will be going round the wicket. And Yasmin pulls that away, in fact. They'll be racing away to the fence. There was no fine leg fielder. Good placement. And that's the first boundary for Hong Kong, which came in the final over of the power play. Slightly shorter, very well played.
0: पहले कदमों का इस्तेमाल किया था और अनुमान अच्छा लगाया कि गेंद वैसे भी टप्पा खा के ज्यादा उछल नहीं रही है, इस वजह से अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया। फाइन लेग की दिशा में कोई फील्डर नहीं था, एक स्वीप सा थोड़ा सा विचित्र सा शॉट खेला, ना ही आप पूरी तरीके से उसे पुल कह सकते हैं, ना ही पूरी तरीके से वो स्वीप था। जो भी हो, पहला चौका यास्मीन को देखे गया है। हांगकांग की टीम का हौसला थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि अब तक कोई बाउंड्री नहीं आई थी।
1: इंडिया ऑल्सो हैड एन इनक्रेडिबल 6th ओवर, दे गॉट 22 रन्स ऑफ इट इन द पावर प्ले। Oh, that's in the air. Now, Sri Charani, this is where she's so dangerous. She mixes it all. At times, she's bowling the arm ball. At times, she's going to take it away from the right-hander. And this one was going away from Yasmin and she had no clue. Almost ended up holding out to the fielder at point. It just landing short. Again, slightly looped up and it goes away. And Yasmin will have to be very careful. She will not want to play against the turn. Got beaten as Richa Ghosh collects that. Without breaking a sweat.
0: दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी में एक अलग स्तर का फासला नजर आ रहा है। एक तरफ कप्तान नताशा है जिन्होंने जितने भी शॉट खेले हैं रन भले उन्हें ना मिले हो लेकिन बहुत कंट्रोल में नजर आई है, वहीं यास्मीन ने सिर्फ आड़े टेढ़े बल्ले चलाए हैं, एक चौका उसी की वजह से मिला है।
1: Yeah, she's looking forward to at least break free from the chains because the scoring rate have been so low. It's more like India is playing the game that one will set it up, the another one will knock it off. It's more like setting trap for your teammates and your teammates eventually reap the rewards. And that's also good chemistry. This time slightly shorter. Yasmin trying to go for the reverse sweep and unfortunately misses it completely. Richa Ghosh makes no mistake. Collects that behind the stumps and it's another dot ball.
0: पर मित्र, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपकी कमाई से ज्यादा आपके क्रेडिट कार्ड का बिल हो तो आप ज्यादा लंबा खेल खेल नहीं सकते।
1: Well, it depends on how Hong Kong is going to react to that. This time, slightly shorter, once again going away from Yasmin, and she plays it straight to Shafali Verma, who's at mid-off for no run. That's another dot ball. 26 dot balls so far for Hong Kong from the 35 balls that they have faced. A few smiles, of course, in the Hong Kong dugout. They're enjoying themselves, despite the fact that the equation right now is not in their favor. Once again, shuffles away, and the ball goes away from Yasmin. She gets beaten. However, the ball has got enough pace from Sri Charani's hands herself and it will run away for a boundary. At least a positive, a categorical finish to the power play. 6 done. In fact, it's bye. So 6 done, 16 for 1.
0: ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई थी, वो चौका बल्ले से आया था। यहाँ बाई का इशारा आया था एम्पायर का और थोड़ा सा लेट लिया गया निर्णय, तो दो चौके इस ओवर से जैसे भी आए उसे पूरी तरीके से दोनों हाथों से बटोरती हुई हांगकांग की टीम नजर आएगी और बखुश उस मौके को गंवाना नहीं चाहेगी। भारत एक अच्छी परिस्थिति में है, किसी प्रकार की काया पलट यहां से तो मुश्किल नजर आ रही है। छह ओवर्स का खेल यानी कि पावर

0: की परिस्थिति अब समाप्त हो चुकी है, तो 25 यार्ड का वो जो नियम है जिसमें सिर्फ दो ही खिलाड़ी 25 यार्ड के बाहर रह सकते हैं वो अब समाप्त होगा। सातवां ओवर कौन सा गेंदबाज लेके आता है ये देखना बड़ा रोचक होगा, पर भारत 6 ओवर्स के बाद 60 रन पे था, तुलनात्मक तौर पे बहुत आगे। शमा सने हमारी स्कोरर ने यह आंकड़ा हमारे साथ साझा किया है। तो वहीं 6 ओवर्स के बाद 16-1 हांगकांग का स्कोर। नताशा बल्लेबाजी कर रही है और गेंदबाजी में कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। एक और परिवर्तन हुआ है, दीप्ति को बुलाया गया है, एक और स्पिन गेंदबाज को दीप्ति शर्मा को इंट्रोड्यूस किया जो अपना 151वां मुकाबला खेल रही है। 171 विकेट कुल मिला के लिए हैं और 6.34 किसी गेंदबाज की इकोनॉमी हो तो उसे काफी इकोनॉमिकल गेंदबाज माना जाता है। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही है, ऐसा लगा कि गेंद टर्न होगी जिस तरीके की कलाइयां इनकी घूमी थी, लेकिन गेंद ने बिल्कुल भी कांटा नहीं बदला और इस वजह से बल्लेबाज थोड़े से आश्चर्यचकित रह गई। वो स्वीप करने के लिए चली गई थी, उनके बल्ले के बहुत करीब से गेंद निकल गई और विकेट कीपर के दस्तानों में जाके समाप्त हुई। ओवर की दूसरी गेंद के साथ 3 विकेट चाहिए दीप्ति को अगर वो लीडिंग विकेट टेकर बनना चाहती है महिलाओं के T20 मुकाबलों में। क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं कि आज के मुकाबले में 3 शिकार वो कर पाएंगी?
1: Well, you never really write Dipti Sharma off. She got 3 wickets in 1 over in the last game.
0: उसे बीच ओवर की अगली गेंद जैसे खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, फील्डर के लिए थोड़ी सी दौड़ जरूर रहेगी, लेकिन एक चौका, एक कंट्रोल शॉट नताशा के द्वारा खेला गया था, देख लिया कि गेंद में उतनी ज्यादा गति नहीं है, छोटी गेंद है, इस टूर्नामेंट का 130वां छक्का उनके बल्ले से आया, घुटनों के बल चली गई थी और एक स्लॉग स्वीप करने की कोशिश जो भले पूरी तरीके से नहीं यानी कि 6 रन ना दिला पाई हो लेकिन एक संतुलित चौका देके गई है।
1: Of course, it'll definitely boost her confidence as well. 204 for her.
0: 16 छक्के, 200 चौके, कुल मिला के 93 मुकाबले जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले हैं उससे आए हैं नताशा। जाहिर सी बात है कि हांगकांग के लिए सर्वाधिक स्कोर करने वाली खिलाड़ी रही हैं, चाहे T20 का मुकाबला हो चाहे ODI के मुकाबले हो, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे हांगकांग का स्कोर है। दीप्ति के इस ओवर में अब तक सिर्फ एक चौका आया है, उसके अतिरिक्त सिर्फ और सिर्फ डॉट गेंदे उन्होंने की है। इस गेंद को फ्लिक कर दिया गया था, फाइन लेग शॉर्ट फाइन लेग सर्कल के भीतर है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी सर्कल के भीतर है, तो रन यहां से मिलना थोड़ा सा मुश्किल। 18 गेंदों में 9 रन नताशा के बल्ले से आ चुके हैं। यास्मीन जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है 19 गेंदों में 7 उनके बल्ले से निकले हैं। ओवर की आखिरी गेंद पैड्स पे खिलाया था उसे फ्लिक कर दिया गया है और सर्कल के बाहर इससे पहले की गेंद जाती है, एक सिंगल दोनों ही बल्लेबाजों ने निकाल लिया। 7 ओवर समाप्त होंगे 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे। भले गणित बहुत अच्छी मेरी ना हो लेकिन 7 को अगर 3 का पहाड़े के चलते पढ़ा जाए तो शायद 21 बनता है।
1: एब्सोल्युटली जस्ट 3 रन्स एंड ओवर एंड वंस अगेन द डेलाइट बिटवीन द रन्स रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड रेट एंड व्हाट दे आर स्कोरिंग एट इट्स जस्ट एक्सेंचुएटिंग इटसेल्फ। Of course, Hong Kong, they'll need a bit of a boost, but India know that they have got things under control. Despite the fact that they've just claimed 1 wicket, but they are happy with where they are. Target of 194 and they are going to bring in Prema Rawat. Now, Prema Rawat, she's another exciting talent. In recent times in List A cricket, Prema has been doing incredibly well. Harmanpreet Kaur with a little chat with her, right arm leg break bowler. And leg spinners, they are always going to be a menace for batters considering the kind of different angles that they create, taking the ball away from the right-handers. Now, of course, Prema in recent times, she's also worked on a googly as well. One should be hoping that she can get the googly into play. This is the second game of the tournament. Of course, Harmanpreet Kaur, she'll be hoping that they are able to break free from the wicket of Natasha. Natasha, despite the fact that she hasn't really got too many boundaries, Natasha still looks like a woman who's controlling her in innings with a lot of confidence.
0: दुबई में वैसे भी गर्मी यानी कि सूर्य का प्रकोप ज्यादा रहता है जब दोपहर का समय चल रहा हो, लेकिन रात्रि में भी ऐसा लग रहा है कि पसीने छुड़ा दिए नताशा और यास्मीन के भारतीय गेंदबाजों ने। इस वजह से पानी की मांग वहां पे की, इशारा किया अपने साथी खिलाड़ी को कि संभवतः उन्हें थोड़ा सा डिहाइड्रेशन महसूस हो रहा है, इस वजह से पानी का सेवन करेंगी नताशा। 19 गेंदे 10 रन उनके बल्ले से। प्रेमा जो लगभग 30 से 40 सेकंड पहले आ चुकी थी गेंदबाजी के अपने उस स्टैंड पे, लेकिन अब जाके उन्हें गेंद करने का अवसर मिलेगा।
1: Absolutely, and she's just getting ready because what Prema really does well is she eventually sticks to that one line and length. She takes it away, she bowls it close enough to the off pole, like the way you were talking in the first innings of bowling it on the fourth and fifth. A fairly packed topside field, backward point, point, extra cover and cover in place for Natasha Miles. Loops it up, almost played it straight back to Prema, but falling just short of her. And Prema fails to gather that. We'll have to take a look if it did carry or not. But it looked like it's just landed short.
0: बिल्कुल टप्पा पहले खाई थी फिर गेंद

0: गेंदबाज प्रेमा के पास गेंद गई और एक क्षण के लिए, क्योंकि जब आप गेंदबाज के पीछे से उस पूरे नजारे को देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद एक अवसर था.
1: Absolutely, this time that is very cheeky there, opening the face of the bat. She guides it. However, short third fielder where Sri Charani was stationed, she'll come around and keep it down to a single. Natasha now, she moves on to double figures. In fact, she's moved on to 11. Yasmin batting on 7. Hong Kong 22 for 1 from 7.2 overs. However, the required rate now 13.58. And it is starting to look like a very scary monster for Hong Kong. Prema, over the wicket. Loops it up. Yasmin takes it on the full. However, there is a fielder at deep mid-wicket, Bharti Fulmali. Tidies it up. Only a single is what Hong Kong will manage for now. Very, very clean spick and span bowling from India. They're not really willing to take the risk at this point in time. Just keeping things in control, just not giving the boundaries away. It's as simple as that for them. And unfortunately, 13.68 is the required rate. Slightly shorter turns away. Cut away by Natasha, sweeper in place, who will again clean it up. And just that one run. India won't mind the singles. When you require 13.78 and over, singles won't get the job done. In fact, you'll need more than one boundary, maybe two or three in an over already. That's because they had a very slow power play. Loops it up again, driven away by Yasmin. And most likely, it's just another single is what they'll manage. Very tight bowling from India, Ayush.
0: विशेषकर जब कोई लेग स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है उसके बाद भी इतना सटीक टप्पा पकड़ के गेंदबाजी करे तो सराहना तो बनती है. पिछली 12 गेंदों में 13 रन बने हांगकांग की टीम के लिए. उनके पावर प्ले के बाद ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी में थोड़ा सा सुधार आया है. 25 रन कुल मिला के बना लिए एक विकेट के नुकसान पे.
1: दैट्स इन द एयर, हाउएवर इट विल लैंड वेरी सेफली. Natasha was trying to play against the turn, didn't get the connection that she was looking forward to. Nandini Sharma comes all the way from deep cover and tidies it up. Just that one run in the last ball of the over.
0: शुरुआती 6 ओवर्स पावर प्ले जहां भारत ने 60 रन बनाए थे, कोई विकेट गवाया नहीं था. दूसरी तरफ हांगकांग की टीम जो 194 के विशालकाय लक्ष्य का पीछा कर रही है, उन्होंने पावर प्ले के 6 ओवर्स में यानी 30 गेंदों में सिर्फ 16 रन बनाए और विकेट भी अपना पहला जो था वो गंवा दिया. और उसी परिस्थिति के चलते अब जो जुझारूपन दिखाना पड़ रहा है उनकी कप्तान नताशा को, उनका साथ निभाने वाला कोई खिलाड़ी अगर लंबी बल्लेबाजी करे, निरंतर तौर पर बाउंड्री आए, तभी ये संभव है. धरातल की हकीकत तभी ये बनेगी कि भारत के विरुद्ध हांगकांग एक चुनौती सी पेश कर जाए, क्योंकि जो आवश्यक रन रेट है वो बढ़ के 14.00 की हो चुकी है. दीप्ति ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही है, मिडिल और लेग पे गेंद थी. अपील करने के लिए उन्होंने एम्पायर की तरफ अपना चेहरा जरूर घुमाया, लेकिन जन्नत की हकीकत तो सबको पता है, दिल बहलाने का ये तरीका बुरा नहीं है. एम्पायर पहचान चुकी थी कि गेंद डाउन द लेग साइड जा रही है और इस वजह से कोई खिलाड़ी आउट नहीं हो सकता. दीप्ति 9 ओवर की दूसरी गेंद लेकर आ रही है, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा, कदम का इस्तेमाल किया था नताशा ने, उसे फ्लिक कर दिया मिड विकेट की दिशा में. फील्डर है, ज्यादा रन नहीं लेकिन सिर्फ एक सिंगल से काम चलाना पड़ेगा. और जिस तरीके की चर्चाएं रही है रोहित, जो असमंजस की परिस्थितियां रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिंगल्स आपको सिर्फ 20 ओवर्स खिलवा सकते हैं. इस मुकाबले को जीतना है तो आपको फिर चमत्कार ही करना है. हाँ, ये मदद हो सकती है, गेंदबाज यदि डाउन द लेग साइड गेंदबाजी करें, वाइड का इशारा है, एक्स्ट्रास के रन मिले तो कहानी थोड़ी सी अलग होगी. औपचारिक तौर पर इशारे का इंतजार, क्या बाई दिया जाएगा? हालांकि एम्पायर आपस में बातचीत कर रहे हैं, औपचारिक स्कोर की पुष्टि हुई है और बल्ले से संपर्क रहा है. 29 रन एक विकेट के नुकसान पे हांगकांग का स्कोर, यास्मीन का स्कोर बढ़ेगा. 22 गेंदों में 11 रन उन्होंने बनाए हैं. नताशा के बल्ले से 14 आए हैं, 25 गेंदों का सामना उन्होंने किया है. आपको बता दें, एक ऐसा लक्ष्य जो भयभीत कर दे, उसी बीच आश्चर्यचकित करने वाला कैच पकड़ लिया भारती ने. वो कहते हैं कि चमत्कार है तो नमस्कार है. भारती जिन्होंने पिछली बार 2 ओवर्स पहले एक कैच का अवसर छोड़ा था, उन्होंने यहां एक ऐसा कैच पकड़ा है जिसने हांगकांग के खिलाड़ियों को दांतों तले उंगली चबवा दी.
1: Absolutely stunning, brilliant reflex there. Kept your eyes on the ball, and these catches are not easy. You've got to leap, you've got to time that leap of yours to perfection, and that's exactly what she's done. And Dipti will be happy. She's got a first wicket off the net, and Yasmin Dasmani departs for 11 of 23.
0: ज़्यादा लंबी पारी रही नहीं, बल्ले से बाउंड्रीज आने दी थी, एक चौका जरूर उन्होंने लगाया था, लेकिन उसके अतिरिक्त ज्यादा कुछ मिला नहीं है. हालांकि जो सफर रहा है यहाँ हांगकांग की टीम के लिए, अपना सम्मान बचाने की कोशिश करेगी. और अगर पुरुष वर्ग में देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं है, अफगानिस्तान जैसी टीम जिसने बीते कुछ 15 साल में ना सिर्फ नाम कमाया है बल्कि ऐसे बल्लेबाज ऐसे गेंदबाज विश्व स्तर को दिए हैं जिससे अब हर एक टीम अफगानिस्तान को ना हल्के में लेती है बल्कि कतराती है उनके सामने खेलने से, तो वैसा ही खेल

0: विमेन क्रिकेट क्यों ना हो, महिलाओं का क्रिकेट क्यों ना हो, कुछ युवा टीमों को खेलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि किस तरीके का खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेला जाए.
1: And India is actually doing a very good job of it, because if you take a look at the domestic structure as well, alongside the Senior One Day Trophy and the WPL, it's really having a lot of impact. A lot of young women are coming up, especially if you take a look at this side. Carrie Chan's the new batter in. If you take a look at this side, the likes of Nandini Sharma, Kranti Gaur, Shri Charani, they are all from the domestic circuit and they are doing absolutely well.
0: Dipti ki pichli gend jaune wicket mila, zyada flight dene ki avashyakta unhone sahi samjhi nahi. और भारती, जिन्हें बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगाया गया था, शॉर्ट मिड विकेट पे वो फील्डिंग कर रही थी, सीधे गेंद उनके हाथ में जाके समाप्त होती है और भारत को दूसरी सफलता मिलती है. कैरी जो नए बल्लेबाज के तौर पे आई हैं, वो फिलहाल स्ट्राइक पे रहेंगी. दीप्ति ने जिस खिलाड़ी को आउट किया था, यास्मीन ने, उनके बल्ले से 23 गेंदों में 11 रन आए थे. अब मजे की बात यह है कि दीप्ति अगर इस मुकाबले में दो और विकेट चटका लेती है तो T20I में एक बहुत बड़ा काम करती भी नजर आएंगी. इनसे ज्यादा विकेट फिर किसी और खिलाड़ी के नहीं होंगे. उसी बीच अगली गेंद जो डॉट रही है, अब नवे ओवर में सिर्फ एक गेंद बची है. बाएं हाथ के बल्लेबाज कैरी के लिए एक खिलाड़ी हमें यहां से नजर आ रहा है. मिड विकेट की दिशा पे एक खिलाड़ी नजर आया था स्क्वायर लेग पे. लॉन्ग ऑफ पूरी तरीके से सर्कल के भीतर खचाखच भरा है. वहीं अगर ऑफ साइड में पॉइंट की बात की जाए तो उन्हीं के हाथ में गेंद चली गई थी, एक स्लिप लगाई थी. 9 ओवर की समाप्ति, डॉट के साथ ओवर समाप्त होगा. और लगातार जूझते हुए हांगकांग के बल्लेबाज, फर्क नहीं पड़ रहा कौन बल्लेबाजी कर रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा गेंदबाज उनके सामने है, लेकिन चुनौती हमेशा रही है.
1: Well, for a moment, Hong Kong, they were able to find a little bit of rhythm, despite the fact that they were not scoring at the rocket speed. But Natasha and Yasmin Daswani, they were just trying to knit together a partnership, at least trying to push them, take them as far as they could go. Unfortunately, now with the fall of Yasmin Daswani, it looks very, very tough. 165 runs required from 66 balls is what the equation is. And that equation is certainly not someone's cakewalk. It is not a walk in the park. It might be a walk in the park, provided that the park is a Jurassic Park. But then with that being said, it's never going to be easy. Prema Rawat comes back for a second over, pushed away by Natasha Miles towards a square leg. And all she'll get is just that one run. Nothing more than that. Prema Rawat, absolutely sensational in terms of a discipline. Being a leg spinner, it's not easy. She has to vary her weapon. She has to figure out what are the ways that she can get those variations to sneak in. And now she's got a left-hander in the mix, and that is Carrie Chan. Now, obviously, the ball's going to come inside to Carrie Chan. A different bit of angle for Prema Rawat as well to deal with. Now, again, as we said before, that she's starting to get the googly into the act. So far, we haven't seen it in this game, but it's going to be interesting to see if a couple of normal leg breaks is eventually followed by the googly that we are all expecting. And Carrie Chan, however, will be hoping to at least command this innings, at least help her captain out to get something on the board. But right now, whatsoever the equation is, it's overwhelmingly tipped in favor of India. There was a quicker one and Carrie was completely beaten. Richa collects that without breaking a sweat behind the wickets.
0: अमूमन ऐसा माना जाता है कि जो बल्लेबाज लेग स्पिनर की गेंद को हाथ से छूटते टाइम पढ़ ले, वो संभवतः थोड़ी बढ़िया बल्लेबाजी करता है. लेकिन पिछली गेंद को देख के ऐसा लगा नहीं कि कैरी को हाथ से कुछ समझ आ रहा हो.
1: Absolutely not. This time loops it up, driven down the ground, mid off in place. Excellent work. However, a little more time taken by Shri Charani, or was it Shafali Verma possibly, who took a bit more time to recover herself. And by the time the throw came in, they had taken that run. Good running between the wickets there. Carrie Chan gets off the mark with that single. Hong Kong now 31 for 2 from 9.3. Prema Rawat, she'll be going over the wicket to Natasha Miles. Natasha now, she's batted for 26 balls. She's happy to rotate the singles and doubles because she will have to play the long innings. Slightly shorter and that goes away. Richa with an appeal. And looks like the finger's gone up. Prema has struck. And it's the big wicket. It's the big fish. Natasha Miles, who looked like she was in control, this time was beaten by the one that goes away. And also that little bit of extra bounce that came into play.
0: दीवार पे सनी हरे कीट को यही गुमान है कि पूरी दीवार उसी पे टिकी है. लेकिन दीवार नहीं, पूरी की पूरी टीम नताशा पे टिकी थी. इसमें कोई दौरा नहीं, कोई द्वंद नहीं. और उसी बीच आती है प्रेमा, विकेट चटकाती है प्रेमा और एक सबसे बड़ी बेहतरीन बल्लेबाज नताशा माइल्स का शिकार करती है. 27 में 15 करके नताशा का विकेट यहां पतित हुआ है. भारत को एक और सफलता मिली है. रोचक बात यह भी नजर आ रही थी पिछली उस गेंद में कि जब बाएं हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंद टप्पा खाने के बाद उतनी घूमी नहीं, लेकिन जैसे ही दाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने आए, गेंद ने टप्पा भी खाया, गेंद ने हरकत भी दिखाई, गेंद ने विकेट भी दिलाया.
1: It just also tells you, Ayush, that Prema Rawat is very confident of that leg break, especially when she is bowling against a right-hander.

0: It might be a question of angles, but as a leg break bowler, as a leg spinner, if you are confident of your leg break and you're not really sure what are the other variations that you can bowl in, what you basically do is you just stick to your strengths. As they say, you get the fundamentals right, half of your job is done.
1: Bruce Lee ने भी आपकी बात को पुख्ता किया है. उन्होंने कहा है कि आपके प्रतिद्वंदी को आपके उस एक ही मूव से खतरा है जो आपने हजार बार प्रैक्टिस किए हैं, बल्कि उन हजार मूव से नहीं जो आपने सिर्फ एक ही बार प्रैक्टिस किया हो.
0: Absolutely, I think Bruce Lee will definitely be hearing this if he was there. But then, of course, another legend altogether. But what an incredible spinner Prema Rawat is turning out to be. Of course, got a breakthrough in the WPL in recent times. In domestic cricket as well, Prema Rawat has been fairly good. And now she's starting to reap the rewards, of course, under the chaperonage of India's bowling coach Avishkar Salvi. A lot of youngsters are coming of age, and that is what you would expect for India to look forward. The transition phase. Of course, we know that Smriti Mandhana is there, Dipti Sharma is there, and obviously Shafali Verma is there. But you want the youngsters to come into the act so that the pool that they have right now after WPL, that pool simply gets bigger and bigger.
1: और इसका और कोई मार्ग नहीं है. जितना ज़्यादा अभ्यास आप करते हैं, जितने डोमेस्टिक मैचेस खेलने का अवसर हर एक खिलाड़ी को मिलता है, उसमें बढ़िया प्रदर्शन यदि आपका रहेगा तो संभवतः सेलेक्टर्स की निगाहें आप पे बनी रहेगी. और सेलेक्टर के लिहाज से सबसे बढ़िया चीज़ रोहित ये होती है कि जितने ज़्यादा खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हो, जिनका प्रदर्शन बेहतरीन है, और उनमें से चुनने के लिए भले आपको असमंजस में क्यों ना फंसना पड़ रहा हो, पर इससे बढ़िया चीज़ किसी भी सेलेक्टर के लिए नहीं हो सकती.
0: Since you talked about the number of matches, I think another incredible bit of work is coming up for the Indian women. The India A team will be playing Australia A team across multiple formats. So that is going to be a massive exposure for all these youngsters coming into the act. And that is where BCCI, the kind of work that they are putting in behind the shift to get these players into the group, that is absolutely brilliant.
1: एक पेड़ का तना तो हम सभी को नजर आता है, लेकिन उसकी शाखाएं कितनी गहरी है ये उस तने को देख के पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. और इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी टीम या कह लीजिए कोई भी खेल, उस खेल के लिए काम करने वाली प्रणाली जितनी ज्यादा जड़ों में घुसी हो, ग्रास रूट लेवल पे जितना ज्यादा कार्य किया जाए, फायदा हमेशा उस खेल को मिलता है, उन खिलाड़ियों को मिलता है.
0: एब्सोल्युटली. मरीना लैम्पलो इज द न्यू बैटर इन. शी इज grabbed a couple of brilliant catches, one of Shafali Verma, one of her own bowling, that's in the air. However, it won't carry to the fielder. Bharti Fulmali comes all the way from deep mid wicket and keeps it down to a single. There was a bit of an extra bounce there from Prema Rawat, and it also skidded off the surface. Lamplow, she's got 334 runs, strike rate of 88, best of 33 against United Arab Emirates that came in Windhoek, and Windhoek was recently the epicenter of Namibia's iconic win against South Africa in men's cricket. Prema now decides to bowl on to the pads of Carrie Chan, and Carrie kind of confused, also kind of afraid to play the shots. 10 done, Hong Kong are 32 for 3.
1: जिस गति से ये मुकाबला चल रहा है, जैसे बल्लेबाजी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि हांगकांग का मुकाबला भारतीय टीम के साथ नहीं है. हांगकांग या चाहेगी कि जैसे तैसे स्मृति मंधाना को भी शिकस्त दे दे तो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है. 100 से ऊपर का आंकड़ा स्मृति मंधाना ने बनाया था, जहां हांगकांग की टीम ने 10 ओवर्स में 32 रन बनाए हैं, 3 विकेट गंवा दिए, 3.20 की गति से बल्लेबाजी चल रही है. वहां भारत ने 10 ओवर्स की समाप्ति के बाद 85 रन बनाए थे, 1 विकेट गंवाया था, 8.50 की गति से रन बनाते हुए नजर आ रहे थे. आने वाले बल्लेबाजों में मरियम है, शंजीन है, जॉयलीन होने वाली है, लेकिन ऐसा लगता है कि तब तक अगर बल्लेबाजी आती भी है तो भी बहुत देर निकल जाएगी, बहुत वक्त हो जाएगा. हांगकांग के लिए तो ये शाम है कि ढलती नहीं, साल है कि बीतते जा रहे हैं. धीरे धीरे बस अपेक्षाएं यही है कि पूरे के पूरे 20 ओवर का खेल खेला जाए. पिछला विकेट जो गया था प्रेमा की गेंद टप्पा खा के बहुत बाहर गई थी, बाहरी किनारा. तारीफ बनती है विकेट कीपर ऋचा की, जिन्होंने ये पहचान लिया कि एक बाहरी किनारा है. तुरंत वो अपील पे गई, उस अपील को स्वीकार भी कर लिया गया. उसी बीच 11वें ओवर की शुरुआत हो रही है. पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश, डॉट गेंद. अब दो नए बल्लेबाज हैं, एक मरीना, दूसरी कैरी. दोनों ने मिला के संयोजित देखें तो सिर्फ 2 रन बने हैं. इनफैक्ट डाउन द लेग साइड उसे करार दिया गया. वाइट के इशारे का इंतजार कर रहे थे संभवतः मरीना, लेकिन कोई इशारा आया नहीं है. तो पहली गेंद डॉट है, दूसरी गेंद पे पुल कर दिया गया है. इस बार गोली के वेग से तेज, बिल्कुल तीव्र गति से खेला गया ये पुल शॉट, जो बाउंड्री रोप्स के पार गेंद को पहुंचाएगा. मरीना का हौसला, जो गेंदबाजी में तो बहुत कमाल का था, 2 विकेट चटकाए थे, अब ऐसा लग रहा है कि वही मोमेंटम वो अपने बल्लेबाजी में भी लेके आई है.
0: That was a very ordinary ball from Kranti. She just bowled it shorter, and that shot, it was more like an inviting shot. Marina was ready and she just pulled it away in a flash. No second thoughts about it.

0: in batting, at least on that occasion.
1: निमंत्रण भेजा गया था क्रांति के द्वारा कि शॉर्ट गेंद का फायदा उठाए. गेंद इस बार गुड लेंथ की थी, गति थोड़ी सी कम की गई थी, हरकत कोई नहीं की, सीधे विकेट कीपर ऋचा घोष के दस्तानों में जाके समाप्त हुई है. अगर हांगकांग की टीम अपने तरकश के हर एक तीर को खंगालेगी तो उन्हें संभवतः जो सबसे बेहतरीन लगेगा वो यही खिलाड़ी है मरीना, जिन्होंने गेंदबाजी में दो सफलताएं ली थी. बल्लेबाजी में शुरुआती जो रंग ढंग नजर आए वो ठीक ठाक से हैं. चार गेंदे, पांच रन इनके बल्ले से अब तक बने हैं. अगली गेंद यॉर्क कराया, जड़ों में गेंद, ज्यादा कुछ करने का अवसर मरीना के पास था नहीं. भाग्यशाली है कि गेंद उनके पैड्स पे जाके समाप्त नहीं हुई, अन्यथा जो थोड़ी बहुत फिजिक्स हमने पड़ी है उसके चलते गेंद पैड से टकरा के स्टंप्स में भी जाके समाप्त हो सकती थी.
0: Exactly, and that is one kind of dismissal as a batter you don't want to see. That's very unfortunate, but very good game reading there from Kranti Gaur. She saw the batter coming down the ground, and that is why she had to change the length of the yorker. Brilliant bit of thinking, on point thinking.
1: 36-3, Hong Kong ka score. 11th over ki 5th gain. Reverse sweep karne ki koshish. Sampark bahut acha nahi. Balle ke sticker ke aaspaas gain ja ke takrai hai. इस वजह से मरीना को रन कोई मिलेगा नहीं. इस ओवर में एक चौका जरूर आया था, उसके अतिरिक्त चार डॉट गेंदे आ चुकी है. 194 के विशाल का लक्ष्य का पीछा करते हुए हांगकांग की टीम आधा जो खेल खेला जा चुका है, या कह लीजिए कि अब आधे से ज्यादा खेल खेला जा चुका है, वह 36 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे. डॉट हांगकांग की टीम ने 43 खेल ली है और अभी तो 11th ओवर की समाप्ति या समापन बचा है. वहीं भारत ने पूरी पारी में 43 डॉट गेंदे खेली थी. हमारे स्कोरर शमा सने, शुक्रिया इस आंकड़े के लिए. इसी के साथ ओवर भी समाप्त होगा. डॉट कोई रन नहीं, 11 ओवर्स के बाद 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे.
0: Well, just to give you a quick recap, India, they batted first, 193 for 5 is what they posted, but the woman who controlled it all was Shriti Mandhana. 124 of 64, and she has struck 7 sixes today. That was the second highest by an Indian ever in a T20 innings. The highest belongs to Harmanpreet Kaur, that came against New Zealand in 2018. And once again, we would like to thank Manoj Kumar, our statistician, for providing us with such an incredible trivia. Prema Rawat, 2 overs, 1 for 8, got the crucial wicket of their captain Natasha Miles. We'll have to figure out how she bowls. She'll be going round the wicket to Carey. Carey goes down the ground and she holds out to Shafali Verma at long on. No problems whatsoever. Regulation take. And Carey Chan, way too tempted to play the shot over Shafali's head. Doesn't get any connection. Comes from the toe end of the bat and she'll have to walk back to the pavilion.
1: Swing ke saath khela gaya shot tha. Jis kon se gend aa rahi thi. स्वीप करने के बनिस्पत स्लॉग शॉट खेलने का अवसर एक बेहतर विकल्प है, ऐसा सोचा बल्लेबाज ने. लेकिन शेफाली वर्मा ने कोई गलती नहीं की, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं हिलना पड़ा. सीधे गेंद आके उनके हाथ में जाके समाप्त हुई और जश्न मनाने का मौका भारतीय गेंदबाजों को. 4th विकेट पतित हो चुका है. कैरी चैन सिर्फ 1 बना के गई है. 17 का स्ट्राइक रेट, इससे साधारण बल्लेबाजी आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकती. अपने आप से थोड़े से हताश जरूर होंगे ये बल्लेबाज.
0: It's not just that, it's also the body language. Now if you take a look at Hong Kong, ever since Yasmin Daswani has fallen, the other batters who have come, they have been kind of confused about what their approach should be. And truth be told, Natasha Miles came in with that solidity. She had her eyes set that this is what I'm going to do and this is what I would want my team to do. Unfortunately, ever since Natasha has also walked back to the pavilion, it's been more of a come and go thing for Hong Kong. Mariam Bibi is the new batter in. 36 for 4, 11.1 overs for Hong Kong, and the required rate simply keeps on climbing higher and higher. Prema Rawat back to over the wicket, and once again that extra bit of bounce that's proving to be quite an unraveling for the batters. It proved to be the unraveling of Natasha Miles as well. Mariam Bibi, 109 matches, 735 runs, strike rate of 89, best of 43 that came against China in Hangzhou. 11.2 overs and Prema Rawat, what a spell this has been. 2 for 8 from 2.2. That is what you would expect from your youngsters. And given the rise, given the meteoric rise of Prema, India will have another weapon in that arsenal of theirs. And great thinking by Prema as well. Just the discipline with which she is bowling, Ayush.
1: और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जो टप्पा उन्होंने पकड़ के रखा है उसमें एक ऐसा द्वंद है. कुछ गेंदे अचानक से घूम रही है, कुछ गेंदे बिल्कुल सीधी आ रही है, तो बल्लेबाज असमंजस में.
0: Absolutely, and this one was the one that going away, but Mariam actually did well to get behind the line of the ball, pushed it to the fielder at short mid wicket for another dot ball. So

0: about this over. 4 dots. I mean, 3 dots and 1 wicket. So that will also come as a dot ball. Goes without saying. Prema now hunting for a first maiden over of this contest. 158 needed of 50 balls. Once again, pushed away. Short mid-wicket stationed. Won't get anything for that. Another dot ball. This is very good bowling from Prema Rawat. What a star she's turned out to be. India getting support from all nook and crannies of the park. That is what India is all about. The collective strength. It's about getting the unity in play. That has been swept away. Fine leg, not inside the circle. Fine leg, not on the fence as well. That means there'll be another boundary. And Hong Kong will get a welcome relief. At the end of 12 overs, they will move to 40 for the loss of 4.
1: एक ओवर जिसकी शुरुआत एक विकेट के साथ हुई थी, उसका खात्मा, उसका समापन एक चौके के साथ हुआ है. मरियम के बल्ले से पहली बाउंड्री इस मुकाबले की आई और इसी के चलते थोड़ी सी खुश, थोड़ी सी राहत की सांस उन्होंने ली होगी. और हो सकता है कि जो मानसिक लक्ष्य है वो हांगकांग का बदल गया हो. संभवतः वो इस मुकाबले को जीतने के लिए ना खेले बल्कि हर एक बल्लेबाज कुछ अच्छी गेंदों का सामना करने के लिए आए. जिस तरीके की लेग स्पिन की गेंदबाजी भारतीय टीम के पास है, जो स्पिनर्स का काफिला भारत लेके इस पूरे संस्करण में उतरा है, संभवतः इससे बढ़िया लर्निंग या कह लीजिए कि सीखने योग्य कोई और चीज हांगकांग के पास होगी नहीं. पिछली 30 गेंदों में 19 रन बना के 3 विकेट हांगकांग की टीम गंवा चुकी है. 12 ओवर्स की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे है. पर यदि आपकी निगाहें इस डगआउट की तरफ जाती तो आपको समझ में आता कि कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसके चेहरे पे खुशी की रंगत ना हो. कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मायूस हो. हम अपनी आवाज के माध्यम से जितना हो सके उस कहानी को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नैन सुख प्राप्ति है वो नजारों को देख के नजर आती है कि आपकी टीम उस मुकाबले को गंवा रही है. लेकिन धरातल की हकीकत आपको पता है कि आप इतने ज्यादा लंबे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर नहीं खेल पाए और वो भी 7 दफे एशिया कप की विनर टीम के सामने है.
0: एग्जैक्टली. एंड द थिंग इज, यू नो, वी से दैट इट्स अबाउट एंजॉयिंग योर क्रिकेट.
1: अगली गेंद स्वीप करने की कोशिश थी, बाहरी किनारा लगा, भारतीय विकेटकीपर के ऊपर से गेंद चली गई. अच्छी बात यह कि एक रन के अतिरिक्त कुछ मिलेगा नहीं. इस ओवर में अब तक 2 गेंदें हो चुकी है. बाएं हाथ की गेंदबाज अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रही है. पहले ही अपना मानस बना लिया था कि वो रिवर्स स्वीप के लिए चली जाएंगी. ग्लव्स पे जाके गेंद टकराती है. उछाल थोड़ा सा ज्यादा, अगर पकड़ा जाता तो एक और विकेट भारत को मिल जाता. लेकिन अगर और मगर की इस डगर पे स्कोर 41-4 के नुकसान पे. 13वां ओवर गतिमान. इस ओवर में 2 डॉट, 1 डॉट और 1 रन. उससे पहले पिछले ओवर में कुछ डॉट्स थी जिनकी संख्या 4 थी. एक चौका आया, एक विकेट भी भारतीय टीम ने चटकाया. 153 रन की दरकार है, 45 गेंदें बची है. ये बिल्कुल वैसा है रोहित जैसा, मान लीजिए पूरे साल पढ़ाई ना करने के बाद एग्जाम की आखिरी शाम आप सब किताबें खोल के बैठे.
0: यू आर मेकिंग मी रिमाइंड माई चाइल्डहुड. वंस अगेन फ्लिक्ड ऑन द लेग साइड बाय मरियम बीबी, जस्ट दैट सिंगल. But again, with that being said, Hong Kong, it's just that the slow start has got to them so badly, Ayush, unfortunately. Now even trying to break free is a challenge. They've lost 4 wickets. They have lost their senior most cricketers. Now from here on, if they have to turn things around, at least put up a fight, they'll have to be confident. They'll have to go all guns blazing.
1: Niji taur pe, बल्लेबाज की कोशिश ये होती है कि जितना ज्यादा स्कोर आप अपने बल्ले से करें. इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर को पार किया 2 बाउंसेस के साथ. आखिरकार एक और राहत दिलाने वाला चौका. मरीना, जिनका बल्ला थोड़ा सा जूझता हुआ नजर आ रहा था, वो गेंद की दिशा और दशा समझ ही नहीं पा रही थी. उन्होंने एक सही संपर्क साधते हुए अपने लिए बाउंड्री खोजी.
0: That is a very good shot and possibly the best shot of the Hong Kong innings. Comes down the track and gives herself enough room to swing her bat as well. The long on fielder was slightly squarer and she plays it very fine. Not that it'll change the equation overwhelmingly, but then definitely it'll do a lot of good for her confidence.
1: 13वें ओवर की आखिरी गेंद बची है. 46 रन 4 विकेट के नुकसान पे हांगकांग का स्कोर है. कोई खिलाड़ी स्लिप में मौजूद नहीं. अराउंड द विकेट आते हुए वो गेंद जिसे फिर खेल दिया गया है स्क्वायर लेग मिड विकेट के मध्य से 4 रन के लिए. 2 बैक टू बैक बाउंड्री श्री के इस ओवर में आई है और इसी के साथ हांगकांग की टीम ने अपना अर्धशतक पूरा किया इस टूर्नामेंट में. इस संस्करण में 134वां चौका जो हांगकांग के बल्लेबाजों के नाम रहेगा. और अर्धशतक अपना पूरा करना, 4 विकेट को गंवा के एक ओवर में 2 चौके लगा के, थोड़ा सा तो बेहतर प्रदर्शन रहा है पिछली कुछ 2 गेंदों पे.
0: Absolutely. And Marina Lamplough, she now looks like a woman who's got a panache, right? And it was slightly fuller. It was tossed up exactly where she loves it and eventually managed to get that crucial boundary in place. Definitely Hong Kong, they'll be hoping that they can get a few

0: को निकालते हैं, बल्लेबाज को अमूमन समझ नहीं आता कि गेंद की गति कम कब हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा हाथ उसी गति से घूमता है, कंधे की ताकत वैसी ही लगती है, और जो आपका फोरआर्म है, जो आपके हाथ का बाजू का आगे वाला हिस्सा है, उसमें भी कोई गिरावट नहीं होती, बस आप कलाई से गति को थोड़ा सा धीमे कर देते हैं। भारत अब तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुका है, जिनमें से नंदिनी शर्मा को 2 सफलताएं मिली है, दीप्ति शर्मा के नाम 1 विकेट आया था, प्रेमा रावत ने 3 ओवर्स में 12 रन खर्च करके 2 विकेट चटकाए हैं। शानजीन बल्लेबाजी कर रही है, 1 रन उनके बल्ले से है। मरीना जो कि बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा समय हो चुका है, अनुमानित तौर पे 12 गेंदों में 14 रन कोई बल्लेबाज बना रहा है, तो आप कह लीजिए कि उसने क्रीज पे थोड़ा वक्त बिता लिया है। जॉयलीन रुचिता नए बल्लेबाजों में आने वाले बल्लेबाज हैं, जिनका स्ट्राइक रेट का आंकड़ा उनके पक्ष में इतना जाता नहीं है, हालांकि अमूमन जीवन में सबसे बड़ी चीज यही है, लोग तुलना करते हैं कि आपके आसपास आपके इर्द गिर्द कौन कहां है, पर धरातल की हकीकत रोहित मुझे ऐसा लगता है कि यह है कि आपने शुरू कहां से किया था। हांगकांग की टीम वैसे भी बैक सीट पे थी जब इस मुकाबले को शुरू करने के लिए आई, तो उनकी तुलना ये नहीं बनती कि भारत किस तरीके की बल्लेबाजी करता है, क्या स्कोर करता है। हांगकांग के जहन में सिर्फ यही चलना चाहिए कि आप कितने बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 14 ओवर्स जा चुके हैं, 53 रन 5 विकेट के नुकसान पे, यानी कि आधी पारी डगआउट में जा चुकी है, आधा खेमा हांगकांग का डगआउट में बैठ चुका है, 36 गेंदों में 141 रनों की दरकार है। श्री चरणी अगले ओवर के लिए आई है, अब तक 14 उन्होंने खर्च कर दिए हैं। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, उसे खेल दिया, फाइन लेग पे कोई फील्डर नहीं, थोड़ी सी मशक्कत बैकवर्ड स्क्वायर लेग को करनी पड़ी है, और क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी है, बड़ी आसानी से फील्डर वहां तक पहुंच जाएगी, सिर्फ एक सिंगल उसी बीच आएगा, तो पहली गेंद पे एक सिंगल खर्च किया है। अभी भी 35 गेंदों में 140 दौड़ों की आवश्यकता और है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर कुछ प्रकार की चर्चाएं अवश्य कर रही है श्री से कि किस प्रकार गेंदबाजी की जाए, कैसा संतुलन होना चाहिए। ऑफसाइड पैक है, डीप बैकवर्ड पॉइंट को अब अंदर बुला लिया गया है, एक खिलाड़ी पॉइंट पे नजर आ रहा है, एक खिलाड़ी कवर पे नजर आ रहा है, मिड ऑफ की दिशा में खुद भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत है, जो अब चहलकर्मी करती हुई थोड़ी सी स्क्वायरिश हुई है। मरीना स्ट्राइक पे है, गेंद आने से पहले ही अपना मानस बना लिया था कि वो विकेट कीपर के सर के ऊपर से खेलना चाहेंगी, हालांकि संपर्क वैसा हुआ नहीं, एक और डॉट गेंद। कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऑर्थोडॉक्स बल्लेबाजी कर रहे हो, आपका काम ना चले तो फिर आप टेढ़े रास्ते चलने लगते हैं।
1: The thing with Hong Kong is they have played quite a few ram shots or maybe a reverse, and most of them haven't been connected. So not really sure what's this plan of going unconventional. It's okay, it looks good in terms of cricket, but if you're not connecting, the problem is you are inviting trouble for yourself, because as we say, conventional, unconventional shots, they are fairly good to see in terms of your vision. But again, if your base is not strong, then there are a lot of challenges that come into the picture.
0: पिछला शॉट भी कुछ ऐसा ही था, मानस बना लिया था विकेट कीपर के सर के ऊपर से खेलने के लिए, लेकिन कोई संपर्क नहीं। हालांकि भारतीय विकेट कीपर ऋचा घोष थोड़ी सी चर्चाओं में मग्न है, संभवतः फिजियो को वहां पे बुलाया गया था या कोचिंग स्टाफ से कोई सदस्य आके उनसे बात कर रहे थे। 14.2 54 रन 5 विकेट का नुकसान, मरीना स्ट्राइक पे होंगी, और क्या ऐसी परिस्थिति में कुछ और जोखिम लेना चाहेंगी मरीना, ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि पिछली 2 गेंदों पे उन्होंने बहुत सीधे, बहुत सटीक, या कह लीजिए कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स जिन्हें कहा जाता है, वैसे नहीं खेले हैं, थोड़े विचित्र और अविश्वसनीय शॉट्स पे विश्वास ज्यादा जताया है मरीना। जाहिर सी बात है कि सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और एक अच्छी ऑलराउंडर के तौर पर उभरी है, जहां तक हांगकांग की टीम का सवाल, 2 विकेट चटकाए, उसके साथ रन भी बल्ले से थोड़े बहुत बनाने की कोशिश कर रही है। श्री अगली गेंद के साथ बाएं हाथ की गेंदबाज है, अराउंड द विकेट गेंदबाजी करती है और शुरुआत थोड़ी अलग छोर से करती है, ऐसा लगता है अराउंड द विकेट आएगी, स्टंपिंग करने की कोशिश की गई है, जबरदस्त अपील जरूर, बेल स्टॉप है, लेकिन ऐसा दिख रहा है यहां से कि पांव संभवतः क्रीज में टिके, ले जाया गया है थर्ड एम्पायर की ओर।
1: Exactly, from the initial perspective, looked like she hasn't got her foot lifted in the air. She was fairly stationed. But again, it never really hurts to check. When we have the technology, we should always go for it. It's fairly a fair ball, fairly behind that popping crease, and there you go, a big swing from Lamplong. Oh, in fact, she did come out of the crease. And now this can actually be a very close call, because what we can see tells us that it's about how much of that boot is behind that popping crease, because that's what will decide everything. However, from this angle, that's behind the wicket, it looks like she's all right.
0: कई मीटर्स के इस मैदान पे कहानी जो है वो मिलीमीटर्स में रह जाती है यदि आप रन आउट हो रहे हो तो, और जो दृश्य हमें यहाँ से नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रगाढ़ तो नहीं, लेकिन हाँ, बल्लेबाज संभवतः क्रीज में है, आखिरी क्षण

0: होते होते उनका पांव जो दायां पांव है जो पिछला पांव है वो क्रीज में आके समाप्त हुआ जब तक भारतीय विकेटकीपर ने बेल्स को ऑफ करने की कोशिश की। औपचारिक तौर पे अभी भी निर्णय आया नहीं है, हम औपचारिक निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हमारे सामने लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पे अब हरे कलर के अक्षरों में नॉट आउट लिखा आ चुका है, यानी कि हांगकांग को एक और झटका नहीं लगेगा। तीन गेंदे इस ओवर में बची है। श्री ने शुरुआत की पहली गेंद पे एक सिंगल दिया था, उसके बाद दो डॉट गेंदे आई थी। दबाव मरीना पे होगा ही होगा क्योंकि जिस तरीके के शॉट का सिलेक्शन रहा है, विकेट तो आना ही था। डाइव लगाते हुए ये कैच पकड़ा गया, एक और लीडिंग एज, एक और सफलता। श्री जिनके नाम अब तक कोई विकेट नहीं था उन्होंने भी अपना डंका बजा लिया है। हांगकांग की टीम के लिए परिस्थितियां बद से बदतर हो रही है। मरीना जो एक अच्छी लय में नजर आ रही थी 14 रन बना के उन्हें भी डगआउट पे भेजा, चेक शॉट खेला बारी किनारा, और इस प्रकार की डाइव्स आपको भारतीय फील्डर्स से विशेषकर की मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत नजर आती हैं।
1: Exactly, and it was more of the one that skidded off the surface. Marina Lamplo departs for 14 or 15. It skidded off the surface. It was slightly quicker. And also that extra bit of bounce generated by Sri Charani. She can hit the deck hard enough. Fairly tall bowler, got a great high release point. And that's exactly what she's brought to play, turning away from Marina Lamplo. And she's just played it on the upish. But what a catch by Nandini Sharma. Nothing that she'll be doing can be wrong. In fact, India's fielding and bowling in this tournament so far has been absolutely immaculate, Ayush.
0: एक जमाना था, एक दौर था जब कहा जाता था कि तेज गेंदबाज बहुत अच्छे फील्डर्स नहीं होते, लेकिन अब क्रिकेट थ्री डायमेंशनल खेल है, आपको बल्लेबाजी भी अच्छी करनी है, गेंदबाजी भी अच्छी करनी है और फील्डिंग में भी अपना डंका बजाना है, जो कि नंदिनी शर्मा करती नजर आई। ना सिर्फ भारत के लिए अच्छी गेंदबाजी की, ना सिर्फ दो विकेट्स उन्होंने चटके, बल्कि फील्डिंग में अपना योगदान देके अपने आप को बहुत परिपक्व खिलाड़ी साबित किया है। नए बल्लेबाज के तौर पर एलिसन स्यू अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रही है। 124 रन उनके बल्ले से अब तक बने हैं, यानी कि बल्लेबाजी करने का ज्यादा तजुर्बा उन्हें नहीं है। और ये पहली गेंद को देख के हमें भी समझ में आया था, टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल था, उन्होंने वैसे ही गेंद को देखा जैसे दर्शक देख रहे थे विकेट कीपर के दस्तानों में जाते जाते। ओवर की आखिरी गेंद, श्री पिछला विकेट बहुत बड़ा था मरीना का, इस बार संपर्क थोड़ा सा अच्छा है, मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेल दिया, पूरी तरीके से पुल नहीं था, ना ही पूरी तरीके से स्वीप था, उससे बल्लेबाज एलिसन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। महत्वपूर्ण उनके लिए यह है कि खाता खुल गया उनका, 15 ओवर्स इसी बीच जा चुके हैं, 55 रन 6 विकेट के नुकसान पे हांगकांग फिलहाल एक बहुत ही जटिल परिस्थिति में है।
1: Absolutely, 139 runs required from the last 30 balls, almost next to impossible. However, again, it's for Hong Kong. They kind of know that they are not reaching there unless there's a massive miracle that can just, you know, entirely turn around the course of the game. But it is like me being ultra optimistic. Yeah, but then again, truth be told, they are nowhere close to that equation. Sri Charani now doing an incredible job. Most wickets for her in women's T20Is for India, in fact. She's got 30 wickets. Deepti Sharma, 20. Nandini Sharma, 12. These numbers are in 2026. Deepti Sharma comes back for a third over and gets a wicket straight away. Looped it up. Allison gets beaten by the flight. The ball turns slightly and goes.

0: जब आप वापस डगआउट में जाएंगे तो सिर्फ ये देख रहे होंगे कि कितने बड़े फासले से इस मुकाबले को जीता है, सिर्फ 2 विकेट। और यदि भारत को यह मिल जाए तो यह मुकाबला कभी भी समाप्त हो सकता है, और 2 गेंदें तो इस ओवर में बची है।
1: एग्जैक्टली, न्यू बैटर कम्स इन एंड इफ दीप्ति कैन क्लेम 2 and 2 इट कैन बी अ हैट्रिक, बट दैट वोंट बी द केस। जॉयलिन डज वेल, इट वॉज स्लाइटली स्लोअर बॉल स्टक टू द सर्फेस एंड जॉयलिन पिक्ड इट अप and played it to Shefali Verma at long on. She also gets off the mark with this single. Once again, a quick look at that wicket there. That was the straighter one. No chance whatsoever for Ikra to try and swing her bat. She does so and ends up skying it. That one was on the pads, plays it straight to the short fine fielder. Might be another. Great throw there. Richa Ghosh dislodges the bails and we will be taking a little bit of a look as it has been referred to the TV umpire. Once again, trouble for Hong Kong. And they are absolutely being outplayed right now. We'll take a look once again. Richa, clean collection. And from what we can see, that is the end of another wicket. Another one bites the dust is what we say, Ayush.
0: Cricket mein out hone ke 10 tarike hote hain aur run out ek tarika chuna. Halanki baal-baal bachi jati, lekin jo drishya hamare samne maujood badi screen mein hame dikh rahe hain, wo yahi hai ki बल्लेबाज को आउट करार दिया जाएगा, हालांकि औपचारिक निर्णय का इंतजार अभी भी किया जा रहा है।
1: Exactly, we are waiting for the final decision to light up the board, but what a performance this has been from India, and it's been an all-round display. Yes, again, there will be a few frowns about the batting unit, but with that being said, if this is the size of the victory that India can garner just ahead of their crucial battle against Pakistan, the confidence will be at an all-time high. Richa Ghosh is confident, and in fact, what we saw on our screen, it fairly looks like that it will be a goner for Thailand. However, the formal call is still to be made, and that's exactly what we are waiting for. It's just a second look at things for trying to ensure the fact that Richa's collection was clean enough. Because again, at the same time, the keeper's collection needs to be clean enough in order to dislodge the bails. And she's made no mistake. From the angle that we have right now, we have a fairly straighter look at Richa Ghosh's collection. And looks like the batter, looks like she's short of the crease. However, we'll wait for the third umpire's call, because that is what will decide that what is going to be the fate of this referral.
0: जितने एंगल संभव थे हर एक एंगल से देख लिया गया है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बल्लेबाज शॉट है, ये आउट दिया जा सकता है, लेकिन थर्ड एम्पायर अपना वक्त ले रही है निर्णय लेने में, थोड़ा ज्यादा वक्त लिया है। 3 से 4 दफे अलग अलग एंगल को स्विच करके देखा गया और संभवतः उनका निर्णय अब तैयार है। बड़ी स्क्रीन पे जो हमारे सामने लगी है उसमें अब हमें आउट नजर आ रहा है, तो एक और विकेट भारत ने चटक लिया है। 56 रन पे 9 विकेट जा चुके हैं अब तक, 56, क्या 57 बन पाएंगे?
1: That is the million-dollar question. And the other question is, will Hong Kong be able to cross what Thailand managed to put up against India? Because it looks fairly unlikely. And Dipti Sharma will be delighted. Joylin Kaur asking that if she's the one who's going to go back. Not really sure. She's having a chat with the ump, possibly about what really went on. She's kind of having that incredulous look on her face. But as the formalities say, that she'll have to walk back to the pavilion. But Ayush, once again, how would you rate this performance from India, right from the start until now?
0: पहले तो भारतीय बल्लेबाजी की सराहना करनी पड़ेगी जो ओपनर्स थे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत को अपने गिरबान में जागना पड़ेगा जहां तक मिडिल ऑर्डर का सवाल है, क्योंकि हमने देखा मिडिल ऑर्डर ने ज्यादा रन बटोरे नहीं, सिर्फ 31 रन पे 3 विकेट भारत ने अपने मिडिल ओवर्स में गंवाए थे। ओपनर्स ज्यादा देर तक भारतीय टीम का साथ निभा नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत में कभी भी भारत ने अगर 2 बड़े झटके झेल लिए तो फिर मुश्किलात का सबब बनता है। हालांकि हांगकांग के खेमे के विरुद्ध भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी सटीक लाइन और लेंथ का प्रदर्शन किया था। हांगकांग के अतिरिक्त कोई और टीम भी होती तो ऐसा कहना गलत नहीं है कि भारत का प्रभावशाली प्रदर्शन गेंदबाजी में होता। एक और सटीक टिप्पे के साथ, श्री ने अपने इस ओवर की शुरुआत की है, अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रही थी, गेंद में ज्यादा कोई हरकत नहीं, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, लेकिन इससे पिछले ओवर में दीप्ति ने जो सफलताएं अपने नाम की थी, थोड़ी सी असमंजस वाला एक रनआउट भी हमारे समक्ष आया था, जहां सिर्फ 1 विकेट और भारत को चाहिए और वो इस मुकाबले को अपनी गिरफ्त में कर लेगा। सवाल ये कि कितने बड़े स्कोर से भारत इस मुकाबले को जीत सकती है, उसी बीच एक अपील की गई है। शानजीन जो कि स्ट्राइक पे हैं, उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल किया था, ऋचा घोष ने बेल्स को अपनी जगह से हटा दिया। तीसरे एम्पायर का रोक एक बार फिर किया जा रहा है। क्या निर्णय होगा, क्या भारत इस पारी को यहीं समाप्त करने में कामयाब होगी, नो

0: बॉल तो नहीं है, क्रीज के बहुत पीछे पांव था, बल्लेबाज का पांव भी क्रीज से बाहर गया जब उन्होंने हवा में पांव को रखा और नीचे लाने की कोशिश की। संभावनाएं बहुत अधिक है कि तब तक ऋचा घोष अपना वो कार्य कर चुकी थी जिसके लिए अमूमन विकेट कीपर्स जाने जाते हैं। हालांकि औपचारिक इशारे का इंतजार अभी भी बना है। सतरिका जाकिर जैसी जो कि टीवी एम्पायर की भूमिका पे है, आज वैसे भी थोड़ा वक्त लिया है उन्होंने कुछ निर्णय देने में, यहां भी वही वक्त लिया जा रहा है।
1: It can be touch and go as well, fairly close. It's about that little frame now. And out is the decision, which means India have secured their second win. 137 runs victory in a T20 game. That's how you spell out domination in caps, Ayush.
0: स्मृति मंधाना ने कह लीजिए कि अकेले हांगकांग के खेमे को यह मुकाबला हरा दिया। 124 उनके बल्ले से आए थे तो हांगकांग की टीम इस मुकाबले में सिर्फ 56 जोड़ पाई और 137 के विशाल काय मार्जिन से भारत ने इस मुकाबले को जीता है। जो नेट रन रेट कुछ समय पहले या कह लीजिए इस मुकाबले की शुरुआत से पहले हमें 4 कुछ नजर आ रही थी, वो अब एक बहुत बड़ी छलांग लगा लेगी। भारतीय खेमा पूरी तरीके से खुश है। स्मृति मंधाना के चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कुराहट नजर आई थी। नंदिनी की शाम बहुत अच्छी रही है, ना सिर्फ विकेट चटका है बल्कि एक कमाल का कैच उन्होंने पकड़ा था और इसी के चलते भारत ने हांगकांग को शिकस्त दी। भारत ने जब गेंदबाजी की तो कुल मिला के 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। क्रांति गौड़ को आज कोई सफलता मिली नहीं, नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट चटकाए थे, श्रीचरणी को 2 विकेट मिलते हैं, दीप्ति शर्मा आज 3 विकेट लेकर विश्व
2: के साथ में विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
3: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
4: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
2: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान

0: युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ. जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अभी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तरीके से गेंदबाजी, शफाली वर्मा का सिर्फ एक ओवर हुआ, उन्होंने 4 रन दिए। उसके बाद चरनी का हम देखे 3.2 ओवर 16 रन उन्होंने दिए। दीप्ति शर्मा 3 ओवर 9 रन उन्होंने दिए, देखे 3 विकेट चटकाए। उसके बाद प्रेमा रावत 3 ओवर 12 रन उन्होंने दिए। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि शफाली वर्मा जो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रही थी, एक ओवर में सिर्फ 4 ही रन उन्होंने दिए थे, और शायद अगर आज उन्हें 1-2 ओवर और मिलते तो एज एन ऑलराउंडर आपका ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है सामने जब बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग टीम नहीं होती। और ऐसे मौके पर आप जब अपने बॉलर को जो ऑलरेडी बैट से परफॉर्म कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, लेकिन अगर आप उन्हें और बॉलिंग देते हैं तो वो और निखर के आते हैं, क्योंकि फील्डिंग में आप देखिए काफी हाई पोटेंशियल कैचेस उन्होंने लिए आज।
2: आप की बात बिल्कुल जायज है, लेकिन अगर एक ऑलराउंडर वहां पे अगर बॉलिंग के लिए देख कर रहा है और वहां पे वो ज्यादा रन नहीं दे रहा है तो इस टाइमिंग के हिसाब से जो हमारा कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, वो ये देखती है कि सबसे पहले कि हमारे जो बॉलर्स हैं, मेन बॉलर्स, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए आने वाले मुकाबले के लिए। एंड वो अगर कॉन्फिडेंस उन हमारे मेन बॉलर्स को नहीं मिलेगा, वो उनकी लाइन लेंथ और वो उस तरीके से पकड़ के बॉल नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं लैक हमारी टीम का ही होगा। तो दैट्स वाई एक ये हो सकता है कि ये सोच के उन्होंने बॉलर्स पे ज़्यादा भरोसा दिखाया। एंड शफाली वर्मा, जैसे आपने बात करी ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर एक ऐसा बॉलर होता है जो कहीं, जो वहां यूज किया जाता है जहां पे विकेट ना निकले। और अगर उसको अभी से ही हम ओपन करके दिखा देंगे, आने वाले हमारे क्वार्टर फाइनल्स भी होने वाले हैं एंड सेमीफाइनल फिर सब होने वाले, तो उसमें वो अगर हम उस बॉलर को ओवर कर दिखा देंगे कि किस तरीके से वो बॉल कर रही है, कैसे स्किट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट नहीं मिलेगा हमारी इंडियन टीम को।
3: मनोज, दुबई में जो आज मुकाबला हुआ है, कई रिकॉर्ड्स बने। जब बैटिंग की बात कर रहे थे तो स्मृति के हमने रिकॉर्ड की चर्चा की, लेकिन दीप्ति शर्मा आज एक बार फिर महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर बन गई हैं। साथ ही साथ श्री चरनी की भी बात करें तो 2026 में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली वो बॉलर बन गई हैं। आज उन्होंने जो विकेट ली उसको मिलाकर 30 विकेट उनके नाम हो चुके हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों परफॉर्मेंस को?
4: देखिए, अगर दीप्ति शर्मा की बात करें तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के अनुकूल गेंदबाजी की है, उन्होंने कोई ज्यादा प्रयोग नहीं किए। उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, दीप्ति शर्मा जब भी बॉलिंग करने आती हैं, ज्यादा स्पिन के बजाय बॉलिंग एंगल पर ज्यादा उनका जोर होता है, विविधता पर ज्यादा जोर होता है। वो उस तरह से नहीं था जैसे प्रेमा रावत को शार्प टर्न मिला था, इनका वो शार्प टर्न नहीं था, लेकिन अपने स्ट्रेंथ के अनुकूल गेंदबाजी करना, ऑफ स्पिन गेंदबाजी, क्रॉस सीम, और जो जिस तरह से इनकी गेंदबाजी है, मुझे लगता है उसी का उन्होंने और ज्यादा विस्तार दिया है। उसका उन्हें पारितोषिक भी मिला लगातार विकेट चटकाने के तौर पर। इसी तरीके से आपने अभी जिक्र किया श्री चरनी का, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, भाई T20 जो रैंकिंग है ICC की, उसमें दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी है और अपनी ख्याति के अनुकूल इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन भी किया है। जैसा आपने बताया कि लगातार विकेट चटका रही हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, ये एक ऐसी प्लेयर है, हर ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, इनको

0: I could get away with a few of the full tosses today, but yeah, I would say that, and I think any top order batter would say that sometimes full tosses can go for a six, or you can get out.
1: Brilliant innings, and you're an inspiration for so many people around. Go well, and all the best for the games.
0: Thank you so much.
1: Thank you. Now I would like to invite the winning captain from India, Harmanpreet Kaur. Please sign the match ball first, and then we can have a chat with you. Aman, congratulations picking up the spot in the semis. Obviously, talking about tonight's game, it's a good win in terms of the margin, but your batting order, especially the middle one, would be a concern.
2: Well, I think I'll start with the positives. I think Smriti and Shefali batted really well. I think in the middle over, yes, that's why we wanted to bat, to get used to these conditions. I know I think today's pitch was better than how it played the previous game, but I think it's all about, spending some time on the pitch and getting used to these conditions, because we are not that much aware of these conditions. But I think still we were able to manage what we wanted as a team, close to 200, and I think later on bowler did great job for us.
1: Given the conditions, you went unchanged. So is it safe to say that you've sorted with the 11, or you want to check the bench strength?
2: Well, I think we are pretty much sorted, but still, we have another one more day to think about if we want to, change something, or if we want someone else to come up and take the responsibility. But I think for now we are pretty much sorted.
1: We're talking about Smriti Mandhana, the top run scorer, Deepti Sharma, the top wicket taker. How does these things make easier as a captain?
2: Well, I think as a captain, I'm grateful that these players play for my country, and I think leading them is always a great opportunity, and good to see that someone like Smriti who's getting the runs and playing that crucial inning for the team, and Deepti is somebody who is keep doing the hard work whenever team needed, and great to see again she got us the crucial wickets.
1: And lastly, I would like to ask you to say a few words for the Hong Kong China team, because obviously they've played against you and they've shown some potential.
2: Yes, definitely. I think the one thing which I like really about them, the way they celebrate themselves on the field, I think that's a great learning, because when you keep playing hard cricket, one thing you always forget to enjoy yourself on the field. But whenever we see them playing, no matter whatever the result, I think they enjoy each and every single moment on the field. I think that's a great learning for us also. I think when you're playing hard cricket, you have to keep enjoying yourself on the field. So yeah, I think great playing against them.
1: Very well done, and go well for the future games. Thank you so much.
3: तो एक तरफ भारतीय खेमे में जीतने का उत्साह है, तो दूसरी तरफ हांगकांग हारी जरूर है, लेकिन एक बात की संतुष्टि भी है कि वर्ल्ड क्लास भारतीय टीम का उन्होंने सामना किया, और कुछ हद तक ही सही, उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। क्या कहेंगे मनोज, जिस तरीके से हरमन ने कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि कुछ की प्लेयर्स का चलना राहत की बात है, क्योंकि भारत पहली टीम है इस विमेंस एशिया कप में जिसने नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
4: जी हाँ, बिल्कुल, और उनका कहना बहुत वाजिब भी है, सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं हम लोग, और फिर भी कई अनुत्तरित सवाल हैं, उनका हल हमें ढूंढना होगा अभी, क्योंकि इस मैच में एक टीम 17वें ओवर तक पहुंच जाती है आपके खिलाफ, एक एसोसिएट टीम, और पिछले मैच में कोलैप्स आपका होता है। इसके अलावा नंबर तीन की पोजीशन जो हमने पहले भी जिस पर चर्चा की, वो अभी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, और ठीक है जेमिमा आएंगी या जस्सिका आएंगी तो शायद हम इस उम्मीद में कि समस्या का हल हो जाएगा। फिनिशर कौन होगा हमारा, उसका भी अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है, क्योंकि रिचा भी उस पर बहुत ज्यादा निर्भरता, वो भी बहुत आत्मघाती साबित हो सकती है। तो कुछ एक सवाल है, और भारतीय और प्रतिका जिस पर हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी लेवल वो नहीं है। प्रतिका टैलेंटेड है, टेक्निकली साउंड है, लेकिन T20 हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो कुल मिलाकर अनुत्तरित सवाल है, उसका हमें हल ढूंढना होगा, लेकिन अभी सेमीफाइनल है, फाइनल है, इन दो मैचों में जरूर मैं समझता हूं जब श्रीलंका या संभावित कोई हमारी टीम सामने आएगी, तो इसका हल मैं समझता हूं युद्ध स्तर पर ढूंढना ही होगा हमें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और मुश्किलें वही की वही बनी रहें और हम वन साइडेड मुकाबले जीत कर फूल कर कुप्पा हो जाएं।
3: जी हाँ, अगर श्रोताओं आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और हमारे विशेषज्ञों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर डायल करें 011-2342-1084 और 2342 10

0: 1585 पर आप अपने विचार या सवाल पूछ सकते हैं।
1: वैशाली, गेंदबाजी में आज थोड़ा बेटर एग्जीक्यूशन हो सकता था, क्योंकि हांगकांग जैसे नेशन की हम बात करें, फुल टाइम क्रिकेट प्लेइंग नेशन नहीं है, लेकिन इंडिया जो साल में इतना ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है, आप अक्रॉस फॉर्मेट्स क्रिकेट खेल रहे हैं, WPL की सुविधा है आपके लिए अपने प्लेयर्स को इनहेंस करने के लिए, और इतने डोमिनेंट साइड होने के बाद भी एक फ्रेश साइड आती है और लगभग लगभग 17वें ओवर तक वो खेल जाते हैं, तो आज शायद बॉलिंग में थोड़ा बेटर एग्जीक्यूशन हो सकता था, क्योंकि दीप्ति शर्मा पहले दो ओवर्स में दो विकेट चटका चुकी थी और तीसरा ओवर उनका जो हरमनप्रीत कौर है वो 15वें ओवर में 16वें ओवर में वो लेके आई है, तो शायद उन्हें पहले ही ला के टीम को जल्दी वापस पवेलियन लौटाया जा सकता था।
2: बिल्कुल लौटाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें इकोनॉमी रेट तो वहाँ पे बॉलर्स का सेम नहीं है, कहीं पे किसी का 1 पॉइंट कुछ इकोनॉमी है, किसी की 2 है, ये इकोनॉमी बहुत बेटर है। एंड जो हमारे यंगेस्ट प्लेयर हैं उनको कॉन्फिडेंस देना भी एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई भी है, क्योंकि श्रीचरणी प्रेमा एंड नंदिनी शर्मा, जैसे कि उन्होंने पहली विकेट ली थी, स्किप बॉल करवाई और यॉर्कर दी साथ में, तो ये एक एक्सपीरियंस से ही आता है। अगर जितने आप उस पिच पे टाइम स्पेंड करेंगे, और मैं जैसे बोलती हूँ बैटर के लिए, वैसे ही मैं आज मैं बोलती हूँ कि बॉलर के लिए भी, जितना बॉलिंग आप उस पिच पे करेंगे तो आपको पिच रीडिंग करनी आ जाएगी कि बॉल कैसे, पिच कैसे रिएक्ट कर रही है, तो वो इम्पॉर्टेंट था हमारे यंगेस्ट प्लेयर्स के लिए, यंगेस्ट बॉलर के लिए। अदरवाइज क्योंकि दीप्ति शर्मा ऑलरेडी यहाँ पे खेल चुकी हैं, उनको इस पिच के बारे में आइडिया है, क्रांति गौड भी खेल चुकी है इस ग्राउंड पे, लेकिन बाकी हमारे जितने भी बॉलर्स बचते हैं, चाहे वो प्रेमा हो, नंदिनी हो या फाली वर्मा को, सबको इस पिच का रीड करना बहुत जरूरी था, जिस जो उन्होंने एक उनको वो टाइम दिया उनको रीड करने के लिए, उनको वो ओवर दिया, एंड उसके साथ साथ एक बैटर को रीड करके बॉल डालना, जो हमारी दीप्ति शर्मा कर रही थी, जैसे मनोज जी ने भी बोला कि वो लाइन टू लेंथ बॉल डाल रही थी, एक मोमेंटम वो ब्रेक नहीं करा उन्होंने, वो ब्रेक करना जरूरी था, क्योंकि अगर जो ब्रेक हुआ है वो लास्ट के 15-16 ओवर के अंदर ब्रेक हुआ है, वो पहले ब्रेक हो जाता तो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस और जल्दी खत्म भी हो सकता था ये मैच।
0: भारत ये महिला टीम की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है T20 इंटरनेशनल में। सबसे बड़ी जीत भारत ने 3 जून 2018 को कुआलालंपुर में मलेशिया के अगेंस्ट हासिल की थी। 142 रन से भारत ने वो मैच जीता था। पहले बल्लेबाजी करते हुए उस मैच में भारत ने 3 विकेट पर 169 रन बनाए थे और मलेशिया की पूरी टीम 27 रन पर आउट हो गई थी। तो आज कई रिकॉर्ड्स बने, लेकिन जिस रिकॉर्ड की चर्चा काफी लंबे समय तक होगी मनोज, उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका, गुड इवनिंग, बताएं कहां से आप बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं। जी जी जी
3: पाकिस्तान के अगेंस्ट जब हम खेलेंगे तो कितने रन बनेंगे और कितनी जल्दी हम पाकिस्तान को आउट करेंगे सर?
0: पिछले मैच में स्मृति रन आउट हुई थी, उसकी चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान के मैच की चर्चा हम आगे जरूर करेंगे मनोज, लेकिन जिस रिकॉर्ड की चर्चा काफी लंबे समय तक होगी वो स्मृति मानधना के ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर की 10,880 रन पर वो पहुंच गई हैं। मिताली राज 10,868, लेकिन एक्टिव प्लेयर्स की बात करें तो 5वें नंबर पर इस लिस्ट में है वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर, 10,007 रन है उनके।
4: देखिए जी, उनका रनों के शिखर पर पहुंचना मैं तो यही कहूंगा कि उनको कॉन्फिडेंस देगा और ज्यादा, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ठीक है, विद ड्यू रिगार्ड्स टू हरमनप्रीत कौर, अगर ये सही समय है उनको मौका देने का, यानी स्मृति मानधना को अगर इस वक्त टीम की कमान सौंप दी जाए तो सोने पे सुहागा होगा। अगला वर्ल्ड कप भी आना है और उनको पूरी टीम को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि एक तो ये वजह है, एक्सेलरेशन हो, कमजोर गेंदों को ना बख्शना और अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलना, एक रणनीति बनाना, क्योंकि अगर बीच मैदान में स्मृति मानधना है तो मेरे ख्याल से किसी और दूसरे को कोई और अलग से रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है।

0: ये सारी चीजें जो है उनको बहुत ही अलग साबित करती हैं और माइंडसेट जो है हमारा बहुत पॉजिटिव है, जैसा भी कॉलर ने कहा, तारीफ की इनकी, तो मैं तो यही कहूंगा कि इस प्लेयर पर भरोसा रखो और इनको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का शायद ये सही समय है।
1: और शतकों के मामले में भी वो सबसे ऊपर चली गई हैं, 18वां शतक था उनका, मैग्लैनिंग को पीछे छोड़ा, लेकिन इस लिस्ट में एक्टिव प्लेयर्स काफी ज्यादा हैं। लॉरा वुल्फार्ट हैं 17 शतक के साथ, वेस्ट इंडीज के हेली मैथ्यूज हैं 15 शतक के साथ, और इंग्लैंड की टैमी ब्यूमे भी हैं जो 14 शतक के साथ। यहाँ कॉम्पिटिशन मिलेगा उन्हें,
0: कॉम्पिटिशन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन स्मृति की जो अच्छी बात है, देखिए इन्होंने जब अपनी कंडीशन नहीं होती, बाहर की कंडीशन होती हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, वहां ये उभर कर सामने आती है। नॉटिंगहम का मैच याद कीजिए जहां इन्होंने 112 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, जब टी20 का मुकाबला हुआ था, सबका दिल जीत लिया था इन्होंने। और आज ठीक है कॉम्पोजिशन कमजोर था, लेकिन स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी, गेंद टिप्पा पड़ने के बाद काफी नीची रह रही थी, और ऐसी स्थिति में आप टिकते हैं, खेलते हैं, ठीक है एक जीवनदान जरूर है 95 के स्कोर पर, थोड़ी जहां वो हड़बड़ाहट की शिकार हुई थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें एक निर्दोष पारी और ऐसी पारी जिसने वाकई दिल जीत लिया। और ऐसा जैसे हम अक्सर सचिन के लिए कहा करते हैं, विराट के लिए कहते हैं, मैं तो कहूंगा आज जिसने ये पारी नहीं देखी उसको जरूर ये पारी का लुत्फ बाद में जरूर उठाना चाहिए, देखना चाहिए। और जो तमाम एकेडमीज में जो बच्चे सीख रहे हैं क्रिकेट में, आगे जाना चाहते हैं, उनको ऐसी पारियां उनको उनके लिए बिल्कुल एक टॉनिक का काम कर सकती हैं।
2: बिल्कुल, अभी मनोज जी बात कर रहे थे कि ये टॉनिक की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 137 रन्स की जो विक्ट्री है, आप सेमीफाइनल, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, और 137 रन्स का जो ये विक्ट्री का मार्जिन है, कहीं ना कहीं वैशाली काफी ज्यादा अलार्मिंग नोट रहेगा बाकी टीम्स के लिए, क्योंकि अभी आपको ग्रुप ए में अगला जो आपका मुकाबला है पाकिस्तान के साथ है, जब आप फाइनल में जाएंगे ग्रुप बी से भी हम देखें कहीं ना कहीं थोड़ा जो स्ट्रेंथिंग टीम लग रही है वो श्रीलंका की लग रही है, और अभी ये जो आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज है ये सारी टीम्स ने देखी होंगी, तो कहीं ना कहीं अब डर का माहौल होगा विमेंस एशिया कप में भारत को लेके बाकी टीम्स का,
3: थोड़ा तो होगा, लेकिन उनको सामने वाली कैसी टीम है वो भी देखनी चाहिए हमें, क्योंकि हम आगे तो पहुंच रहे हैं लेकिन हमारे पास जो कमियां हैं उन कमियों को साथ लेके नहीं जाना है हमें, क्योंकि अगर हम उन कमियों को साथ लेके गए तो वो हमें लैग कर सकती है पीछे आने के लिए, तो हमें वो कमियां यहीं इसी मैच में छोड़ के आगे बढ़ना है और जो हमारे लैक हो रहे हैं उसको फुलफिल करना है, उन पोजिशंस को फील करना है, उसके बाद ही हम आगे पहुंच सकते हैं। और जैसे अभी मैं और मनोज जी बात कर रहे थे कि थर्ड पोजीशन एंड मिडल ऑर्डर हमारे नहीं है हिटिंग शॉटर्स, तो वो हमें हमारी टीम को बहुत जरूरत है उनकी, क्योंकि जैसे आपने बात करी श्रीलंका के साथ हमारा मैच हो सकता है तो उसके लिए प्रिपरेशन हमें अभी से करनी होगी, एंड मोमेंट पे अगर हम वो प्रिपरेशन करेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन हमें अभी से ढूंढ के चलना है, बिकॉज वी नो कि पाकिस्तान के बाद हम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं तो नेक्स्ट मैच हमें किसके साथ ही मिलेगा, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर चले तो वो ज्यादा बेटर है इंडियन टीम के लिए, वो ट्रॉफी के नजदीक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा।
1: मनोज जी, जैसा कि कॉलर ने भी इशारा किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है, सवाल मेरा यह है कि क्या वो हाई वोल्टेज इंटेंसिटी अब भी मेंटेन हो रही है, क्योंकि जो स्तर है पाकिस्तानी क्रिकेट का और भारतीय टीम जिस स्तर का क्रिकेट खेल रही है, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर दुबई में वही चिर प्रतिद्वंद्विता दिखेगी भारत पाकिस्तान की जो दशकों पुरानी रही है?
0: देखिए, जो भी कॉलर ने अभी कहा या जैसा आपने कहा, आप भी समझते हैं और यहाँ वैशाली जी भी मौजूद हैं, आपने खुद इस बात को रियलाइज किया होगा कि जब भी कभी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला महिला क्रिकेट में होता है तो मुझे तो कई बार, सच बताऊं ईमानदारी से, शेर और मेमने की लड़ाई लगती है, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को भुनाते रहें, लेकिन कुल मिलाकर हम जहां पर जिस मुकाम पर भारतीय क्रिकेट खड़ा है, जिस पर जिसको सींचा है भारतीय खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान बिल्कुल शैशव अवस्था में है। और रही बात ओवरऑल क्रिकेट देखने की, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम आते ही आप गुल्ली डंडे का भी कोई मैच करवा देंगे तो उसमें भी एक रोमांच बना रहेगा, लेकिन क्रिकेट में आसपास भी कहीं कोई तुलना हो ही नहीं सकती। ठीक है कुछ एक अपवाद हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम निर्विवाद रूप से चैंपियन ही रहे हैं, पाकिस्तान ने भी एक दो झटके दिए हैं हमें विमेन क्रिकेट में, लेकिन यही है कि कुल मिलाकर अपोनेंट को कमजोर नहीं समझना, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो या अन्य कोई टीम हो, मैं तो कहूंगा एसोसिएट टीम को भी आप कमजोर मत समझिए, क्योंकि पिछले मैच में उसने हमारी कलाई खोल दी थी 40 रन के अंतराल में, 40 के आसपास

0: रन देकर 8 विकेट चटका लिए थे भारत के, तो वो एक चिंता का सबब है। और जीत हार इन टूर्नामेंट्स में, जैसे मैं हम अक्सर कह भी रहे हैं, चर्चा भी हो रही है हमारी इस बारे में, कि वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। ज़रूरत है, जो हमने गलतियां की हैं साउथ अफ्रीका के दौरे पर, जो हमने गलतियां की हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, जो हम इस बार लगातार हारने का रिकॉर्ड है हमारा, लगातार हम जीत नहीं पा रहे हैं, उन वहां गलतियों को कैसे दूर करें।
1: जी हाँ बिल्कुल, आज का मुकाबला जरूर समाप्त हो गया है, लेकिन जैसा कि मनोज जी बता रहे हैं कि आने वाले मुकाबलों में हमें जरूर टफ फाइट मिल सकती है, तो अपनी कमियों को दुरुस्त कीजिए और जो पॉजिटिव्स हैं उसको और बेहतर करते चलिए। मनोज जी आपका, वैशाली आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आकाशवाणी के श्रोताओं तक विशेषज्ञ राय पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
1: हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी टेक्निकल टीम का, जिसमें आशा शर्मा, लीला सेठी, कपिला, त्रिलोक गुप्ता और उर्मिला शामिल थी। प्रोडक्शन टीम में सहयोग दिया माधवी तिवारी और स्वाति कपूर ने, और इस पूरे कार्यक्रम को आप तक लेकर आए हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान ने। आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।